बहुत सही ये पंक्तियां थी। और दोस्तों, वाकई में ही इंसान अपने व्यवहार के कारण ही तो पहचाना जाता है। और अब अगला गीत मीना बाजार फिल्म से कुमार सानू का गाया हुआ, समीर की रचना है और कुमार नरेश शर्मा का संगीत।

सच में दोस्तों कुछ भी नहीं तो है जिंदगी, सुख दुख की ही कहानी है। और हम अगर किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकें तो जिंदगी में जरूर देनी चाहिए।

दोस्तों, बहुत से गीत हमें संदेश देकर जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ध्येय जरूर बनाकर रखना चाहिए। अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने ये गीत सुना जो यही कहता है कि हमें अपने लबों पर मुस्कुराहट बनाकर रखनी चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख आते जाते रहते हैं। शैलेंद्र की इस गीत के लिए रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं जमीर फिल्म से गीत महेंद्र कपूर का गाया हुआ। सपन चक्रवर्ती की रचना है और सपन जगमोहन का संगीत।

फिल्म जमीर से आपने रचना सुनी महेंद्र कपूर की आवाज में, और इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चौक को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम को संपन्न करने की। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 7 अक्टूबर 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकेंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण आप सुनेंगे 6:10 से 6:44 तक। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी पूनम आहूजा। छह बजकर 44 से 6:55 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। आज अयोध्या कांड सुनवाया जाएगा भाग 76। 6:55 से 7 तक आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। सात बजकर 5 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 7:10 से 7:30 तक आप सुन सकते हैं पूनम आहूजा के साथ। 7:30 से 8 तक और 8 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आठ बजकर 15 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और 8:30 पर उर्दू में समाचार।

8:45 से आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी, आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम होगा जिसे पेश करेंगी पूनम आहूजा। नौ बजे हिंदी में समाचार होंगे और 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं।

स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:10 से 9:45 पर। इस कार्यक्रम में राम प्रकाश वर्मा आपके साथ होंगे। ये थी आज के कार्यक्रमों की कुछ रूपरेखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में टीईपीए की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच टीईपीए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार

समय हो चला है 6:12 और 2 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। वैसे अर्पण, जिसमें हम आपसे मिलते हैं, ये एक ऐसा माध्यम हो जाता है, एक ऐसी यात्रा जो हमें बाहरी दुनिया से उठाकर भीतर के संसार तक ले जाती है। और पूरा दिन हम किसी न किसी एक बात को सोचते रहते हैं जो हमने सुबह सुनी हो। जैसे मान लीजिए हम बात करें किसी और की, या किसी की भी जिससे आप दिन भर मिलते हैं, बैठते हैं उनके साथ, उनकी बातें सुनते हैं, उनके विचार जानते हैं, या यहाँ तक कि आजकल मोबाइल भी ऐसे ही हो गया है जिसके साथ हम बैठते हैं, मोबाइल में बहुत सारे रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जमा होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाने अनजाने हमारे स्वरूप को गढ़ती जाती हैं। हम कैसे होते जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा होता जाता है, ये निर्धारित करती हैं। इसीलिए ये जो इतनी सारी संभावनाएं हैं ना हमारे जीवन की, जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें उन संभावनाओं को एक दिशा देने का काम करती है हमारी संगति। और संगति ये भी हो सकती है कि आप इस वक्त सुन रहे हैं अर्पण, संगति ये भी हो सकती है कि आप मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, संगति ये भी हो सकती है कि आप किसी से

कर उनसे बैठकर बात कर रहे हैं। तो जो भी हो, लेकिन हमें समय समय पर ये समझना चाहिए कि ये संगति हमें कैसे प्रभावित कर रही है। इससे हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ जुड़ रहा है या फिर कुछ हट रहा है, कोई लाभ हो रहा है या कोई हानि। तो आज ये सब बातें करेंगे इसी संगति, इसी एसोसिएशन के बारे में, क्योंकि बच्चों को हम कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग, तो ये बात हमारे लिए भी वैसे ही उतनी ही लागू होती है। पहले पंडित भीमसेन जोशी जी की आवाज़ में ये भजन सुनते हैं, फिर इस बारे में और बात करेंगे।

6:19 आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हम बात कर रहे थे हमारी एसोसिएशन, हमारी संगति, हमारे साथ की, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे संगति वैसे ही हमारी रंगत, यानी वैसा ही मन। पर क्या सचमुच संगति हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है? जानते हैं, एक बार क्या हुआ कि एक ही मिट्टी में दो पौधे लगाए गए। एक पौधे को प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, स्वच्छ जल था, खुली हवा थी, और दूसरे को अंधेरे कमरे में रखा गया। दोनों के बीज तो बिल्कुल एक जैसे थे, समान थे, लेकिन वातावरण अलग अलग था। अब कुछ दिनों बाद एक तो बहुत पल्लवित हो गया, बहुत सुंदर हो गया, लेकिन दूसरे का रूप बिल्कुल अलग। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, हमारे संगति में भी, कि हम किसकी संगति कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हमारा सब कुछ बदलने लगता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगत संगते कामा कामात क्रोध अभिजायते, कि जिस विषय का हम बार बार चिंतन करते हैं उसके प्रति हमारा लगाव पैदा होता है। लगाव से इच्छा, इच्छा से मानसिक परिवर्तन। तो सोचिए, अगर दिन रात ऐसे लोगों के साथ रहा जाए जो शिकायतें करते रहते हैं, तो हमें भी धीरे धीरे ऐसी ही आदत हो जाती है। हमें भी हर परिस्थिति में कमी दिखाई देने लगती है। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हर कठिनाई में समाधान खोजते हैं, तो हमारे अंदर भी एक उम्मीद पैदा हो जाती है, आशा पैदा हो जाती है। जैसे एक युवक ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज, मेरे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं। तो महात्मा ने कहा, तुम दिन भर किसकी बातें सुनते हो? तो वो युवक चुप हो गया। तो हमारा मन एक खाली खेत की तरह है, जो बीज उसमें बार बार डालेंगे वही तो उगेगा। तो हमारा निर्णय, हमारी भाषा, हमारी प्रायोरिटीज या प्राथमिकताएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस या महत्वाकांक्षाएं, ये सभी कुछ हमारे एसोसिएशन या संगति से पैदा होती हैं। इसीलिए अपने विचारों के बारे में ये सोचिए कि कौन से विचार आ रहे हैं, और जो ये विचार आ रहे हैं उन्हें जीवन देने वाला आखिर है कौन। जब इतना सोचेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि हमारी संगति सही है या फिर हमें कुछ बदलाव की जरूरत है। बस उसी बदलाव के लिए जब आप तैयार रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में बदलने लगेगा।

जी हाँ, तो बात हो रही थी हमारी संगति की, जो हमारे डिसीजन या हमारे निर्णय बदल सकती है। देखिए, जीवन में हर दिन तो हमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि किस पर विश्वास करें, किस रास्ते पर चलें, किस अवसर को स्वीकार करें, किससे दूर रहें। लेकिन क्या हमारे निर्णय पूरी तरह से हमारे अपने होते हैं? बिल्कुल नहीं। और अगर आप ये समझना चाहते हैं तो महाभारत के प्रसंग के बारे में आपको सोचना होगा, जो इस प्रश्न पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। देखिए ना, दुर्योधन के पास शक्ति थी, बुद्धि थी, अवसर थे, लेकिन उनकी संगति और उनके आसपास का वातावरण ऐसा था जो उनके निर्णयों को लगातार एक ही दिशा में लेकर जा रहा था, और जिसकी वजह से वो महाभारत के युद्ध का एक कारण बने। दूसरी ओर अर्जुन थे, जो भीषण युद्ध भूमि में खड़े तो थे, लेकिन उनके साथ उनकी संगति थी श्री कृष्ण की। तो जहां दुर्योधन के पास संगति थी शकुनी की, वहां पर अर्जुन कृष्ण के साथ थे। तो अर्जुन को भी भ्रम था, मोह था, भावनात्मक संकट था, लेकिन श्री कृष्ण की संगति की वजह से उनका भ्रम विवेक में बदल गया। तो संगति कई बार हमारी समस्याएं समाप्त नहीं करती, लेकिन हमें एक ऐसी दृष्टि दे सकती है जिससे कि हम उससे बाहर निकलने के बारे में सोच सकें। कोई अनुभवी व्यक्ति हमें एक गलत निर्णय से बचा सकता है, उनकी संगति हमें सही रास्ता दिखा सकती है। तो कई बार हम अगर किसी ऐसे के साथ होते हैं जिसके एक वाक्य से हमारे निर्णय गलत हो जाए, तो पूरी जिंदगी हमें उस निर्णय के साथ जीना पड़ता है। इसीलिए संगति चुनना वास्तव में अपने भविष्य के सलाहकार को चुनना है, तो वो तो बहुत सोच समझकर करना ही पड़ेगा।

जी हाँ, तो बात हो रही थी हमारी एसोसिएशन, हमारे संघ, हमारी संगति की, जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इतना कि हमारे निर्णय उसके हिसाब से हो जाते हैं और फिर पूरा जीवन उन निर्णयों के साथ, उन डिसीजंस के साथ हमें जीना पड़ता है। और ये एक दिन में नहीं होता दोस्तों, ये धीरे धीरे आता है। एक छोटी सी आदत के साथ, एक मजाक के साथ, एक समझौते के साथ, एक छोटी सी बात के साथ, जो बाद में फिर बहुत ही ऑर्डिनरी या सामान्य लगने लगती है और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम किसी गलत आदत में, किसी बुरी संगति में फंस गए हैं और हम सोचते हैं कि जब मैं चाहूंगा मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ये एक भ्रम होता है क्योंकि हमारी संगति हमारी आदतें बना देती है और पहले आदत हमारे हाथ में होती है, फिर धीरे धीरे हम आदतों के हाथ में चले जाते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कुसंगति या गलत लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, उनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभाव हमें हमारे उद्देश्य से दूर लेकर जाता है। तो हर रोज ये समझना जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कौन से विचार हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं या जिन पर हम हंसते हैं, किन चीज़ों को हम सफल मानते हैं या किनके सफलता के दायरे हमें आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारी चेतना को आकार देते हैं। तो ये प्रश्न आप अपने आप से हर रोज कर सकते हैं। सच मानिए कि अगर जीवन बदलना है ना, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना होता है कि ये गलत वातावरण से थोड़ा सा पीछे हट जाए, और वो कुछ भी हो सकता है। वो अगर आप किसी से नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल पर ही कुछ देख रहे हैं, तो वो भी आपके वातावरण को ही बना रहा है।

तो दिन भर देखना, सुनना, सोचना, ये जो सामान्य लग रहा है ना, इसके बारे में जरा ध्यान से सोचिए, गौर कीजिए कि ये कहाँ तक सामान्य है, या क्या आप ऐसे ही थे, या क्या ऐसे ही बनना चाहते हैं, या क्या यही आपके जीवन का लक्ष्य है, या इस प्रभाव से आप खुश हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी संगति की कि वो हमें बिल्कुल बदल देती है। अब इसी में अगर हम बात करें भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की, तो महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग सामने आ जाता है जो एक महान मिसाल बन गया। जानते हैं, एक कथा के अनुसार वो पहले रत्नाकर नाम से जाने जाते थे और बाद में बने महान ऋषि वाल्मीकि। और उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने एक ऐसे महात्मा का सानिध्य किया जिन्होंने उन्हें उनके जीवन की दिशा पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। तो ये कथा या ये जो प्रसंग है, ये हमें सिखाता है कि

हमारी जो दिशा है वो अतीत से नहीं बल्कि हमारे आज से, हमारे वर्तमान से तय होती है। कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमें हमारी पोटेंशियल या क्षमता दिखाता है, और वो कोई भी हो सकते हैं, एक शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, एक मेंटोर या गुरु हो सकते हैं, एक मित्र हो सकते हैं, कभी कभी कोई अपरिचित व्यक्ति भी हो सकता है, और उसकी कही एक बात हमारी सोई हुई चेतना को जगा देती है। तो ये जो सोच है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाकर बैठेंगे और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएंगे। ये तब होता है जब आप उनकी बात सुनकर उसका आत्ममंथन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसे एक्शन में लेकर आते हैं, यानी अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं, उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। तो आप सोचिए कि बच्चों को जब हम बोलते हैं कि अपनी संगति बदलो, पर क्या आप उस पर काम कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो खुद भी करना शुरू करें? तो सोचिए और इस बारे में दिन में क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस पर विचार कीजिए।

जी हाँ, तो आज हमने बात की संगति की, और उसे बदलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम बच्चों को जो कहते हैं वो उसे नहीं सुनते, बल्कि जो हम जी रहे होते हैं उसे सुनते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी संगति ऐसी हो, आपकी बातें ऐसी हो जो बच्चों को वास्तव में एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करें, और वो आपको देख कर कहें कि मुझे भी पापा मम्मी जैसा बनना है।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

0: भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलम् अष्टस्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं पञ्चस्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां एकं शून्यम् इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। दोनों देश दक्षिण दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुटजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौतों का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने बताया कि सैनिकों ने उन्हें नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनाई गई सतर्कता, प्रशिक्षण, तालमेल और नवीन प्रथाओं सहित प्रमुख परिचालन तैयारियों की जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा।

अच्छा बताइए, सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? ज्यादातर लोगों का रिप्लाई होगा कि फोन चार्ज करते हैं, लेकिन एक बात कभी आपने सोची है कि खुद को भी चार्ज करना बहुत जरूरी है? और अगर आप खुद को चार्ज नहीं करते हैं तो एक और है ना जो आपका एक काम बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं, और वो है योग की क्रियाएं, जो सिर्फ शरीर को मोड़ना या कठिन आसन करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी सांस को महसूस करना, अपने आप को सुनना, मन को शांत करना भी है। तो मॉर्निंग रूटीन में 10 से 15 मिनट अगर आप निकालते हैं तो ये आपके पूरे दिन की डायरेक्शन या दिशा को बदल सकता है। शुरुआत कुछ हल्के मोमेंट से कर सकते हैं, जैसे गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग, या फिर ताड़ासन, या फिर डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं कि आपको किसी और को देख कर करना है। आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, इसलिए जैसा भी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपको हर दिन इम्प्रूव करता जा रहा है। तो आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपने आप से कहिए कि मैं आज

बहुत खुश रहने वाला हूँ, आज के दिन का बहुत स्वागत करने वाला हूँ और बिल्कुल एंजाइटी नहीं होगी, बिल्कुल तनाव नहीं होगा मुझे। तो ये वेंसडे को शुरू करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे आप इस बुधवार को एक हेल्दी बुधवार या हेल्दी वेंसडे बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लेकिन हर दिन अपने आप को थोड़ा सा बदलाव दें हम, तो फिर काफ़ी कुछ बदलने लगता है और हम अपनी ही ज़िंदगी को नए तरीके से देखने लगते हैं।

जी हाँ, तो बात चाय की हो गई लेकिन नाश्ते की भी तो हो जाए। तो अक्टूबर का मौसम जो है वो धीरे धीरे याद दिला रहा है कि हमें ज़्यादा इम्यूनिटी चाहिए। तो इस समय आप एनर्जी से भरा नाश्ता ले सकते हैं, वेजिटेबल पोहा खा सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, बेसन चीला ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा देर तक एनर्जेटिक रखेंगी, तो प्लीज़ ये सब फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात, और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत, नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे, और आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं तन्वी खुराना। गुड मॉर्निंग तन्वी।
1: गुड मॉर्निंग देवेंद्र, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। टुडे इज 7th ऑफ अक्टूबर 2026, इट्स अ वेडनेसडे, सो अ वेरी हैप्पी वेडनेसडे, एंड वी आर हियर विद आवर daily news magazine program aaj savere, just like the Devendra mentioned, and we have a lot in store for all of you, so stay tuned till 8 o'clock, and let's begin our program with the news headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े अयोध्या से कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश सह प्रभारी डॉ मेधा कुलकर्णी लखनऊ के हजरतगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद से कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will address the second India EFTA Prosperity Summit 2026 at Bharat Mandapam today to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. The summit will bring together senior government officials, industry leaders and key stakeholders from India and the EFTA states Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. To further strengthen economic cooperation, foster business partnerships and unlock new opportunities in trade, investment, technology collaboration and innovation. With the theme Building a $100 billion Investment Partnership, Creating 1 million Jobs in India, the summit will focus on reviewing TEPA progress, announcing new investments, strengthening industry-government collaboration and also exploring opportunities across key sectors.
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VBG रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। पहले की योजना में 266 काम थे। इन कामों को चार प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला है जल सुरक्षा, जिसमें सबसे ज्यादा 128 काम है। इनमें चेक डैम बनाना, जल स्रोतों को बेहतर करना, नदियों और नालों का पुनरुद्धार और पानी के वितरण की व्यवस्था जैसे काम शामिल है। दूसरे हिस्से में ग्रामीण बुनियादी ढांचा है। इसके अंतर्गत 111 कामों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत तमाम काम कार्य किए जाएंगे ग्रामीण विकास के लिए। और तीसरे हिस्से में रोजगार और आजीविका से जुड़े बुनियादी ढांचे के 98 काम शामिल हैं। वहीं पहली बार आपदा की तैयारी और खराब मौसम से निपटने के लिए अलग से 38 कार्यों की सूची को भी शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। सभी कार्य गांव स्तर से तैयार किए जाएंगे। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद इन्हें विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत लागू किया जाएगा।
1: Lok Sabha Speaker Om Birla said democracy grows stronger only when every voice is heard. He was speaking at the Silver Jubilee celebrations of the Goa Legislative Assembly complex at Porvorim. Our correspondent informed that
2: India's maritime sector has been the backbone of the country's trade and has grown manifold over the years. To harness its more than 11,000 km long coastline, around 14,500 km of potentially navigable waterways and strategic location on key international maritime trade routes, the government launched the Sagarmala program in 2015 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The program aims to promote port-led development by modernizing ports, improving connectivity, promoting coastal shipping and strengthening coastal communities. Prime Minister Narendra Modi has emphasized harnessing India's maritime potential to drive economic growth and development.
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है.
2: For Goa, a state with strong maritime heritage, extensive waterways and the Mormugao port, Sagarmala is creating new opportunities by strengthening port infrastructure, inland waterways and cruise to

0: tourism. Captain of Ports Goa, Octavio Rodriguez, told Akashwani about the work being undertaken under the Sagarmala program in the state.
1: It is going to change many jetties. Now see, another 10 jetties we are going to get, already approved. Or only thing now we have need to install it. They are all floating jetties which will take care of the tourism activities over there, passengers transportation system, because we are going to also come up with a auto metro. Yeah.
0: Goa has so far completed 10 Sagarmala projects with an investment of over 840 crore rupees. These projects are strengthening maritime infrastructure and improving connectivity across the state. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को पीछे न छूटने देने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन एक वैश्विक संगठन है जो मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करता है और मोबाइल ऑपरेटरों तथा मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित उद्योगों में संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है।
3: And moving to birds spots, India defeated West Indies by 8 wickets in the opening T20I in Lucknow last night to take a 1-0 lead in the 5-match series. Put into bat, West Indies were bowled out for 171 in 19.1 overs. Chasing the target, India comfortably reached the target in just 14.4 overs, losing only 2 wickets. Shreyas Iyer produced a stunning unbeaten 102 off 43 balls, while Ishan Kishan remained not out on 37 from 27 deliveries. Iyer was judged the player of the match for his match-winning innings. And the second match of the series will be played in Ranchi on Friday.
2: और नोवाक जोकोविच ने पेइचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में पहला सेट 7-6 से जीता। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने मेडिकल टाइम आउट लिया। कमर की चोट से जूझ रहे डी मिनोर ने दूसरे सेट का पहला गेम जीतने के बाद मैच से हटने का फैसला किया। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम रुख करते हैं महानगरों का, और एक एक महानगरों की खबर हम जानते हैं क्या प्रमुख खबरें हैं। तो सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं हम? चेन्नई जी।
3: The Tamil Nadu government has constituted an additional sessions court in the city for exclusive trial of cases investigated by the National Investigative Agency, including counter-terrorism cases, espionage, aviation and maritime security, and also possession of weapons of mass destruction. The gazette notification issued by the Home Department was by the governor. The governor, after consultation with the Madras High Court, has appointed one more additional judge to the City Civil Court in Chennai. The appointment will take effect from the date on which the judge assumes charge.
2: और दिल्ली की खबरों की बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित आशा सम्मेलन 2026 और आशा सम्मान समारोह में कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान जीबी पंत अस्पताल में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के भवन का वर्चुअल उद्घाटन, अनमोल पहल का विस्तार, नर्सिंग होम प्रबंधन प्रणाली का पोर्टल का शुभारंभ और आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्ते में ऐतिहासिक थी। उपराज्यपाल ने बताया कि 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 किया गया है। दिल्ली सरकार ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबी नई ड्रेन के निर्माण को स्वीकृति दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कल आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में लिया गया। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना से किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलुई जाट विधानसभा क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताकर सोशल मीडिया पर फर्जी सीसीटीवी फुटेज अपलोड करके पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त मंजीत चौरान ने बताया कि नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने सामग्री पर संदेह जताया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान पता चला कि फुटेज का संचालक हरियाणा का निवासी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि संचालक ने एआई उपकरणों का उपयोग करके फर्जी फुटेज तैयार की थी।
3: And moving towards Bangalore, the special commissioner election in Greater Bangalore Authority, Shilpa Nag, has informed that an additional 1,117 assistant electoral registration officers have been appointed for the smooth conduct of the special intensive revision in Bangalore Urban District. Addressing the media, she said that 814 hearing centres established in the jurisdiction of the electoral roll revision process in the district will have additional 1,117 assistant electoral registration officers, thereby taking the total to 1,193 officers to handle the claims and objections under SIR. The process of SIR has to be completed with disposal of claims and objections by 22nd of October, and the final electoral roll has to be published by 27th of October.
2: और बेंगलुरु से चलते हैं मुंबई की तरफ, जहां मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर भर में कई अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी कर वैद्य योग्यता या पंजीकरण के बिना क्लिनिक चलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने मुंबई नगर निगम के चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर भांडुप, मानखुर्द, कुर्ला, जोगेश्वरी, बोरीवली और दहीसर स्थित क्लिनिकों पर छापेमारी की। पुलिस ने इस अभियान के दौरान करीब 22 लाख रुपए मूल्य की सिरिंज, एंटीबायोटिक गोलियां और अन्य चिकित्सा उपकरण जब्त किए। कुछ मामलों में कथित तौर पर एक्सपायर्ड दवाएं बेचकर मरीजों से अधिक फीस वसूली की जा रही थी। भांडू पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम की धारा 33 और 36 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। और महाराष्ट्र के लोक स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर के प्रमुख स्वास्थ्य पदों पर नियुक्ति के लिए प्रदर्शन आधारित प्रणाली शुरू की है, जिसके अंतर्गत अधिकारियों का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नई नीति के अनुसार अधिकारियों का मूल्यांकन 11 मापदंडों पर किया जाएगा, जिनमें शिकायत निवारण, नेतृत्व, वित्तीय प्रबंधन, पोषण, मानव संसाधन, आपदाओं और महामारियों से निपटने की क्षमता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, डिजिटल सेवाएं और जिला स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। 71 से 100 अंक प्राप्त करने वाले अधिकारियों को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। और चलते हैं हैदराबाद।
3: Absolutely. Telangana Governor Shiv Pratap Shukla has said public participation is the key to the Nasha Mukt Bharat and also a TB, that is Tuberculosis Mukt Bharat. He was speaking at the Nasha Mukt Bharat program in Medak yesterday, where he flagged off a Nasha Mukti rally. The Governor said change must begin with each person. He asked everyone to resolve never to take drugs. He said the youth must play a key role as India is one of the youngest nations. He said TB is fully curable and free medicines are available at government health centers. The governor said the movement must start at home and spread to schools, villages, mandals and districts.
2: और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि वैध लाइसेंस के बिना पालतू जानवरों और पक्षियों की बिक्री की अनुमति नहीं है। कोलकाता के गैलिफ स्ट्रीट और राज्य के अन्य हिस्सों में स्थित व्यवसायों को संचालन के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पालन करना होगा। स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र वी घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो ये सत्यापित करे कि व्यापारियों के पास पशु और पक्षी बेचने की अनुमति देने से पहले वैध प्राधिकरण है या नहीं। न्यायालय ने सभी पक्षों को 14 अक्टूबर तक इस मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। और अब महानगरों की खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 दर्ज किया गया। दिन में 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा तन्वी?
3: चेन्नई इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 28 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 35 डिग्रीज सेल्सियस. बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस पार्टली क्लाउडी स्काई एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 21 डिग्रीज वाइल द मैक्सिमम मे रीच 31 डिग्रीज सेल्सियस. नाउ हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ पार्टली क्लाउडी स्काई बट विद हेज. द टेम्परेचर are expected to range from 21 degrees to 34 degrees Celsius.
2: जी,

0: और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की।
1: Let's begin with the year 1777, when American forces defeated British troops during the American Revolutionary War.
0: जी, और 1913 में हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए लगातार चलने वाली असेंबली लाइन का संचालन शुरू हुआ, जिसने विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला दिया। और 1942 में अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की। 7 अक्टूबर 1944 को अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधियों ने डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन के दौरान भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा और प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया था, जिसकी घोषणा 9 अक्टूबर 1944 को जारी की गई थी।
1: इन द ईयर 1959 द सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना द थर्ड ट्रांसमिटेड द फर्स्ट इमेजेस ऑफ द साइड ऑफ द मून दैट कुड नॉट बी सीन फ्रॉम अर्थ। And if we talk about the year 1950, a little bit before 1959, then Mother Teresa received Vatican permission on this day to establish the Missionaries of Charity in Calcutta, which is now called Kolkata. The organization began with a small group and later expanded internationally.
0: और 11 सितंबर को 2001 में आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तालिबान और अलकायदा के ठिकानों के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी।
1: In the year 2001, the same year which Devendra mentioned, this marked the beginning of Narendra Modi's tenure as the Chief Minister of Gujarat. In 2026, this date marks 25 years since he entered public office as the Chief Minister.
0: जी, और इतिहास में दर्ज इन घटनाओं के बाद अब स्मरण उन महान विभूतियों का जिनका आज जन्मदिन है, जयंती या पुण्यतिथि है और जिनके कार्यों और विचारों ने समाज को प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया। कल्पना कीजिए उस दौर की, श्रोताओं, जब देश में अंग्रेजी शासन भारत की धरती पर भारत के लोगों को ही स्वतंत्रता से जीने के अधिकारों से वंचित करती थी। ऐसे में विद्रोह करने वालों को अदम्य साहस का पर्याय माना जाता था। वीर ही नहीं, वीरांगनाएं भी साहस के साथ क्रांति का बिगुल फूंक रही थी। ऐसी ही एक वीरांगना थी दुर्गावती देवी। 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में जन्मी दुर्गावती देवी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी और स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय योद्धा थी। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह को अंग्रेजी पुलिस की नजर से बचाकर निकालने में दुर्गा भाभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने छोटे बेटे के साथ भगत सिंह के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा पर निकली। ये साहस और सूझबूझ की अद्भुत मिसाल थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 1927 में लाहौर में बुलाई गई क्रांतिकारियों की बैठक की अध्यक्षता भी दुर्गा देवी ने की। तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली को निशाना बनाने की योजना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और इस दौरान टेलर नामक एक अंग्रेज अधिकारी घायल हुआ। 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका साहस, उनका त्याग और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण आज भी हमें प्रेरणा देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो वीरांगना जिनका नाम इतिहास हमेशा सम्मान से लेगा।

एक और क्रांतिकारी केदारेश्वर सेन गुप्ता का वंदन। विद्यार्थी जीवन में ही केदारेश्वर का संपर्क अनुशीलन समिति के नेता पुलन बिहारी दास से हुआ और वे शीघ्र ही क्रांतिकारी दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे। उस समय उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व शचीन्द्र सान्याल कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी और रास बिहारी बोस के जापान चले जाने के बाद दल को संगठित करने का दायित्व केदारेश्वर को सौंपा गया। वे वाराणसी आए लेकिन पुलिस की निगरानी बढ़ते ही बंगाल लौट गए और भूमिगत रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां की। 1917 में वे गिरफ्तार हुए और 1919 तक हजारीबाग जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने रुई का व्यापार शुरू किया लेकिन उससे होने वाली आय भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा दी। उनका जीवन और उनकी कमाई सब कुछ देश के नाम। व्यापार के सिलसिले में मुंबई गए, वहां भी गिरफ्तार हुए। बरहांगपुर जेल में अमानवीय व्यवहार के विरोध में उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वे क्षय रोग की चपेट में आ गए। बाद में उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया गया लेकिन घर में नजरबंद कर दिया गया। 1941 से 1946 तक उन्होंने फिर से जेल यातना सही। स्वतंत्रता के बाद कोलकाता आकर उन्होंने क्रांतिकारियों के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अनुशीलन भवन की स्थापना की। केरल की धरती ने देश को कई महान स्वतंत्रता सेनानी दिए। उनमें एक प्रमुख

नाम है के केलप्पन का। 24 अगस्त 1889 को कालीकट केरल में जन्मे केलप्पन राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। केलप्पन ने अपनी कॉलेज पढ़ाई छोड़ देश की आजादी के संघर्ष में अपना जीवन लगा दिया, जो उनके लिए शिक्षा से बढ़कर उस समय देश की पुकार थी। 1930 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना और ये उनके साहस, निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का बड़ा सम्मान था। 7 अक्टूबर 1971 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका संघर्ष और आदर्श आज भी

0: His film debut for MGM was That Midnight Kiss in 1949, and in The Toast of New Orleans, he featured a popular song, Be My Love, that became his first million-selling hit. And at the time of his death in 1959, at the age of just 38, he was still the most famous tenor in the world. And we are also talking about Edgar Allan Poe. Today is his death anniversary. An American writer, poet, editor, and literary critic who is best known for his poetry and short stories, particularly his tales involving mystery and macabre. He is widely regarded as one of the central figures of romanticism and gothic fiction in the United States and also of early American literature. Poe was one of the country's first successful practitioners of the short story and is generally considered to be one of the pioneers of the detective fiction genre. And the Mystery Writers of America presents an annual Edgar Award for distinguished work in the mystery genre. Let me just read out the first stanza of one of his poems titled A Dream Within a Dream. Take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow. You are not wrong. You deem that my days have been a dream. Yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream.
1: Vijay Dev Narayan Sahi, एक ऐसा नाम जिसने कवि और आलोचक के रूप में साहित्य को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि अपने समय से संवाद का माध्यम बनाया। 7 अक्टूबर 1924 को वाराणसी में जन्मे शाही नई कविता आंदोलन की महत्वपूर्ण आवाज थे। उनकी कविताएं तीसरा सप्तक में प्रकाशित होकर चर्चा में आई। उनका प्रमुख काव्य संग्रह मछली घर है। बाद में उनकी कविताएं साखी, संवाद तुमसे और आवाज हमारी जाएगी जैसे संग्रहों में प्रकाशित हुई। लेकिन साही की पहचान केवल कवि की नहीं थी, हिंदी आलोचना में उनकी पुस्तक जायसी का विशेष स्थान है। इसके अलावा साहित्य क्यों, छठवां दशक और वर्धमान और पतनशील जैसे उनकी आलोचनात्मक लेखन ने साहित्य को नए प्रश्नों और नए दृष्टिकोणों से देखने की राह दिखाई। साही की खासियत थी कि वे स्थापित साहित्यिक धारणाओं से सवाल करते थे। लघु मानव की अवधारणा और नई कविता पर उनकी बहसों ने हिंदी साहित्य में नई वैचारिक ऊर्जा पैदा की। और श्रोताओं, भारतीय संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी दिलों में गूंजती रहती हैं। ऐसी ही एक अमर आवाज थी बेगम अख्तर की। 7 अक्टूबर 1914 को अयोध्या में जन्मी बेगम अख्तर का मूल नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। उन्होंने ठुमरी, दादरा और गजल गायन को अपनी विशिष्ट शैली से नई ऊंचाई दी। उनकी आवाज में दर्द, मिठास और भावनाओं की ऐसी गहराई थी कि सुनने वाला सहज ही

संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1968 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1975 में ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया। 7 अक्टूबर 1974 को एक संगीत कार्यक्रम के दौरान

0: Absolutely, you guessed it right. It's Chandrakanta, which came in 1994.
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अपनी सधी हुई गायकी और प्रभावी प्रस्तुति के लिए याद किए जाने वाले कलाकार थे अरुण भादुड़ी। 7 अक्टूबर 1943 को जन्मे अरुण भादुड़ी ने भारतीय संगीत की अपनी साधना और प्रतिभा के बल पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई। अरुण भादुड़ी मंच के साथ साथ रेडियो और दूरदर्शन के लोकप्रिय कलाकार रहे। देश विदेश में अनेक संगीत समारोहों में उन्होंने अपनी गायकी प्रस्तुत की। उनकी गायकी में परंपरा की गहराई के साथ अपनी विशिष्ट कल्पनाशीलता और प्रस्तुति का सुंदर मेल झलकता था। संगीत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2014 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया गया। 17 अक्टूबर 2018 को अरुण भादुड़ी इस संसार से विदा हुए, लेकिन उनकी संगीत साधना और उनकी मधुर आवाज भारतीय शास्त्रीय संगीत की स्मृतियों में आज भी जीवंत है। अरुण भादुड़ी एक ऐसे साधक जिन्होंने सुरों को अपनी अभिव्यक्ति और संगीत को अपना जीवन बनाया।

0: और इसी खूबसूरत प्रस्तुति के साथ अब समय हुआ है अपने श्रोताओं से विदा लेने का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देवेंद्र त्रिपाठी और तन्वी को कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की दीजिए अनुमति।
1: Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभात our हिंदी न्यूज बुलेटिन followed by मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
0: नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जल मार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जल मार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में

0: पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पिम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग, जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने

0: कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है। उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
1: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines.

0: महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सफर हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दते कार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन 2001 में जनाब मोदी ने पहली मर्तबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए
2: इस तारीखी कामयाबी की याद में मरकजी काबीना ने करारदाद मंजूर की, जिसमें उनके तर्ज हुक्मरानी के सफर को उजागर किया गया। इत्तलातो नशरियात की वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि जनाब मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत की मजबूती का सबूत है। उन्होंने कहा कि एक आम खानदान से ताल्लुक रखने वाला ऐसा शख्स जिसने खुद को मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और मुसलसल मुल्क की खिदमत कर रहा है, जमहूरियत की ताकत, पायदारी और पुख्तगी की एक बड़ी मिसाल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने ऐसी तारीख रकम की है जो किसी भी जमहूरी मुल्क में मुनफरिद है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहां आवाम ने मुस्तकिल एक ही रहनुमा पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें अपनी हिमायत से नवाजा है। उनके मुताबिक यह हिमायत उनके काम करने के तरीके, दुरुस्त पॉलिसियों और वाजह और नेक इरादों की वजह से हुई। वजीर मौसूफ ने मरकजी काबीना की करारदाद के 10 अहम निकात को उजागर किया। पहला नुक्ता तरक्की के विजन को गुजरात से वसत देकर पूरे मुल्क तक फैलाने से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने प्रोग्रामों और पॉलिसियों के जरिए मुतअद्दिद तब्दीलियां मुतारिफ कराई, जिनके बाइस उन्हें दुनिया भर में एजाज से नवाजा गया। गुजरात के तरक्याती मॉडल को दुनिया भर में तस्लीम किया गया और सराहा गया, जिसके बाद इसे पूरे भारत में नाफिज किया गया। दिल्ली से कुमांदे पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि एक प्रधान सेवक के तौर पर जनाब मोदी के सफर से सबकी शमूलियत वाली तरक्की का विजन एक मुल्कगीर मिशन में तब्दील हो गया है, जिसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से रहनुमाई हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अपने दौरों में उन्होंने भारत की काबिल दीद तब्दीली देखी है। ये तब्दीली बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल तरक्की, मौकों की तौसी और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के रास्ते हुई है। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की दूरंदेश क्यादत की एक बड़ी कामयाबी यह है कि इसके तहत 25 करोड़ आवाम को इंतहाई गुरबत से निजात हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी अहम तारीखी हुसूलियाबी है जिसे इंसानी तारीख कभी नहीं भुला सकती। जनाब राधाकृष्णन ने उम्मीद जाहिर की कि भगवान जनाब मोदी को अच्छी सेहत, खुशी और ताकत से नवाजे, जैसा कि वो भारत को सबकी शमूलियत, खुशहाली और 2047 तक विकसित भारत की जानिब सफर पर ले जाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज से अपने अवामी जिंदगी के सफर का आगाज किया था और इस साल वो अपनी अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर नितिन नबीन आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करेंगे। उनके अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से इस प्रोग्राम में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी VBGRAMG कानून 2025 के तहत काबिले इजाजत कानून की फहरिस्त जारी की है। इसमें देही कामों के नए फ्रेमवर्क के तहत 375 काबिले इजाजत काम बयान किए गए हैं। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि नई फहरिस्त में पिछले फ्रेमवर्क के 266 कामों में 41% कामों की तौसी की गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इन कामों को 4 मौजूआत के तहत दोबारा बयान किया गया है। ये मौजूआत हैं: पानी की हिफाजत, इंतहाई दर्जे का देही बुनियादी ढांचा, गुजर बसर से मुतालिक बुनियादी ढांचा और शदीद मौसम से मुतालिक वाकयात और कुदरती आफात के तनाजुर में तैयारियों के लिए खसूसी काम। पानी की हिफाजत के तहत 128 काम बयान किए गए हैं जो चार जुमरों में सबसे ज्यादा हैं। इसमें बांधों पर नजर रखना, नालियों पर ढक्कन लगाना, जेर जमीन सोते, पानी को वापस जमीन में पहुंचाने की शॉफ्ट्स, इंजेक्शन, कुएं, दरियाओं को दोबारा ताजा करना, छोटी नदियां और नाले जिन जगहों पर पानी जमा हो गया है उनकी बहाली, निज पानी को दूसरी जगहों पर पहुंचाने वाली नहरों की तजदीद के काम शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत और लगातार तरक्की का एक आलाकार होना चाहिए। जनाब मोदी ने कल सेवा तीर्थ में मोबाइल मुआसलात की एसोसिएशन के आलमी निजाम GSMA के बोर्ड अरकान से बातचीत की। ये बातचीत इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहली की गई जो नई दिल्ली में आज से इस महीने की 10 तारीख तक मुनाकिद की जाएगी। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सभी को टेक्नोलॉजी की फराहमी लाजमी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि समाज का कोई भी तबका पीछे नहीं रह गया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजिटल खिदमात को खास तौर पर आलमी जुनूब के लिए मुनासिब खर्च और काबिल रसाई बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बढ़ते हुए डिजिटल फर्क को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी को हर एक शख्स तक पहुंचाने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की सलाहियत को खासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों के लिए एक यकसर तब्दीली लाने वाली ताकत के तौर पर उजागर किया। डिजिटल और साइबर घोटालों के बढ़ते हुए चैलेंज से निपटने के लिए जनाब मोदी ने कहा कि इस मसले का हल टेक्नोलॉजी से ही निकाला जाना चाहिए। वजीर आजम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए आलमी मेयारात और मुश्तरका जाब्तों की जरूरत को उजागर किया। 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज नई दिल्ली में यशोभूमि में शुरू होगी। इसका मौजू है हुदूद के बगैर पैमाइश, जिसमें शराकतदारी के एक आलमी प्लेटफॉर्म, सरमायाकारी और एक दूसरे को मालूमात बहम पहुंचाने का एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करते हुए टेली मुवासलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तरा के शोबों में भारत की काबिल तहसीन तरक्की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में अगले 1 अरब डिजिटल कनेक्शन के मैदान में सरमायाकारी, कामकाज में खुद मुख्तारी और टेलीकॉम के मुस्तकबिल के बारे में CEOs की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, भलाई के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल, साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक सरबराह मीटिंग, 6G सिंपोजियम, स्टार्टअप वर्ल्ड कप इंडिया 2026, नौजवानों को दरपेश चैलेंजों के लिए रोबोटिक्स और दीगर आलमी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गे पामिला आज भारत मंडपम में दूसरी इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA प्रोस्पेरिटी समिट 2026 में शिरकत करेंगे। यह समिट भारत EFTA तिजारती और इक्तिसादी साझेदारी से मुतालिक मुआहदे की सालगिरह के तौर पर मुनाकिद की जा रही है जो गुज़श्ता बरस 1 अक्टूबर को नाफिज किया गया था। इस समिट में सरकार के आला अफसरान, सनती रहनुमा और भारत और चार ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शराकतदार शिरकत करेंगे। इस समिट का मौजू है 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से ताल्लुक मुतालिक साझेदारी का क्याम, भारत में 10 लाख मुलाजमतों की तश्कील। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। कल बिलासपुर पहुंचकर उन्होंने एम्स बिलासपुर के पहले जलसे तकसीम असनाद में शिरकत की और तलबा को मेडल्स और डिग्रियां अता की। अपने दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: हिमाचल प्रदेश के अपने 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अटल टनल रोहतांग जाएंगी। वो इस टनल के शिमाली और जनूबी पोर्टल का दौरा करेंगी और सरहदी सड़कों की तंजीम के अफसरान से इस टनल के बारे में मालूमात हासिल करेंगी। दोपहर बाद सदर मुर्मू मनाली के मशहूर हिरेम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। मनाली अटल टनल रोहतांग और आसपास के इलाकों में सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। मनाली से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा जिसके बारे में बहुत से माहिरीन को उम्मीद है कि तकरीबन 3.5 साल के बाद इस शरह में कोई इजाफा किया जाएगा क्योंकि मगरबी एशिया तनाजे के सबब अफराते जर में इजाफा हो रहा है। पिछली बार रेपो शरह में फरवरी 2023 में इजाफा किया गया था। RBI ने उस वक्त इस शरह में 0.25% का इजाफा करके इसे 6.5% किया था। इसके बाद RBI ने 2023-24 में पूरे साल को इजाफा नहीं किया और 2025 में उसने रेपो शरह में कटौती करनी शुरू कर दी थी। आरबीआई की पॉलिसी के तहत फिलहाल रेपो रेट 5.25% है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो

0: सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंतकर्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि गोवा में सागरमाला प्रोग्राम के जरिए किस तरह इस नजरिए को अमली शक्ल दी गई है।
1: भारत का बहरी शोबा मुल्क की तिजारत के लिए अहम तरीन रहा है। इस शोबे ने गुज़श्ता बरसों में कई गुना तरक्की की है। हुकूमत ने साल 2015 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सागरमाला प्रोग्राम का आगाज किया ताकि मुल्क की 11,000 किलोमीटर से ज्यादा तवील साहिल, तकरीबन 14,500 किलोमीटर जहाजरानी की आबी गुजरगाहों और तिजारत के लिहाज से अहम बैन अलाक़वामी बहरी रास्तों से इस्तेफादा किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुल्क की इक्तसादी तरक्की को तहरीक देने की खातिर भारत की बहरी सलाहियतों को बरूए कार लाने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
1: गोवा ऐसा शहर है जो न सिर्फ ग्रां कदर बहरी विरसे बल्कि वसी आबी गुजरगाहों का हामिल है। पणजी से महेश चौपाड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ तूफान और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। भारत ने कल लखनऊ में खेले गए पहले T20 बैन अलाक़वामी मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन ही बना सकी। अब सीरीज का दूसरा मैच रांची में जुमे को खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ है असदुल्ला।
3: शुक्रिया गौनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाइव होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मरकजी काबीना में 10,000 करोड़ रुपए के MSME फंड मंजूर किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि इससे छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों को तवील मुद्दती तरक्याती सरमाया फराहम किया जाएगा और MSME शोबे को फरोग हासिल होगा। 4 रियासतों में हुए जिमनी चुनाव के लिए वोटिंग पुरअमन रही, 9 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, कबायली उमूर के मरकजी वजीर जुआल ओरम ने कबायली बिरादरियों से मुतालिक आईनी हकूक और कानूनी दफात पर मबनी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हुकूमत के एक सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी काबीना ने इस अहम कामयाबी को यादगार बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने विकसित भारत जीरामजी स्कीम के तहत काबिले इजाजत 375 कामों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले के 266 कामों में 41% तौसी की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोबाइल मुवासलात एसोसिएशन के आलमी निज़ाम के बोर्ड अरकान के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत वाली और लगातार तरक्की का आलेकार होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अलाक़वामी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

वक्त हो चला है 8:45 और 56 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है

म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी यानी बहुत सारा म्यूजिक और बहुत सारी बातें। वैसे सोमवार की सुबह तो हम बात करते हैं ताजगी की, लेकिन बुधवार आते आते ऐसा हो जाता है कि बस कब वीकेंड आए और कब वापस हम संडे मनाएं। लेकिन बुधवार अपने आप में एनर्जेटिक रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसे भरपूर जिए, अच्छी तरह से जिए। और ये मत सोचें कि आज का दिन परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि वैसे तो कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बुधवार के दिन आप जो ये प्रेशर में हैं, ट्रैफिक में हैं, या आप इस सोच में हैं कि कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं है, या ये देख रहे हैं कि मेरी चीज़ें मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हो रही हैं और दो दिन से इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, तो ये समझिए कि बेशक कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन मीनिंगफुल तो हो ही सकता है। इसलिए हर सुबह अपने आप को एक नई शुरुआत देना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए शरीर को थोड़ा समय आपने दिया यानी सुबह आप योगा करके निकले, मन को थोड़ा सुकून दिया कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर बाहर आ रहे हैं, तो ये जो जज्बा है ना कि सुबह अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करके निकलने का, ये आपको हर परिस्थिति से बड़ा बना देता है। बस ऐसी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये एक बड़ी शुरुआत को अंजाम देती हैं। तो शुरुआत हो चुकी है म्यूजिकल दिल लगे में, आप हमारे साथ हैं, मैं हूं पूनम आपके साथ, और ये एनर्जेटिक सा, प्यारा सा, रोमांटिक सा गाना सबसे पहले आपके लिए।

0: हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
1: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसे ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
2: पूजा,
3: अरे सुन क्यों नहीं रही, मुझे इग्नोर कर रही हो।
4: ये बात अब सबको पता चल गई।
1: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
5: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नियत बात हो रही थी सुबह की शुरुआत की, हमने आपसे कहा था कि एक हेल्दी नाश्ता इस वक्त बहुत जरूरी है, तो ये जो चाय और बिस्किट का ब्रेकफास्ट है ना, इसे छोड़कर एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। लेकिन साथ साथ और भी चीज़ें जरूरी हैं, जैसे सुबह उठते ही आप सोशल मीडिया पर मत जाइए, पहले खुद से मिलिए। सुबह उठते ही तीन काम जो जरूरी है उन्हें लिखिए, क्योंकि पूरी दुनिया एक दिन में जीतना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, सुबह उठकर किसी एक व्यक्ति को जेन्युइनली गुड मॉर्निंग कहिए, क्योंकि उनकी अच्छी एनर्जी आपकी सुबह को भी बदल देती है। और अननेसेसरली रिएक्ट करने से पहले एक डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे दिन को खुशनुमा बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, और हम फिर उस दिन को भरपूर तरीके से जी पाते हैं जो हम चाहते हैं कि आप जिएं। बस हमारे चाहने में आपको साथ देना होगा, आपको उसे उसी तरह से जीने के लिए अपने आप को प्रेरित करना होगा, उसे एक्शन में लाना होगा।

इसी खूबसूरत गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं हमेशा। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हर दिन को भरपूर जीने की कोशिश करते रहिएगा। एफएम गोल्ड के साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये साथ बना रहे। फिलहाल आप सुनिए समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और पिछले 12 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री

0: अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में पारंपरिक पूजा में भी भाग लिया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पूर्व में शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुडजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौते का आदान प्रदान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि एक समझौते के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और घाना विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा। दूसरे समझौते में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और घाना के CSIR क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और अब्लाक्वा के बीच भारत घाना साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और एक गेंद में 171 रन बनाए। भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर 102 और ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नोवाक जोकोविच ने बीजिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में पहला सेट 7-6 से जीता। कमर की चोट से जूझ रहे डी मिनोर ने दूसरे सेट का पहला गेम जीतने के बाद मैच से हटने का फैसला किया। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as the head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as the Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as the Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as the Chief Minister of Gujarat. He became the Prime Minister in May 2014. More on this from our correspondent. To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कल्पना कीजिए, साल 2001 का कच्छ, चारों तरफ धूल, मलबे का ढेर और अपनों को खोने का सन्नाटा। उसी राह के ढेर से जब एक नए नेतृत्व ने जन्म लिया तो उसने कंक्रीट के पत्थरों में केवल इमारतें नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास चुनना शुरू कर दिया। समय बदला, पन्ने पलटे और कच्छ के मलबे से उठा वही संकल्प जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो नए भारत की नई सौगात दिखने लगी। गुजरात के स्वर्णिम संकुल के प्रशासनिक कमरों से शुरू हुई ये सोच आज नर्मदा के तट पर 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर बादलों को छू रही है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर

0: भारत की धाक जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक, सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है, तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं, ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर KG सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद
0: सुरेश जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशोभूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो, G20 में हमने देखा यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
1: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का दे दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या। मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है, पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में आज हमारा GDP विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहाँ कर रहे हैं, निवेशक यहाँ आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
0: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चुकी हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, क्योंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था। कैसे देखते हैं उस फेज को, क्योंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
2: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी। मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं है। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक हैं, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी है। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है, विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूसा में हुई थी और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था। एक बहुत बड़ा टेंट जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो फिर ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती। जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब देश। भारत एक विकासशील देश जरूर है लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 तक, वहां तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, इसका भी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोर्ट कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझे कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
0: जी सुरेश जी, हमने यशोभूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, 3 और ऐसी पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना। कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
1: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक। वहीं से यह यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार की जगह सत्ता में जो विनम्रता आनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए, हम स्वाधीन जरूर बने,

0: दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, ये कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहाँ सत्ता भोगने नहीं आए, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है। जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से भी उसमें कई, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर, एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जेड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्टलक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
2: देखिए, दो तीन चीजें हैं, हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हो और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है, की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बड़ा है, तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसी के पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान में देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है। तो एक भारत

0: की एक अलग पहचान दी गई है को भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है। वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 1,00,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए गए हैं। वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी है और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट है उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हों चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है, अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा। आखिरकार 2018-19 में इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, ये पहले बन जाना चाहिए था, जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इस पे क्यों फैसला नहीं लिया। तो जहां पर इस एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब राजधानी NCR में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालम पर लग रहा था कि 1 घंटे हवा में चक्कर काटता रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार, सामान, तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले। तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालम पर उतरते तो वहां पर वो 2 दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन 2 दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहां, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहां श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहां जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है। लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47-48 में, 62 में, 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा। बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर, और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल वो उपयुक्त हो। पहले भी मैं गया हूं वहां तो बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसे जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आंके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए? और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया, क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिस कर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। ये संदेश बहुत आवश्यक है और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
0: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है, भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीजें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया, और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हल्के भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो अर्थक्विक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है। लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आज तक साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं है उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति में बनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किए जाने की जरूरत है, और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं, और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें, तो एक लोगों को जागरूक करने में आपकी अच्छी मदद मिलेगी।

0: और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं। कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
2: निश्चित ही, देखिए जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस उन भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप उसी से प्रेरित होकर बनाया था। लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है, और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला, या फिर उनका उपयोग, या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
0: देखिए तीनों बातें सही हैं, ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है, एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है, तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जिसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चल रहा था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन है, चाहे नए एयरपोर्ट है या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगें थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी, उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया, तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस 4 अलग अलग बिल्डिंगों में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे, तो वो सिस्टम नए भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेकर

0: इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरियट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था, फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा, आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसकी भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी जिसे हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है, और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
2: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है, और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच। लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं? और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है सुबह के 9:46 और 8 सेकंड्स और मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगे। दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमें एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का और अपने सपनों को सच करने का। अगर सुबह अच्छी सोच के साथ शुरू हो तो पूरा दिन अच्छा बीतने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है।

लेकिन इसके लिए बेहद ही जरूरी है कि आप बीते दिन की सारी बातें, खासकर नेगेटिव बातें भूल जाइए और सकारात्मक चीजों को देखने का नजरिया अपना लीजिए। आइए इसी खूबसूरत थॉट के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म काला पत्थर से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत राजेश रोशन का और बोल साहिर लुधियानवी के। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है और आज के दिन ही दुनिया भर में विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ये दिन कपास के आर्थिक और सामाजिक महत्व को पहचानने और कपास क्षेत्र से जुड़े किसानों, श्रमिकों और समुदायों के योगदान को सामने लाने का अवसर है। इस वर्ष यानी 2026 में विश्व कपास दिवस की थीम है सर्वहित के लिए कपास, व्यापार, परिवर्तन और सहयोग के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। यानी इस साल का संदेश साफ है कि कपास की असली ताकत तभी बढ़ेगी जब खेत से लेकर बाजार तक सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस विश्व कपास दिवस पर उस किसान को भी सलाम करते हैं जिसके खेत से लेकर हमारे कपड़ों तक कपास का सफर चलता है।

दोस्तों, फिल्म उपकार से ये खूबसूरत गीत आप महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुन रहे थे। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और बोल थे गुलशन बावरा के।

आज वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री एवं आपूर्ति पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसने कई पुराने करों जैसे वैट, उत्पादन शुल्क और सेवा कर को हटाकर पूरे देश के लिए एक एकल कर प्रणाली लागू की है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि आज यानी 7 अक्टूबर को बेगम अख्तर की जन्मतिथि है। आज ही के दिन सन 1914 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में उनका जन्म हुआ था। बेगम अख्तर एक मशहूर भारतीय गायिका और अभिनेत्री थीं। उन्हें मलिकाए गजल यानी गजलों की रानी भी कहा जाता है। बेगम अख्तर को सन 1972 में गायन संगीत के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए आपको सुनवाते हैं बेगम अख्तर का गाया हुआ ये खूबसूरत नगमा।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्ली यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा ठीक 10:30 पर कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हुआ है ठीक 1:11 और ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल महिला संगीत निर्देशक उषा खन्ना की आज हम बात करेंगे और उनके ही संगीत निर्देशन से सजे गीतों को आप तक पहुंचाएंगे। फिल्मी दुनिया में उनसे पहले यूं तो दो महिला संगीतकार रह चुकी हैं, जद्दन बाई जी और सरस्वती देवी जी, पर निसंदेह उषा खन्ना ने एक लंबी पारी खेली और संगीतकार के रूप में अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई। उन्होंने पुरुष वर्चस्व फील्ड में उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति कायम रखी। ऐसे दौर में जब एक से बढ़कर एक नामी संगीतकारों का दबदबा रहा, उन्होंने अपनी सफल और संयमित पारी खेली। बस इन्हीं के बारे में ढेर सारी बातें और करेंगे आपके साथ। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

जाने माने संगीतकार उषा खन्ना की बातें हो रही हैं, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। जन्म इनका हुआ 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में। इनके पिता मनोहर खन्ना एक लेखक और गायक रहे, एक अच्छे लेखक और गायक। वे ग्वालियर रियासत के जल कार्य विभाग में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत भी रहे। किसी कारणवश उनका यानी कि उषा खन्ना जी के पिता का मुंबई आना हुआ और इनकी मुलाकात हुई जानी मानी शख्सियत जतनबाई से। जद्दनबाई जी बहुत अच्छे संगीतकार रही, जिनकी बेटी नरगिस एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रही। जद्दनबाई ने इनसे नरगिस आज प्रोडक्शन की फिल्म रोमियो जूलियट के लिए कुछ गजलें लिखवाई और अच्छा मेहताना भी दिया। बस मनोहर खन्ना जी ने हमेशा के लिए मुंबई का ही रुख कर लिया और उन्होंने मन बना लिया कि यही रहेंगे और यही फिल्मों के लिए काम करेंगे। मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर नाम से फिल्मों में गजलें लिखना शुरू किया। इस तरह से घर पर ही संगीत का माहौल रहा और उषा भी इस माहौल में बहुत कुछ सीखती रहीं। उन्होंने संगीत की कहीं से बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली, पर हाँ पिता ने उन्हें हारमोनियम पर सारे गामा जरूर सिखा दिया था। उनके अनुसार यानी कि उषा खन्ना जी ने ही ये बताया कि सब कुछ गॉड गिफ्टेड रहा और वो बहुत अच्छी ऑब्जर्वर और लर्नर रहीं।

संगीतकार उषा खन्ना के फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने की बात करें तो सबसे पहले लोकप्रिय संगीत निर्देशक ओपी नैयर ने उषा खन्ना को उस दौर के जाने माने प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी से मिलवाया। कुछ महीनों बाद शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देखी देखो 1959 की ये फिल्म रही, इस फिल्म के लिए एक संगीतकार के तौर पर अनुबंधित कर लिया। एज अ हीरोइन आशा पारेख जी की भी ये पहली फिल्म रही, डेब्यू फिल्म रही। हालांकि इससे पहले वो बाल कलाकार के तौर पर भी काम कर चुकी थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। गीत संगीत को भी लोगों ने काफी पसंद किया। बाद में आशा पारेख अभिनीत एक और फिल्म के लिए उषा खन्ना को संगीतकार के तौर पर साइन किया गया। फिल्म रही 1961 की हम हिंदुस्तानी। तो यहाँ पर भी एक गीत तो बनता ही है, दिल देके देखो फिल्म, जिसमें कि पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंट उषा खन्ना जी ने संगीतकार के तौर पर संगीत दिया।

0: आकाशवाणी समाचार यशवी मेहता वांचे छे। सौ प्रथम मुख्य समाचार। विकसित भारत संकल्प सभा ने संबोधता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहू कि लोगों विश्वास और लाखों पार्टी कार्यकरों समर्पण तेमनी शक्ति सौथी मोटो स्त्रोत रह्यो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहू कि समग्र विश्व की नजर आज भारत विकास पर केन्द्रीय थी। साढ़ा त्रण वर्ष बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट वधारो कर्यो। शेर बजार में कड़ाकू। सीबीआईए पंजाब मुख्यमंत्री ओएसडी राजवीर खुमान और तेमना सहयोगी विरुद्ध गैररीति आचरवा फरियाद दाखिल करी और रशिया दरिया में तेल टैंकर पर युक्रेनियन ड्रोन हुमला में 23 भारतीय क्रू सभ्यों ने बचावाया। समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहू छे के लोगों विश्वास और लाखों पार्टी कार्यकरों समर्पण तेमनी शक्ति सौथी मोटो स्त्रोत रह्यो छे। आज नवी दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा ने संबोधता श्री मोदी कहू कि तेमणे आज सवारे श्री विनायक मंदिर की मुलाकात लीधी और देश और 140 करोड़ नागरिकों माटे प्रार्थना करी। तेमणे कहू कि 25 वर्ष थी वधु समय थी संचित लोगों विश्वास आ समयगाळा दरमियान मेळवेल अनुभव एक महान संपत्ति छे।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: प्रधानमंत्री कहू कि भारत माटे विशाल लक्ष्य नक्की करवानो आ समय छे। तेमनी समग्र राजकीय सफर नागरिकों ना अतूट विश्वास अने समर्थन ने आभारी छे। श्री मोदी कहू कि वर्तमान सरकार नी नीति तमाम नागरिक ना विकास पर केन्द्रीय छे।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: प्रधानमंत्री मोदी कहू कि भारत हवे तेनी वधती जती शक्ति और स्थितिस्थापकता माटे वधु ने वधु चर्चा में आवी रह्यु छे। तेमणे कहू कि छेल्ला 12 वर्षों में परिस्थिति संपूर्णपणे बदलाई गई छे। समग्र विश्व की नजर आज भारत ना विकास पर मंडायेली छे।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहू कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने काबू में लेवामां नक्सलवादग्रस्त राज्य में हवे शांति स्थपाई छे। गृहमंत्री अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाहिर सेवा में 25 वर्ष पूर्ण करवा बदल अभिनंदन पाठव्या। सोशियल मीडिया संदेश में श्री शाहे जणाव्यु कि गुजरात मुख्यमंत्री तरीके श्री मोदी ज्योतिग्राम योजना द्वारा भूकंपग्रस्त कच्छन पुनःनिर्माण कर्यु। सौर ऊर्जा और वायब्रंट गुजरात द्वारा दरेक गाम में 24 कलाक वीजड़ी पहुंचे ते सुनिश्चित कर्यु। श्री मोदी रोकाण और उद्योग ने नवी दिशा आपी। लोकसभा अध्यक्ष बिरलाए पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाहिर सेवाना 25 वर्ष पूर्ण करवा बदल अभिनंदन पाठव्या। गृहमंत्री अमित शाहे आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जाहिर सेवाना 25 वर्ष पूर्ण थवा पर अभिनंदन पाठव्या और ऐतिहासिक दिवस गणाव्यो।

आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और इस वक्त बातें हो रही हैं यहाँ पर संगीत निर्देशक उषा खन्ना की। उनके संगीत निर्देशन में बने बहुत सारे गीत, मैंने रखा है मोहब्बत फिल्म शबनम से, हम तुम कहते हैं जुदा होके, एक सपेरा एक लुटेरा, गा दीवाने, झूमके, फ्लैट नंबर 9, छोड़ो कल की बातें, हम हिंदुस्तानी फिल्म से, शायद मेरी शादी का ख्याल सौतन फिल्म से, और तू इस तरह से मेरे जिंदगी में शामिल है, आप तो ऐसे ना थे, जैसे गीतों को सुनकर ना उनके बेहतरीन उम्दा जबरदस्त स्टाइल के म्यूजिक कंपोजिशन का पता लगाया जा सकता है। उनका अपना एक अलग अलहदा ही अंदाज रहा। उनके अनुसार उषा जी अरबी संगीत से प्रेरित रहा करती थी, जो कि उन्हें काफी पसंद रहा, और ये जो इसका थोड़ा थोड़ा सा असर था ना, प्रभाव था ना, उनके म्यूजिक कंपोजिशन में दिखता था। उनके काम के प्रति जज्बे और जुड़ाव ने उन्हें अपनी एक मजबूत जगह दिलवाई फिल्म इंडस्ट्री में। उनका जीवन, उनका संगीत और एक महिला संगीतकार के रूप में उनकी अनूठी उपलब्धि कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। और चलते चलते होटल फिल्म से गीत सुनते हैं, कितना मतलब बोलते हैं प्यारा सा ये एक गीत है। मुझे लगता है शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा, शायद ही कोई म्यूजिक लवर होगा जिसे ये गीत ना पसंद हो। मुझे लगता है सभी को पसंद होगा, और सचमुच पर्सनली

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहें हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और 2:30 बजे मेरी और आपकी होगी फिर से एक और मुलाकात संगीत.com।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाए। आरबीआई ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। उसने माली साल 2027-28 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 7.1% रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और आज भारत ने फिजी में कोप 31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तर इकदाम और पेरिस मुआहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और इसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने खुद को ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वो लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजर्बा हासिल हुआ है वो एक अजीम असासा है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक वक्त में पॉलिसी के मफलूज रहने पर मरकूज बातचीत अब भारत की बढ़ती ताकत और मुज़ाहमत पर मरकूज है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन साल 2000 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और इसे सुनहरी और तारीखी दिन करार दिया है। गुरुग्राम में आज विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में दफा 370 की मनसूखी मानवाजियत का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला मेयार सतह तक पहुंचाने जैसी अहम हसूलियाबियां हासिल हुई हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुहिम के हिस्से के तौर पर मशल जुलूस निकाले जा रहे हैं जिसके तहत नौजवान अफराद सेवा ज्योति यात्रा निकालेंगे और मुकर्रा मकामात पर मशल नस्ब करेंगे। जनाब शाह ने सभी से बड़ी तादाद में यात्रा में शिरकत की अपील की।
2: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी ने गुजरात के सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का इनेकाद किया है। जनाब मोदी के अवामी खिदमत के 25 सालों में पहले गुजरात के वजीर

पहला और बाद में मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे का अरसा शामिल है। पूरे गुजरात में यात्रा निकलने के मकामात पर नई दिल्ली से विकसित भारत संकल्प सभा का वज़ीर आज़म का खिताब लाइव नशर किया गया, जिसके बाद मकामी लीडरों ने यात्रा के बाज़ाब्ता आगाज के तौर पर सेवा ज्योति जलाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब टेली मौसलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी इख्तरा के मैदान में खातिरख्वाह पेशरफ्त को नुमाया करेगी। साथ ही इश्तराक, सरमायाकारी और मालूमात के तबादले का आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की शराकतदारी न सिर्फ आज के लिए की जा रही है बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए भी है। राजधानी अक्रा में घाना के फॉरेन सर्विस के इदारे में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सफारत को मुसाबिकती रुझान से इस तरह निमटना चाहिए कि ये मफादात में इख्तलाफात के बावजूद टकराव की शक्ल अख्तियार न करके ताउन को फरोग दे। डॉक्टर जयशंकर ने मुल्क में मईशत, बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में भारत की तरक्की को उजागर किया। उन्होंने इस जरूरत को उजागर किया कि भारत और अफ्रीका के नौजवान हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बने। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाईयों और जम्मू कश्मीर के बारे में इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के तबसरे को मुस्तरद कर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की छठी कमेटी में लोकसभा रुकन बिप्लब कुमार देव ने कहा कि ओआईसी मजलूम और जालिम के दरमियान फर्क करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान से फैलने वाली सरहद पार दहशतगर्दी से अपने लोगों की हिफाजत करने का हक हासिल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आलमी सतह पर गैर यकीनी के माहौल में बढ़ते हुए इफरात जर से मुताबिकत की खातिर रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। अपनी दो माही पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि माली पॉलिसी से मुतालिक कमेटी एनएमपीसी ने इत्तेफाकी राय से पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% के इजाफे का फैसला किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे से सपहर 3:30 बजे तक दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर पर होने वाले मुजाहरों के तनाजुर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कश्मीरी गेट और उसके अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासिर रह सकती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर कल एहतजाज के दौरान नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जबरदस्ती दाखिल होने पर दिल्ली पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज की गई है। जराए के मुताबिक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मुतालिका दफात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच का आगाज कर दिया गया है। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के कई अराकीन पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के मकर द्वार से भारत के इंतखाबी कमीशन के सदर दफ्तर तक एहतजाजी जुलूस की अपील की थी। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के वजीर आला के ओएसडी राजबब्बर घुमन और उनके साथियों के खिलाफ तबादलों के बदले नकद रकम लेने, आईएएस और आईपीएस ओहदों के अफसरान की तकरीरों में मुदाखलत करने और इल्जाम की जांच में बदउनवानी करने से वाबस्ता मामलों में एफआईआर दर्ज की है। भारत ने फिजी में कोप 31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तरकदाम और पेरिस मुआहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बात की जरूरत है कि मुफाहमत में दूरी को खत्म किया जाए, आबोहवा से मुतालिक मौजूदा अजाइम को पूरा किया जाए और आलमी दर्जे हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने देने के मकसद की जानिब पेशरफ्त में तेजी लाई जाए। भारतीय महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज दिन में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कराईकल उत्तर प्रदेश में भी आज दिन में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाए। आरबीआई ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में

0: विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और

0: तो उसे अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
1: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
2: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गाँव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
2: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ SJ शंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 तथा रवींद्र गाडगीळ यांनी सतारीवर वाजवलेला राग शुद्ध सारंग आपण ऐकणार आहात। सुरुवातीला आलाप, त्यानंतर जोड, झाला आणि मध्यलय आणि द्रुतगत 3 तालात निबद्ध आहे। त्यांना तबल्याची साथ गणेश तनवडे यांनी केलेली आहे। ऐकूया रवींद्र गाडगीळ यांनी सतारीवर वाजवलेला राग शुद्ध सारंग।

0: गोल्ड खरा सोना
1: 100.1 FM गोल्ड अने न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप पर गरवा गुजरातीओनो गरवो कार्यक्रम गीत गुर्जरीमां आजे आपनी साथे छीए हूँ आरजे आरती
2: अने हूँ तरुलता करोडिया।
1: आप सौने अमारा सस्नेह नमस्कार।

0: सातमा नौरते साथिया पूरता पूरता ताड़ियोना ताले आवशे नेहा परिख।
1: आठमा नौरते होम हवन धूप अने शंखना साथे नैमिता रावल।
2: रास गरबा रमता रमता आवी पहुंचिया 51 शक्तिपीठोना अंतिम पड़ावमा। नौमा नौरते श्वेता कोल्हे।
3: ओनली ऑन 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम एकदम खरा सोना जेवो गीत गुर्जरी बपोरे 3 वागे सांभळवानो चूकता नहीं नवरात्रि स्पेशल। आप सांभळी रह्या छो 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना अने न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लिकेशन पर आपनो मनगमतो कार्यक्रम गीत गुर्जरी। मित्रों आपना जानीता गुजराती साहित्यकार नवलकथाकार वार्ताकार इला आरब मेहता हवे अपनी वच्चे नथी। गुणवंत आचार्यना तेओ दीकरी अने जानीता लेखिका वर्षा अडालजाना तेओ बहन। एमने अनेक नवलकथाओ लखी वार्ताओ लखी एमनी नवलकथा पर थी नाटको पण भजवामां आव्या। तेओ आकाशवाणी साथे अनेक वर्षो सुधी जोड़ायेला रह्या। एमनी नवलकथा झीली में कूंपड़ हथेड़ी में एनो नवलकथा पठन पण आकाशवाणी में करवामां आव्यु अने एमनी अनेक वार्ताओ आपे महिला मंडल कार्यक्रम में अने संवादिता चेनल ना अनेक कार्यक्रम में आपणे सांभळी हशे। तो ए इला अरब मेहता जेमने 6 वार्ता संग्रहो लख्या अने आरती तने तो खबर छे एमनी केटली बधी नवलकथाओ छे।
4: हाँ, त्रिकोणनी 3 रेखाओ थी जेलो आकार राधा एक हता दीवान बहादुर आवतीकालनो सूरज अने मृत्यु 32 पुतळीनी वेदना दरियानो माणस वसंत छलके परपोटानी पांख 5 पगला पृथ्वी पर दिन न्यू लाइफ झीली में कूपन हथेड़ीमां अने वाडनो समावेश थाय छे।
3: तो मित्रों आकाशवाणी परिवार आ जाणीता मानीता लोक लाडीला एवा साहित्यकार नवलकथाकार वार्ताकार इला अरब मेहता ने भावभीनी श्रद्धांजलि आपी श्रद्धासुमन अर्पण करे छे।

पीढ़ा कहवाय छे। अही शक्तिपीठों में पूजा 16 दिवस पहला एटले मूलाष्टमी थी शुरू थी जाए छे, जेने षोडश उपचार पूजा कहवाय छे। श षटकोण नो श। अही पण पंडालों में धुनी नृत्य एटले बंगाळना धुनुची नाच जेवुं ज होय छे ए थाय छे। ओडिया भाषा में देवी दुर्गा की स्तुति करता भजनों, जगन्नाथ संस्कृति ने लगता गीतों अने चंडीपाठना गीतों गवाय छे। ओरिस्साना तहेवारों की पीठानी प्रसाद वगर अधूरा छे। ओरिस्साना तहेवारों पीठानी प्रसाद वगर अधूरा छे। दशहरा दिवसे खास करीने मंडा पीठा, काकरा पीठा, पोड़ो पीठा अने अरीसा पीठा देवी ने धरावाय छे। मीठा पीठा, मीठा पीड़ा चोखा जेने कनिका कहे छे, ते अने शाकभाजी दाळ मिक्स करीने बनावेली प्रसिद्धि दालमा प्रसाद धरावामां आवे छे। आ सिवाय खीरी अने खीर पण धरावामां आवे छे। अने विजयादशमीना दिवसे देवीने शांत करवा माटे ठंडा दहीवाड़ा भात, दही पखालानो पण भोग धरावामां आवे छे। अने ओरिस्सामां मीठाईमां छेना पोड़ो अने छेना पायेश मुख्य छे।

0: अपना जवानों पण समय थई चुक्यो छे, तो अत्यारे मने तरुलता करोडिया
1: अने मने आरती ने
0: आपो रजा, फरी मळीशुं वचन साथे। नमस्कार, 4 વાગે આપ સાંભળશો સમાચાર।

0: अधर्म पर धर्म अने असत्य पर सत्य ने विजय गाथा विजयोत्सव पापड़ा जलेबी नी उजाणी दशहरा ना दिवसे आवशे सचिन वजाणी
1: ओनली ऑन 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम एकदम खरा सोना जेवो गीत गुर्जरी बपोरे 3 वागे सांभळवानो चुकता नहीं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौती

चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा नहीं हुआ होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल होता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न सिर्फ वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेद के बावजूद सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले आज फिजी में आयोजित एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई और पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। साथ ही वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना भी जरूरी है। श्री यादव ने क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में वृद्धि करके इसे 0.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। कोलोराडो विश्वविद्यालय डेनवर CU डेनवर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से हैदराबाद में एक नया परिसर स्थापित करने के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। ये भारत में डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान स्थापित करने के लिए अधिकृत होने वाला अमेरिका का पहला सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। ये तेलंगाना में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर भी होगा। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे।

0: इसके लिए पात्रता मानदंड और अन्य विवरण के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.ircon.org। वेबसाइट का पता फिर से सुनिए www.ircon.org। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आईआईटी का निदेशक संस्थान का शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुख होता है। उनसे न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के प्रमुख के रूप में नेतृत्व गुणों का धारक होने की आशा की जाती है। अभ्यर्थी पीएचडी के साथ साथ पूर्ववर्ती डिग्री अधिमानत अभियांत्रिकी की शाखा में प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य होना चाहिए। विशेष मामलों में विज्ञान, गणित अथवा प्रबंधन डिग्री धारक अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है। अन्य नियम, शर्तों, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.dohe-education.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उनसे न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के प्रमुख के रूप में नेतृत्व गुणों का धारक होने की आशा की जाती है। उम्मीदवार पीएचडी के साथ साथ पूर्ववर्ती डिग्री अधिमानत अभियांत्रिकी की शाखा में प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य होने चाहिए। विशेष मामलों में विज्ञान, गणित अथवा प्रबंधन डिग्री धारक अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जा सकता है। संपूर्ण शैक्षणिक अर्हताओं, योग्यताओं और आरक्षण, वेतनमान, तैनाती के स्थान आदि विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.dohe-education.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार मुकेश, आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन चोपड़ा एंड मुकेश, एंड वी हैव फॉर यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, एंड वी ऑल्सो हैव रिपोर्ट्स एंड कैप्सूल्स एंड एट्रीब्यूट्स विल बी देयर टू द पर्सनालिटीज हु मेड अ डिफरेंस एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्चुअली। सो ऑल दिस वुड हैपन ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स एंड दिस इज आवर वे ऑफ टेलिंग यू ऑल टू स्टे ट्यून्ड विद अस। फर्स्ट वी आर बिगिनिंग विद द न्यूज हेडलाइंस।
1: बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया।
2: एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर स्ट्रेसेस द नीड फॉर इंडिया एंड अफ्रीका टू टर्न देयर यंग पॉपुलेशन इनटू स्किल्ड एंड एम्पावर्ड सिटीजंस।
1: रिजर्व बैंक ने रेपो दर 25 आधार अंक की वृद्धि कर 5.5% की। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान।
2: IMD फोरकास्ट हैवी रेनफॉल ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा टुडे।
1: भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया।

0: Let's begin our discussion segment, Mukesh, Dateline India. Today we are talking about something that touches our lives every single day, well, quite literally.
1: बिल्कुल सही कहा शगुन, हमारे पहनने वाले कपड़ों से लेकर इससे जुड़े रोजगार तक कपास सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। यह एक प्राकृतिक रेशा है जिसकी कहानी दुनिया भर के किसानों, मजदूरों, व्यवसायों, समुदायों और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ती है।
0: The listeners, you might have guessed it, it's cotton. We are celebrating World Cotton Day, a day which recognizes the importance of cotton and the millions of people whose lives and livelihoods are connected to it. And this year's theme, let's tell you that, Cotton for Good, Building Prosperity Through Trade, Transformation and Partnership.
1: और इस विषय में एक मजबूत संदेश भी छिपा है। कपास में समृद्धि लाने की क्षमता है लेकिन इसे हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। कपास क्षेत्र को ज्यादा टिकाऊ और समावेशी बनाने में किसानों, सरकारों, उद्योगों, संगठनों और उपभोक्ताओं सभी की भूमिका है।
0: Well, yes, listen in now, listeners, to this special report.
2: Cotton is a natural plant-based fiber obtained from the seeds of cotton plants, mainly belonging to the Gossypium genus. It is an important cash crop and industrial raw material, supporting farmers, textile industries, employment, and international trade. Cotton is primarily used in textile and clothing manufacturing, while cotton seed is used for oil extraction and animal feed. It provides income and employment across the farm to fiber value chain, including cultivation, ginning, spinning, weaving, processing, and garment manufacturing. Cotton generally requires a warm growing season, adequate moisture during growth, and relatively dry conditions during boll opening and harvesting. It grows well in deep, fertile, and well-drained soils. In India, the black soil, that is, the regular soil of the Deccan region, are particularly suitable. Cotton is relatively drought tolerant, but irrigation can significantly improve productivity in areas with inadequate or irregular rainfall. India is among the world's major cotton producing countries and has a large cotton based textile industry. Cotton cultivation generates cotton seed, linters, cotton stalks, which can be used for oil, animal feed, cellulose and other industrial purposes. It is an important agriculture commodity in international trade, linking cotton producing farmers with global textile and apparel market. Cotton cultivation in Indian subcontinent dates back over 5000 years to the Indus Valley civilization. Historically, Indian cotton and fine muslins dominated international trade and helped shape global textile markets long before industrial revolution. Mahatma Gandhi made handspun khadi a powerful symbol of economic self-reliance and resistance during India's struggle for independence. World Cotton Day is an opportunity to recognize millions of people whose livelihoods depend on cotton and to highlight the value of this natural fiber as a global public good. This is Sanyukta Yadav for Parikrama.
0: How interesting, our very interesting report. Cotton holds a special place in the lives of people across India. And this is not only because it supports millions of farmers and workers, but also because it is perfectly suited to our country's climate. And India experiences long, hot summers, high humidity. We have all experienced it this year as well in many regions. So cotton clothing is a popular everyday choice because it is light, breathable, comfortable, and it allows air to circulate and help absorb sweat.
1: बिल्कुल सही कहा, पारंपरिक साड़ियां, कुर्ते और धोती से लेकर आधुनिक शर्ट और ड्रेस तक सूती भारतीय जीवन और संस्कृति में गहराई से रची बसी है। साथ ही कपास की खेती लाखों भारतीय परिवारों को रोजगार देती है और देश के टेक्सटाइल उद्योग तथा अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसलिए भारत के लिए कपास सिर्फ एक फसल या कपड़ा नहीं है, यह हमारे किसानों, हमारी परंपराओं, हमारे मौसम, काम करने की जगहों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है।
0: Well, think about it. Behind every cotton shirt, every cotton bedsheet, every towel, there is a long chain of people. And there are farmers who actually grow the crop and workers who harvest and then they process it. Then manufacturers transform it into products. And then businesses, they bring those products to us. We have explained the whole cycle.
1: बिल्कुल, और इन लोगों में लाखों छोटे किसान और मजदूर शामिल हैं। इनमें महिलाएं और उनके परिवार भी हैं जो अपनी आजीविका के लिए कपास पर ही निर्भर हैं।
0: Exactly. For many developing countries, cotton is an important contributor to the economy. So when we talk about the future of cotton, we're also talking about the future of communities and the families around the world.
1: और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये दिन उन किसानों का सम्मान करता है जो खेतों में कपास उगाते हैं, जिससे पूरी मूल्य श्रृंखला में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो कताई मिल हो, कपड़ा बनाने वाली इकाई हो या गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों।
0: And Mr. Giriraj Singh, Mukesh, he also informed that 60 lakh farmers in the country are engaged in cotton cultivation. He also underlined that countless small enterprises are linked to the handloom industries that not only operate domestically but also export their products.
3: विश्व कपास दिवस हम मनाते हैं, इस दिन हम किसानों को याद करते हैं। कपास में अगर भारत के अंदर 60 लाख किसान जुड़े हुए हैं, तो हमारे करोड़ों मजदूर जुड़े हुए हैं, करोड़ों छोटे छोटे उद्यम जुड़े हुए हैं हैंडलूम से, तो मैं सबों को आज के दिन बधाई देता हूँ।
1: और विश्व कपास दिवस हमें इस बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देने का अवसर देता है और ये समझाने का भी कि टिकाऊपन किसी एक व्यक्ति का या एक उद्योग की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए साझेदारी की जरूरत होती है।
0: And it also gives us a chance to celebrate the people behind this incredible natural fiber. Every cotton product has a human story behind it.
1: तो चाहे आप खेती बाड़ी के बारे में सीखने वाले स्कूली विद्यार्थी हों, कपास का कारोबार करने वाली कोई कंपनी हो, टिकाऊ तौर तरीकों को बढ़ावा देने वाली कोई संस्था क्यों ना हो, या बस आज कपास की शर्ट पहने हुए कोई आम व्यक्ति हो, आप भी इस बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं।
0: So many of our listeners would be wearing cotton right now. This makes me wonder.
1: हम भी पहने हैं, आप भी पहने हैं।
0: Yeah.
1: और संयुक्त भी पहने हैं।
0: Yes, right. Our editor. You can learn where cotton comes from, right? And support responsible choices, spread awareness, and appreciate the people who make this everyday fiber possible. And cotton isn't just about what we wear. It's about trade, it's about livelihoods, communities, opportunity, and sustainable development.
1: और जब लोग एक साथ आते हैं, जब किसान, उद्योग, सरकारें और उपभोक्ता भागीदार के रूप में काम करते हैं, कपास अधिक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य में योगदान देता है। तो इस विश्व कपास दिवस पर आइए फाइबर के पीछे के हाथों, आपूर्ति श्रृंखलाओं के पीछे के समुदायों और आगे की संभावनाओं का स्मरण करें।
0: Mukesh, shall I say that we should celebrate cotton not just as a natural fiber, but as a global public good with the power to connect people and create opportunities.
1: और परिक्रमा कार्यक्रम में अब वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले गोवा चलें शगुन।
0: वेल श्योरली एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू स्टार्ट हियर विद The with justice actually. It's this particular report will be about justice, which became little easier for women and children victims in Goa. So in a unique initiative, transport app, Goa Miles and Stop Child Abuse Now or Scan Goa joined hands for free taxi service to them. Our correspondent informed that
4: under the deal, Goa Miles will carry victims at no cost for court hearings and for recording evidence. Their identities and the details of their cases will be kept confidential. This will be of immense help to the victims coming from remotest part of the state. The cost will be borne by participating companies, not by the victims. Transport Minister Movin Gudinu claimed that initiative is unique in country.
5: In terms of transport is being provided to victims of crime in remote villages and from all over Goa. They will bear the entire cost, they won't have to pay anything, and it's only that Goa Scan has been pushing the proposal and they have accepted. So I say what a lovely initiative. If many such initiative comes, I think this world will be a better place, and I hope it will continue working in the long run.
4: Scan Goa is a voluntary organization that assists women and child victims of abuse and provides holistic support to families in difficult circumstances. For many victims in remote villages, getting to court is half the battle. This agreement aims to make their journey a little easier. For Parikrama, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
1: और गोवा के बाद अब चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसके इस उत्सव को मनाते हुए एक प्रमुख पड़ाव भी हासिल किया है। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विशेष अतिथि के रूप में आज शामिल हुए। इसके अलावा शिक्षाविद संकाय सदस्य, छात्र और पूर्व विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो सुनते ही रिपोर्ट।
6: From its early years to its present day identity as an important center.

0: apartment and was again arrested in jail for 3 months. After independence, she took an active interest in ensuring farmers' welfare in the district and organized many protests for them.
1: 7th October is also the death anniversary of freedom fighter, reformer and educationist K. Kelappan Nair, who is also known as Kerala Gandhi. He was a founding member and president of Nair Service Society. In 1930, he led the salt satyagraha and marched to Payyanur Beach and made salt.
0: Besides, he also fought relentlessly against untouchability and caste-based discrimination. He played a crucial role in the unification of the state of Kerala. He was elected to parliament in 1952.
2: और अब हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी केदारेश्वर सेन गुप्ता को. आज उनकी पुण्यतिथि है. केदारेश्वर विद्यार्थी जीवन में ही अनुशीलन समिति के नेता पुलिन बिहारी दास के संपर्क में आ गए थे और शीघ्र ही उनकी गणना क्रांतिकारी दल के प्रमुख व्यक्तियों में होने लगी. शशीन्द्र सान्याल उस समय उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के नेता थे. उनकी गिरफ्तारी और रास बिहारी बोस के जापान चले जाने के बाद केदारेश्वर को पार्टी को संगठित करने के लिए वाराणसी भेजा गया. उन्होंने वाराणसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया और शीघ्र ही पुलिस उनके पीछे लग गई, इसलिए वे बंगाल वापस चले गए. वहां भी उन्होंने फरार रहकर दल का काम आरंभ किया. 1917 में वे पुलिस की पकड़ में आ गए और 1919 तक हजारीबाग जेल में बंद रहे. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने रुई का व्यापार आरंभ किया, किंतु इससे जो लाभ होता था वो उसे क्रांतिकारी दल के कामों में लगाते रहे, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व देश को ही समर्पित कर दिया. व्यापार के सिलसिले में मुंबई गए और फिर गिरफ्तार करके बंगाल के बरहांगपुर जेल में डाल दिए गए. वहां जेल कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की. इससे बिगड़े स्वास्थ्य के कारण उन्हें क्षय रोग ने जकड़ लिया. गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए जेल से छोड़कर उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया. कुछ समय बाद छूटे तो 1941 से 1946 तक फिर जेल में डाल दिए गए. बाद में पूर्वी बंगाल से कोलकाता आ गए और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों के स्वप्न साकार के उद्देश्य से अनुशीलन भवन की स्थापना की.
3: Well, we salute the brave heart. Today, listeners, we are also remembering Niels Bohr, the physicist and one of the founders of quantum mechanics. In 1911, he came up with the quantum model of the hydrogen atom, which correctly predicted its spectrum. So Bohr won several arguments with Einstein even concerning the nature of quantum reality. And it's much favored and much it's very, very famous, this particular quantum mechanics and these terms. Actually, I'm talking about Bohr is best known for the investigations of atomic structure and also for his work on radiation, which won him the 1922 Nobel Prize for Physics.
2: और अब हम याद कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी रहीं दुर्गावती देवी को. उनको दुर्गा भाभी भी कहा जाता है. प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गा देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी. चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलोसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती बोहरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर थी. सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्ष दुर्गा भाभी रही थी और तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली को मारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था, जिस पर दुर्गा भाभी ने ही गोली चलाई थी. क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा के साथ विवाह हो जाने के बाद दुर्गा भाभी शीघ्र ही अपने पति के कार्यों में सहयोग देने लगी. उनका घर क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था. वे सभी का आदर करती, स्नेहपूर्वक उनका सेवा सत्कार करती, इसलिए सभी क्रांतिकारी उन्हें भाभी कहने लगे थे और यही उनका प्रसिद्ध नाम हो गया. अपने क्रांतिकारी जीवन में दुर्गा भाभी ने खतरा मोल लेकर कई बड़े काम किए. उनमें सबसे बड़ा काम था लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले सैंडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को कोलकाता पहुंचाना.
3: We are also remembering Sissy Houston. Well, the soul and gospel singer. She is nicknamed the Duchess of Gospel. Her best known singles include top 20 R&B chart single I'll Be There as well. She was honored by several institutions over her career. In 1990, she received the Stellar Award of Excellence for her contributions to gospel music.

0: की प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर को आज उनकी जयंती है। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1968 में पद्मश्री और सन 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बेगम अख्तर को मलिकाए गजल भी कहा जाता है, तो क्यों ना उनकी एक पहले गजल सुन ली जाए।
1: श्योर।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 7 अक्टूबर 1914 में जन्मी बेगम अख्तर का बचपन के दिनों से ही संगीत की ओर रुझान था। वो पार्श्व गायिका बनना चाहती थीं। उनके परिवार वाले उनकी इस इच्छा से सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनके चाचा ने बेगम अख्तर के संगीत के प्रति लगाव को पहचान लिया और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा नहीं हुआ होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल होता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी

सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 में इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में इटली के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय में G7 G20 अंतर्राष्ट्रीय खतरों और एकीकृत रणनीति के निदेशक पावलो मारी से मुलाकात की। श्री मारी नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध पर भारत इटली के संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत यात्रा पर हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP 31 से पहले आज फिजी में आयोजित एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना बेहद आवश्यक है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष कपास दिवस का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को इस दिवस की शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। आज 7 अक्टूबर 2026 बहुत ही सुंदर दिन है, सुहाना मौसम है और व्रत त्योहार तो भारत में लगे ही रहते हैं। तो आपका अगर घर में किसी की शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 25 साल पूरे किए हैं जनसेवा

कि उनको भी बहुत बहुत बहुत दिल से बधाई। तो मित्रों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मंजिल तो मिल जाएगी, मंजिल तो मिलती ही है, लेकिन उस सफ़र को भी इंजॉय करना होता है। तो अगर आप अपने काम में दक्ष हैं तो ज़रूर ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी। और ज़िंदगी का एक उद्देश्य भी होता है, और वो उद्देश्य है कि हम जो भी ईश्वर ने हमें काबिलियत दे के भेजा है उस चरम लक्ष्य पर हम पहुँचे, उस मंजिल पर हम पहुँचे। तो आप अपनी निर्धारित की हुई मंजिल पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। नमस्कार।

0: गाते गुनगुनाते का ये सफर जारी रह रहा है आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बहुत ही सुंदर मुबारक दिन, ऑस्पिशियस डे, बहुत अच्छा लग रहा है हमको आपसे रूबरू होके आज के दिन। जी हाँ, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे हमें मिलते हैं जो इतने साल उनके साथ बिता के भी लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल अजनबी जैसे हैं, उनसे मन नहीं मिलता। और कई बार ऐसे दोस्त, आप जैसे दोस्त साथ होते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दिल में उतारते हैं कि लगता है कि अरे वाह, तो एक परिवार, एक रूह वो भी तो है जो सुन रही है मुझे और जो मेरे साथ में है, जो मेरा परिवार है, बृहद परिवार है, आकाशवाणी का परिवार है। तो अपनापन है, अजनबी पन को मिटाने के लिए अपनापन लाना होगा। अपनेपन की सिर्फ एक ही जड़ी बूटी है, वो है प्यार, मोहब्बत, विनम्रता।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

गाते गुनगुनाते ये सफर चलता रहे, जिंदगी में और क्या चाहिए, सुकून के पल चाहिए। सचमुच में सुकून और किसी जगह में नहीं है, बल्कि उन्हीं पलों में मिलता है जिन्हें हम दिल से जीते हैं, है ना। स्वागत है आप सभी का, जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं, जो मित्र अभी अभी जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आपके साथ हम रूमी मलिक।

बिल्कुल ये सफर चलता रहे, शीतलता हो जिंदगी में। और शीतलता की जब हम बात करते हैं तो चांद से बड़ी उपमा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि चांदनी की जो शीतलता है वो इतने कमाल की होती है कि सदा से कवि उसी की उपमा देते हैं, शीतल किरणें। और आपको पता है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जड़ी बूटियां जो हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल दुर्लभ है हिमालय की कंदराओं में, वो कैसे पकती हैं, दवा कैसे बनती है, मालूम है? चंद्रमा की रोशनी में। जी हाँ, तो चंद्र जो है, जो शास्त्र बताता है

वो हमारे मन का भी प्रतीक है। मनसा जातो चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए क्या करना चाहिए आप जानते हैं, शांत रहना चाहिए, कविता पढ़नी चाहिए, अंदर काव्यात्मक गुण होने चाहिए और मन में हर एक के प्रति एक दयालु भाव होना चाहिए। चंद्रमा की प्रकृति वैसी है, चंद्रमा सुंदरता को भी दर्शाता है। ये सारी बातें हम जानते हैं, पर कभी कभार एक बार फिर से इकट्ठा सुनना अच्छा लगता है।

0: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसे ही आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
1: पूजा,
2: अरे सुन क्यों नहीं रही, मुझे इग्नोर कर रही हो?
3: ये बात अब सबको पता चल गई।
0: मुड़के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
4: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो।
3: इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर।

0: गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। आपके साथ है हम रूमी मलिक और दोस्त गुलाबी ठंड का मौसम आ गया। आहा कितना अच्छा अच्छा लगता है ना। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है, तो ऐसे में उनको यही सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है या राय दी जाती है ये कहिए कि भाई थोड़ा सा वार्मर्स ले लिया कीजिए, है ना, हल्की फुल्की शॉल या स्टोल साथ में रखिए और सॉक्स पहनिए और क्या जुराब, क्योंकि हीट जो होती है, जो शरीर का जो टेम्परेचर है, वो जो दो जगह से एस्केप करता है, कहाँ से भागता है, सर से और पाँव से। तो या तो सर पे टोपी लगाइए या कुछ शॉल हैट जो भी आपकी इच्छा हो, या पैरों में सॉक्स डालिए, है ना। और ठंड से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, ठंड और घमंड दोनों से ही बचना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान कर जाता है। आकाशवाणी एफएम गोल्ड गाते गुनगुनाते रूमी के साथ।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

हमेशा ध्यान से रहना चाहिए जिंदगी में, कोई चीज खोनी नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, बड़े लोग, पर हो पाता है क्या? कितनी चीजें खो जाती हैं हमारी, नहीं? बस एक शय अगर खो जाए तो इंसान अमीर हो जाता है। हाँ, खो के भी कुछ पाया क्या? जब दिल खोया, और नहीं तो क्या, दिल खोया तो प्यार पाया, सम्मान पाया, और क्या। तो ऐसा भी होता है, कई बार खो के भी इंसान ज्यादा अमीर, ज्यादा समृद्ध हो जाता है।

हाय, काश ये सफर चलता ही रहता, आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए गाते गुनगुनाते के। पर जाते जाते आपसे क्या कहें, यही कह सकते हैं बंधुवर कि जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ खाना ही ना पचाएं, बल्कि पैसा, बात, सुख दुख, निंदा, प्रशंसा सब पचा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अपनी जुबान होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ आप हर एक की बात मानते चले, नहीं, बिल्कुल अपना वजूद होना चाहिए, अपनी बात होनी चाहिए, अपनी बात को पूरा करने का दमखम भी होना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि आप हंसते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे अपने काम में, रूमी मालिक को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड, गाते गुनगुनाते में। आखिरी पेशकश, एक छोटा सा गीत आपको सुनाते हैं, गीत का कुछ ही भाग आप सुन पाएंगे। खैर, मिलेंगे जल्द ही, खुश रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली

0: स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has interacted with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Tirth in New Delhi ahead of the India Mobile Congress IMC 2026. GSMA is a global organization unifying the mobile ecosystem, representing mobile operators and organizations across the mobile ecosystem and adjacent industries. During the interaction, the Prime Minister emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. He stressed that democratization of technology is essential to ensure that no section of society is left behind. Prime Minister Narendra Modi has said India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said the present government's policy focuses on solutions for all citizens. He said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He said over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi noted that earlier efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He said the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. Mr. Modi said, such transformation is possible when the intent is clear and policies are well defined.
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years of continuous public service as head of government. On the occasion, Home Minister Amit Shah hailed the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public service and described it as a golden and historic day. Addressing the Vikasit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today, he stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished including the abrogation of Article 370, the elimination of Naxalism, and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. He mentioned that as part of this campaign, Torchlight

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, वर्ष 2026 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 से 12 अक्टूबर तक 6 अलग अलग क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। इनमें चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान शामिल है। अब तक चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। उन्हें प्रकाश की मदद से कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली खोजों और ऑप्टोजेनेटिक्स के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हेल्जेन को दिया गया है। उन्हें आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में उनके महत्वपूर्ण योगदान और अंतरिक्ष से आने वाले अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए ये सम्मान मिला है। वही रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेनरी कागन और केन्सो सोई को संयुक्त रूप से दिया गया। उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर रैखिक प्रभाव और स्व उत्प्रेरण की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कारों के पीछे की वैज्ञानिक खोज को सरल भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि इन वैज्ञानिकों ने क्या खोजा, उनकी खोज कैसे आगे बढ़ी और इससे विज्ञान के लिए नई संभावनाएं कैसे खुली। श्रोताओं, मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों को समझना वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। खास तौर पर ये जानना कि तंत्रिकाएं कोशिकाओं की गतिविधियों का हमारी याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार से क्या संबंध है। इसी दिशा में शोध ने वैज्ञानिकों को एक ऐसा तरीका दिया जिससे जीवित मस्तिष्क में खास तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को प्रकाश की मदद से नियंत्रित करना संभव हुआ। इस खोज के पीछे की वैज्ञानिक यात्रा और ऑप्टोजेनेटिक्स ने मस्तिष्क को समझने के हमारे तरीकों को किस तरह बदला, आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
2: पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल ने 2000 के दशक की शुरुआत में क्लेमाइडोमोनास नामक एकल कोशिका वाले हरे शैवाल पर काम करते हुए चैनल रोडोप्सिन नामक एक खास प्रकाश संवेदी प्रोटीन की खोज की थी। ये प्रोटीन कोशिका की सतह पर मौजूद होता है। जब इस पर नीली रोशनी पड़ती है तो इसके जरिए एक रास्ता खुल जाता है और आवेशित कण यानी आयन कोशिका के अंदर जाने लगते हैं। इससे कोशिका में विद्युत संकेत पैदा होता है। इस खोज की खास बात ये थी कि इस प्रोटीन को किसी दूसरी कोशिका में जाने पर वो कोशिका भी प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो सकती है। आगे चलकर इसी काम को कार्ल डाइसरोथ ने आगे बढ़ाया। उन्होंने चैनल रोडोप्सिन बनाने वाले जीन को चूहों की तंत्रिका कोशिकाओं में पहुंचाया। इसके बाद नीली रोशनी डालकर इन कोशिकाओं में

0: का संकेत पैदा करना संभव हुआ। 2005 में उन्होंने इस काम को प्रकाशित किया और इसके दो साल बाद उन्होंने जीवित चूहों के मस्तिष्क में भी इसी तरह की प्रकाश आधारित व्यवस्था का इस्तेमाल किया। प्रकाश की मदद से तंत्रिका संकेतों को नियंत्रित करने की इस तकनीक को ऑप्टोजेनेटिक्स कहा गया। सरल शब्दों में कहें तो इसमें वैज्ञानिक किसी खास तंत्रिका कोशिका में प्रकाश के प्रति संवेदनशील प्रोटीन बनाने की व्यवस्था करते हैं, फिर उस कोशिका पर नियंत्रित तरीके से प्रकाश डाला जाता है। प्रकाश पड़ने पर प्रोटीन काम करता है और कोशिका की विद्युत गतिविधि में बदलाव आता है। इस तरह वैज्ञानिक ये देख सकते हैं कि किसी खास समूह की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करने या उनकी गतिविधि को रोकने से व्यवहार या मस्तिष्क के किसी काम में क्या बदलाव आता है। ऑप्टोजेनेटिक्स ने मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच होने वाली गतिविधियों को समझने का एक नया रास्ता दिया है। इसके जरिए वैज्ञानिक याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार से जुड़ी तंत्रिका गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही तंत्रिका और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियों को भी समझने में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: श्रोताओं, अगर चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की कहानी हमें शरीर के भीतर मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं को समझने का नया तरीका देती है, तो भौतिकी का इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार हमें धरती से बहुत दूर ब्रह्मांड की ओर देखने का एक नया रास्ता देता है। इसके केंद्र में है न्यूट्रिनो, ऐसे सूक्ष्म कण जो लगातार हमारे आसपास से गुजरते हैं लेकिन जिन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल है। आइए अब समझते हैं कि फ्रांसिस हेल्जेन और आइस क्यूब वैद्यशाला ने इस चुनौती का सामना कैसे किया।
0: न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद सूक्ष्म कण हैं। ये लगातार हमारे शरीर और पूरी पृथ्वी से गुजरते रहते हैं, लेकिन दूसरे पदार्थों से बहुत कम संपर्क करने के कारण इनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। कभी कभार कोई न्यूट्रिनो परमाणु के केंद्र से टकराता है और इससे प्रकाश की बहुत हल्की चमक पैदा होती है। वैज्ञानिक इसी चमक से न्यूट्रिनो की पहचान करते हैं। खास चुनौती अंतरिक्ष से आने वाले अत्यधिक ऊर्जा के न्यूट्रिनो की है, जो बेहद दुर्लभ है, लेकिन यही न्यूट्रिनो ब्रह्मांड की उन शक्तिशाली घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं जिन्हें दूसरे तरीकों से समझना मुश्किल है। फ्रांसिस हेल्जेन ने 1988 में ही ये विचार सामने रखा था कि अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद बर्फ के भीतर बड़ी संख्या में प्रकाश सेंसर लगाए गए और इस तरह आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तैयार हुई। आइस क्यूब करीब 1 घन किलोमीटर बर्फ के क्षेत्र में फैली हुई एक विशाल वेधशाला है। इसका निर्माण 2011 में पूरा हुआ। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाना शुरू किया। कुछ वर्षों के भीतर ऐसे न्यूट्रिनो की खोज हुई जिनकी उत्पत्ति हमारे सौरमंडल से बहुत दूर की खगोली घटनाओं से जुड़ी थी। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एक नया रास्ता खुला। अब वैज्ञानिक केवल प्रकाश या दूसरे प्रकार के संकेतों के आधार पर ही अंतरिक्ष को नहीं देख रहे थे, बल्कि न्यूट्रिनो को भी ब्रह्मांड के संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। आइस क्यूब में लगातार दर्ज होने वाली न्यूट्रिनो की घटनाओं से वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में किन बेहद शक्तिशाली क्षेत्रों में ऐसे कण पैदा होते हैं और वहाँ कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी वैज्ञानिक दृष्टि और आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के विकास में निर्णायक योगदान देने के लिए फ्रांसिस हेल्जेन को वर्ष 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रोताओं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2026 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से हेनरी कागन और केंसो सोई को दिया गया है। उनके शोध को समझने के लिए सबसे पहले असममित कार्बनिक संश्लेषण को समझना जरूरी है। रसायन विज्ञान में कई अणु एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब जैसे होते हैं। इन दोनों रूपों के गुण अलग हो सकते हैं और दवाओं के निर्माण में सही रूप तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के अणुओं के किसी एक विशेष रूप को तैयार करने की प्रक्रिया को असममित कार्बनिक संश्लेषण कहा जाता है। हेनरी कागन के शोध ने दिखाया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की मात्रा और बनने वाले उत्पाद के बीच संबंध हमेशा सीधा नहीं होता। इस गैर रैखिक प्रभाव ने रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने और उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की नई राह खोली है। वहीं केंसो सोई ने ऐसी रासायनिक अभिक्रिया की खोज की जिसमें बनने वाला उत्पाद ही आगे उसी उत्पाद के निर्माण में मदद करता है। इसे स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया से अणुओं के किसी एक विशेष दर्पण रूप को बड़ी मात्रा में बनाना संभव हुआ। इन खोजों ने असममित रसायन विज्ञान को समझने और नियंत्रित करने की नई राह खोली और जीवन से जुड़े अणुओं के विशेष दर्पण रूप को समझने में भी मदद की। श्रोताओं, जब वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए तब इसमें 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया था, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में भी पुरस्कार की स्थापना की। आज इन 6 पुरस्कारों के लिए अलग अलग संस्थाएं विजेताओं का चयन करती हैं। भौतिकी, रसायन विज्ञान और आर्थिक विज्ञान के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, चिकित्सा के लिए करोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली, साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी और शांति के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पुरस्कार देती है। भारत की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में 4 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रकाश के परिकरण और रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला। वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। इसके बाद 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तारों की संरचना और उनके विकास से जुड़े महत्वपूर्ण भौतिक अध्ययन के लिए मिला। हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अनुवांशिक संकेतों और प्रोटीन निर्माण में उनकी भूमिका से जुड़े काम के लिए मिला। वे भारत में जन्मे थे और बाद में अमेरिकी नागरिक बने। वहीं वेंकट रमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार राइबोसोम की संरचना और उसके काम से जुड़े अध्ययन के लिए मिला। वे भी भारत में जन्मे थे और बाद में अमेरिका और ब्रिटिश नागरिक बने। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई।

0: भवन्ति।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूँ कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। माँ भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् अयं समयः भारताय बृहत्तमानां लक्ष्यानां निर्धारणाय अत्यन्तं अनुकूलः अस्ति। स्वकीयां समग्रामपि राजनैतिक यात्रां देशवासीनाम् अनन्य विश्वासाय समर्पयन् श्रीमोदी अवोचत् यत् वर्तमान शासनस्य नीतयः सर्वनागरिकाणां समस्यानां स्थायि समाधाने केन्द्रीकृताः सन्ति।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: भारत स्विट्जरलैंड देशयोः द्विपक्षीय वार्तायाः अंकीय प्रौद्योगिकी नवीन ऊर्जा आर्थिक विकास क्षेत्रेषु च गभीरा विचार विनिमय प्रक्रिया सुसंपन्ना। उभयोः देशयोः प्रतिनिधिभ्याम् अनुसंधान नवाचार क्षेत्रयोः सहयोगाय प्रलेखेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। अस्याः गोष्ठ्याः मुख्यमुद्देश्यं तावत् द्विपक्षीय व्यापारवर्धनं स्वच्छ प्रौद्योगिक्याः आदान प्रदानं उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिक सम्बन्धानां नूतन शिखराणां प्रति नयनं च अस्ति। जागतिक भू राजनीतिक अनिश्चिततानां मध्ये वर्धमानायाः मुद्रास्फीतेः नियन्त्रणाय भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन प्रायः 3.5 वर्षानन्तरम् अद्य मुख्यनीतिगत अनुपातः 25 आधाराङ्कैः संवर्धितः, येन सः 5.5% प्राप्तः। द्वैमासिक मौद्रिक नीतेः घोषणां कुर्वन् रिजर्व वित्त कोषस्य गवर्नर संजय मल्होत्रा अवोचत् यत् मौद्रिक नीति समित्या सर्वसम्मत्या नीतिगत रेपो अनुपातस्य 25 आधाराङ्कैः संवर्धनस्य निर्णयः गृहीतः। रिजर्व वित्तकोषेण वर्तमान वित्तवर्षाय वास्तविक सकल स्वदेशीयोत्पादस्य वृद्ध्यनुपातः 7.1% भविष्यतीति अनुमानितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: दिल्ली आरक्षिदलेन कांग्रेस नेतृभ्यां राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्राभ्यां विरुद्धं अनधिकार प्रवेशारोपे प्रथम सूचना प्रतिवेदनं पंजीकृतम्। अभियोगः एषः ह्यः विहिते विरोध प्रदर्शने नवदेहल्यां स्थिते आकाशवाणी भवने अनाधिकृत प्रवेशाय कृतः। इदम् अभियोगपत्रं संसद मार्ग आरक्षिस्थाने सम्बद्ध धारासु पंजीकृत्य अन्वेषणं प्रारब्धम्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् ह्यः विपक्षीय इंडिया गठबंधनस्य अनेकैः संसत्सदस्यैः संसदः मकरद्वारात् निर्वाचनायोगस्य मुख्यालयं यावत् प्रतिषेधयात्रायाः आह्वानं कृतमासीत्। कांग्रेस नेतुः राहुल गांधिनः नेतृत्वे प्रचलन्ति इयं यात्रा आकाशवाणी भवनस्य निकटे आरक्षिदलेन स्थगिता। तदनन्तरं कांग्रेस नेतारः आकाशवाणी भवने प्रविश्य तत्र उपवेशन प्रतिषेधनं कृतवन्तः। फिजी देशे आयोजितायां फ्री कॉप 31 इति पूर्व सम्मेलनोपवेशने भारतेन सुदृढ़ जलवायु कार्याचरणाय

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन जी। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। अर्जुन जी,
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,603। आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 5.5%, चेंजेस पॉलिसी स्टांस टू कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF कॉल्स ऑन कंट्रीज टू टेक फास्टर एक्शन टू रिड्यूस डेट एंड टैकल ग्रोइंग इनइक्वालिटी।
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज गिरावट, सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,603 पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़त के साथ 5.5% किया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण में कमी लाने तथा असमानता से निपटने के लिए देशों से त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया।

0: And before we take on the main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में दो दिन से जारी तेजी आज थम गई। सेंसेक्स 429 अंक यानी 0.6% गिरकर 72,639 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 173 अंक यानी करीब 0.8% नीचे आकर 22,603 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.6% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक आज 0.3% चढ़ गया।
0: Benchmark domestic equity indices snapped their two-day rising streak today. The Sensex fell 429 points, 0.6% to close at 72,639. Nifty dropped 173 points, or nearly 0.8%, to settle at 22,603. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index lost over 0.6%, while the small-cap 100 index advanced 0.3%.
1: सेंसेक्स में 30 कंपनियों में से 26 के शेयरों में गिरावट रही। टाइटन करीब 3.5%, BEL 2.2% और एशियन पेंट्स 2.1% नीचे रहे। वहीं दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक 2.2%, भारती एयरटेल 1.3% से अधिक और ICICI बैंक 1.1% से ज्यादा चढ़े।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 24 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स एज डाउनवर्ड अमंग द टॉप लैगर्ड्स। मेटल शेयर नियरली 2.5%, कंज्यूमर durables fell over 1.8% and realty dropped more than 1.7%. In contrast, PSU banks gained 1.2%, housing finance as well as telecommunications

0: jumped over 0.9% and hospitals added more than 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,360 companies declined. 2013 companies advanced and 241 companies remained unchanged.
1: विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36 पैसे गिरकर 96.78 रुपए पर बंद हुआ. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: अब पुनीत, मुख्य सवाल पर आते हैं. अगर हम सितंबर की बात करें तो लगभग 6% की गिरावट हमने देखी और अक्टूबर में भी वो सिलसिला हमें थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और सबसे ज्यादा हमने देखी गिरावट आईटी के सेक्टर्स में. ओवरऑल आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या उम्मीद लगती है कि हम इससे उबर पाएंगे या अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा?
2: तो निखिल, जैसे आपने कहा कि सितंबर का जो महीना था वो काफी निराशाजनक था स्टॉक मार्केट के लिए. हमने देखा 6% हेडलाइन इंडिसेस में गिरावट आई थी. कुछ हमने वहां पर रिबाउंड देखा था जो मुझे लगता है वो एक डेड कैट रिबाउंड था और आज दोबारा से बाजारों में गिरावट रही. मुख्य कारण तो जो इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंताएं हैं, जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है दुनिया में और हम देख रहे हैं कि उससे कमजोरी आ रही है अर्थव्यवस्था में, तो उसको लेकर आप देखें कि आज शेयर्स नीचे थे. आज भारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी थी, तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे रियल्टी और बैंकिंग, इस तरह क्षेत्र में आप देखेंगे मेटल क्षेत्र में वहां पर गिरावट ज्यादा थी आज. और कुछ क्षेत्र सिलेक्टिवली हमने देखा वहां पर बाइंग थी. जैसा दिखा है आपने कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में उतनी गिरावट नहीं है, वहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग है, वहां पर फिर भी थोड़ा मजबूत ट्रेंड है, लेकिन लार्ज कैप्स जो है वहां पर गिरावट ज्यादा दिख रही है.
0: Puneet, PSU banks gained by 1.2%. We are also in the midst of the second quarterly earnings of companies. How do you see that reporting fundamentals of companies in terms of their profitability and revenue matching up to the sector valuation of companies?
2: So, Arjun, interestingly, if we look at the numbers behind the economy in terms of GDP growth, in terms of credit disbursals, we find that the economy is still doing very well. So my expectation is that when we see these second quarter numbers from companies, they would still be very good. And I'm not expecting any major decline in corporate earnings in the coming quarter. However, of course, these are concerns about inflation, about purchasing power of consumers, about certain segments of society where demand may be affected. So those concerns are pulling down the markets. But as far as numbers are concerned, my assessment is that the numbers that the companies will announce will still be very good, and largely based on the premise that we find the industrial production numbers to be quite robust, car sales numbers are good, and so broad economic numbers surprisingly are very good even now. It is just that the sentiment around these numbers is not that robust.
0: Puneet, my question is specific to banking. We know that the repo rate has been hiked by 25 basis points. It's 5.5% now. That was the announcement made by the Monetary Policy Committee at 10 in the morning today. How do you see banks being affected by this? Their net interest income in the previous quarter was quite high. Compliance has gone up, so NPAs have also come down substantially. How do you see banking as a sector responding to how the central bank has ruled in terms of the repo rate?
2: So, whenever interest rates go up, they affect banks in many ways. In terms of net interest income, because usually banks, when they raise rates, the deposit rates don't go up that rapidly, but the lending rates go up very fast. So clearly, in the short term, the net interest income for banks tends to go up when interest rates are moving higher. And that is what we saw today. We saw banking stocks move up a little bit. But of course, banks' investment portfolio in terms of bonds, it gets affected because bond prices fall whenever interest rates rise. So I think we're going to have a mixed bag as well as banks are concerned. But overall, I think for banking, the good news is that the credit growth has gone up. So my guess is that while there are challenges about interest rates, but the headline numbers in terms of credit growth, in terms of net interest income, that will still remain quite positive for banking sector.
1: Puneet, हम ये देख रहे हैं consumer durables में भी हमें लगातार negative रुख देखने को मिला है और दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका रुख इन सारी चीजों पर ज्यादा रहता है, लेकिन उनका रुख भी हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है. इसके लिए क्या कहेंगे?

0: hike or a pause, depending on the evolving condition and the outlook.
1: Puneet, we can see that the repo rate has gone up by 25 basis points. You made a mention of that in the stock market story as well, and what its impact is on bank profitability. But from the macroeconomic standpoint, we're also seeing that the real GDP growth for India has been up by 40 basis points to 7.1%, which means GDP is taking into account inflationary pressures as well. So the GDP forecast is actually fairly high, not only for India, if you compare it to its past, but compared to other countries as well.
2: Absolutely. I think, and that is remarkable, because whenever you see inflation go higher, there is definitely a direct impact on growth expectations. But if you look at the RBI statement, they said that they are looking at inflation going higher. They have increased the forecast for inflation, but they have actually increased the forecast for GDP growth also to 7.1%. So clearly, RBI does not expect higher interest rates or higher inflation to impact consumption or economic growth, which is very positive. Having said that, I think RBI's main message today in the policy was that they have moved. They are not concerned about economic growth. They are now prioritizing managing inflation as a policy tool. So they are saying that, okay, we are comfortable with the economic growth. We know that this is going to stay strong, but we want to focus right now on managing inflation and inflation expectations, and that is, I think, going to be the priority going forward. So the term they have used, calibrated tightening, I think that is the most significant message in RBI's policy today. Going forward, we'll definitely see slightly tight monetary policy, not very tight. They're not very aggressive about it, but they're going to keep the stance as slightly and moderately tightening, so that inflation is first brought under control, and then I think they will shift the focus to economic growth.
3: भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को अधिक सुविधा देने और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागियों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से आज कई विकासात्मक और नियामकीय उपायों की घोषणा की है। बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे के अंतर्गत एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स के बीच आपसी सहभागिता शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्राहक अपनी पसंद के किसी भी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से अलग अलग वित्तीय सूचना प्रदाताओं के बीच अपनी वित्तीय जानकारी को देख सकेंगे और साझा कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने सेबी द्वारा विनियमित डिपॉजिटरीज को भी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से अपने एकीकृत खाता विवरण में बैंक जमा खातों की जानकारी शामिल करने की सुविधा दी है। इससे डीमैट खाता धारक अपने डीमैट निवेश होल्डिंग्स और बैंक जमा की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेंगे। पुनीत जी, आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में बताएं कि एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स के बीच ये जो आपसी सहभागिता शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ये है क्या और इससे लोगों को क्या क्या फायदा होगा?
2: देखिए, निखिल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अभी हम ये देखते हैं कि जब लोग एनबीएफसी से, क्योंकि नॉर्मली एनबीएफसी से जो उपभोक्ता कंज्यूमर जो लोन लेते हैं वो छोटे लोन होते हैं, करीब 5,000 से लेकर 50,000 तक के लोन होते हैं सामान खरीदने के लिए, और एक ही उपभोक्ता, एक ही कंज्यूमर कई सारी एनबीएफसी से, 3, 4, 5 एनबीएफसी से वो लोन लेते हैं
1: जी।
2: और एक तो लोन मैनेजमेंट कि कितना लोन है, कितना उसका रीपेमेंट्स है, वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से बैंक्स भी लोन देने में या एनबीएफसी लोन देने में थोड़े हिचकिचाते हैं, और साथ ही उनका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। तो आरबीआई ने ये सुविधा दी है कि अब वो जो एनबीएफसी हैं जो एक उपभोक्ता को लोन दे रही है, वो आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है। उससे जो अच्छे उपभोक्ता है, जो अपना रीपेमेंट टाइम पर करते हैं, कि क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उनको बेटर रेट मिल सकेंगे, आराम से लोन भी मिल सकेंगे उनको, और उनका हम ट्रैक भी बेटर कर सकेंगे। दूसरा, आपने बताया कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास अभी हम देखते हैं तो हम जितने हमारे शेयर अकाउंट होते हैं उनका इकट्ठा हमें एक अकाउंट मिलता है, जिसको हम CAS कहते हैं, कॉम्पोजिट अकाउंट स्टेटमेंट कहलाती है। उसमें अब जो बैंक्स के जो FDs हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी वो इंक्लूड करेंगे, तो एक ही जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन सभी इन्वेस्टर्स को मिल पाएगी, अपने बैंक डिपॉजिट के लिए भी और अपने जो डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं जिनमें शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल पाएगी। मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और बेहतर होगा सभी कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स के लिए।
1: In more news, IMF Managing Director Kristalina Georgieva has called on countries both rich and poor to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. Speaking in Singapore ahead of the IMF

0: IMF World Bank meetings in Bangkok next week. She said governments have the tools to address economic challenges but need to take necessary policy decisions without further delay.
1: Global public debt is near its highest levels since after the Second World War and is on track to soon exceed 100% of GDP. In other words, to cover our debt, we have to put everything we have produced in 1 year in that pile.
0: Georgieva said also highlighted risks from the rapid expansion of artificial intelligence, including heavy investment in data centers, rising energy demand, and potential financial shocks if AI-related earnings fall short of expectations. She said AI is becoming a major driver of countries' economic fortunes, but its benefits are not reaching all countries equally. Puneet, very briefly, even though the earlier story is about managing debt for the customer regarding NBFC aggregators, now you have the IMF director saying that nations rich and poor need to tackle growing inequality and reduce debt, take necessary policy decisions, use the tools that they have in hand, and more importantly, the impact of AI.
2: Absolutely. In fact, what we were saying about small consumers earlier applies equally to large nations also. And unfortunately, find that large nations have been raising a lot of debt lately. Look at USA, the aggregate debt is more than $40 trillion now, the largest in the world. So clearly, and it is going to become a problem because interest rates will go up, inflation, it contributes to inflation, it contributes to a fall in consumption. So IMF MD is basically warning countries against raising more debt because higher debt typically affects the poorer sections of the society because for them it becomes more difficult to sustain their living. And countries have less capital, less money to spend for welfare schemes. So IMF, I think, is giving the right warning to countries not to raise debt beyond a point, trying to manage their debt obligations, debt servicing, so that they can divert that money to welfare schemes. And I think it's appropriate for countries to do that.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत अपनी जरूरत के मोबाइल फोन आयात करता था, जबकि आज भारत में बने मोबाइल फोन वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि को भी भारत में आए बदलाव का एक बड़ा उदाहरण बताया।
4: आजादी के बाद से लेकर अब तक खेती की विकास दर अगर किसी दशक में निरंतर सबसे अधिक रही, वो साल 2015 से 2025 तक का दशक इसने खेती की ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
0: In Monu, the second India-European Free Trade Association Prosperity Summit was held in New Delhi today. President of Switzerland, Guy Parmelin, who is currently on a 3-day visit to India, was present in the summit. India and the EFTA, comprising Switzerland, Iceland, Liechtenstein and Norway, mark 1 year since implementation of the Trade and Economic Partnership Agreement. Talking to reporters after attending the summit, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the European countries today consider India as a major hub for innovation and manufacturing.
5: एफ्टा के अग्रीमेंट से जिस तरह से करीब करीब अब तक 1,60,000 लोगों को रोजगार इसमें मिल चुका है, नई कंपनीज जो भारत आई है अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बेस डिजाइन बेस रिसर्च बेस भारत को बना रही है और आने वाले समय में इससे करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास टोटल नया रोजगार पैदा होगा, युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी और भारत के एमएसएमईज के साथ जिस तरह से स्विट्जरलैंड के नॉर्वे के लिक्टेनस्टीन के एमएसएमईज जुड़ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की नई जर्नी बनेगा।
3: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI भुगतान पर कोई MDR नहीं लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कहा कि ये एक टिकाऊ वाणिज्यिक ढांचा स्थापित करने से नए फिनटेक स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल भुगतान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। NPCI ने कहा।

0: कि जब भुगतान प्रसंस्करण शून्य एमडीआर व्यवस्था के तहत संचालित होता है तो केवल पर्याप्त पूंजी वाले बड़े तकनीकी समूह ही लंबे समय तक होने वाले परिचालन घाटे को वहन कर सकते हैं। एनपीसीआई के अनुसार एक पूर्वानुमानित वाणिज्यिक राजस्व मॉडल प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इससे छोटे और नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धा करने, विशेष भुगतान सॉफ्टवेयर विकसित करने और वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलेगी। एनपीसीआई ने यह भी कहा कि बढ़ती बाजार प्रतिस्पर्धा से अंततः उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, अधिक विश्वसनीय भुगतान ऐप्स और अधिक विकल्प मिलेंगे।
1: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. The meeting, to be chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the goods and services tax system.
0: एशियाई और यूरोपीय बाजारों में आज गिरावट का रुख देखने को मिला। एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक करीब 2% गिर गया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। आखिरी खबर मिलने तक जर्मनी का डेक्स सूचकांक 1.4% से ज्यादा नीचे होकर कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का फुटसी 100 सूचकांक 0.7% से अधिक की गिरावट में था।
1: Moving on to the U.S. stock market, U.S. stock markets ended higher yesterday as crude prices steadied and U.S. Treasury yields eased. Among the major stock market indices, S&P 500 rose 0.6% to an all-time high of 7,818. The Nasdaq Composite gained nearly 0.5% to close at a record high of 27,599. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added 0.5% to 51,521. On the economic front, the U.S. trade deficit grew by 13.7% in August compared with July this year. Exports rose by 1.4% to $315.2 billion, while imports increased by 4.3% to $420.8 billion over the same period, according to a report by the Commerce Department. Puneet, valuations in the U.S. stock markets have hit an all-time high. Do you see crude prices steadying? Do you see the Trump administration not attacking the Middle East, and more importantly, manufacturing? If you look at the economic side of the U.S., their exports have gone up, but so have imports. Is a tariff policy going to be imposed?
2: So, interestingly, Arjun, there's a spate of economic news coming out of U.S. and Europe, primarily U.S., and we find that despite so many challenges, inflation being higher, crude prices being there, and war being there, we find that economic numbers are still very good. And I think if you look at the technology companies, you just mentioned that S&P 500 touched record high, Nasdaq touched a record high. So clearly the technology sector, which is driving markets in USA, that seems to be still doing very well. And my guess is that US, despite all the challenges, the economy has done surprisingly well. And going forward, I don't see any major changes in tariff policy now. It's mostly settled down. There may be some tinkering, but I don't think we are going to see any dramatic changes to the U.S. trade policy or tariff policy going forward.
1: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices rose today amid continued supply risks. Brent crude was trading 1.2% up at $101.78 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.7% higher at $90.11 per barrel at the time of writing this report.
0: पुनीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और वैश्विक तेल सप्लाई पर भी उसका असर पड़ रहा है, क्या लगता है कि इसकी कीमतों में और किस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं आगे चल करके?
2: लेकिन देखिए, हमें लग रहा है कि क्रूड के जो प्राइसेस है वो अब जो स्टेबल हो गए हैं, $100 जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, $100 पर बैरल, ये उसके आसपास अब काफी स्टेबल चल रहा है और मुझे लगता है यही एक ट्रेंड रहेगा, क्योंकि सप्लाईज फ्रॉम हॉर्मुज स्ट्रेट वो भी थोड़ी रिस्टोर हुई है, थोड़ी बढ़ी है, तो मुझे लगता है ये प्राइसेस अब यहीं पे स्टेबल होने चाहिए लॉन्ग टर्म में।
0: जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 0.5% गिरकर लगभग 1,47,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। वहीं चांदी की कीमत में 0.9% की गिरावट रही और ये 2,20,866 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। पुनीत जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपके कमेंट्स।
2: देखिए जैसे जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और उसका नेगेटिव असर सीधा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में

0: तो डॉलर इंडेक्स करीब 102 हो गया है, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस नीचे हैं और मुझे लगता है अभी गोल्ड में थोड़ी कमजोरी रहेगी, क्योंकि ये बस नहीं होने वाला ट्रेंड इंटरेस्ट रेट्स का या डॉलर इंडेक्स का, तो ये यही कमजोरी रहेगी।
1: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीखे।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 400 points. Nifty settles at 22,603. RBI hikes repo rate by 25 basis points to 5.5%. Changes policy stance to calibrated tightening. And International Monetary Fund calls on countries to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले वार्ता की। ये संगठन मोबाइल संचालकों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सवेरे श्री विनायक मंदिर में देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
5: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पैदा न होने पर अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देश में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
2: थैंक यू।
1: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू है?
2: तो देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार की आप बात कर रही है, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स $1.5 trillion, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। टुडे देयर 3 मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जो बंद हैं, बाब अल मंडब, हॉर्मुज, ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से, लगभग उस समय से, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं, अभी भी PMO की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है। इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द CDS DMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है, उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप

0: सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
1: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल शब्दों में बताएं।
0: थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि अभी देखिए द सर्विसेज एग्जिस्ट इन साइलोस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो देर आर आर्मी कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर नेवल कमांडर्स फॉर ईच एरिया, दे आर एयरफोर्स कमांडर्स फॉर ईच एरिया। थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप दो या तीन थिएटर्स बनाए, एक थिएटर विच लुक्स एट द वेस्टर्न होराइजंस, सो पश्चिमी तट की ओर, एक एट द ईस्टर्न होराइजंस या चाइना, वेस्टर्न होराइजंस पाकिस्तान एंड बियॉन्ड, और एक मैरिटाइम थिएटर। और दो तीन जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर, बट वंस यू से वेस्टर्न होराइजंस, अब उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इनटू दिस वन थिएटर कमांडर। अब देखिए सीडीएस इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो इट्स नॉट आर्मी टेकिंग इट्स प्लान, नेवी टेकिंग इट्स प्लान, इट इज इंटीग्रेटेड प्लान विच द सीडीएस टेक्स। सिंदूर में देखिए क्या हुआ। So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the integrated plan to the prime minister. और इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है, पृष्ठभूमि है। So that is optimizing all available resources for best combat outcomes.
1: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उनका जो एक whole of government approach है, वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम डिफेंस फोर्सेज में देख रहे हैं।
0: आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए क्यों, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द सीडीएस, यू हैव अपॉइंटेड अ सीडीएस, बट अगर आप इसकी तुलना करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अ परमानेंट चेयरमैन इन 1949, उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स। तो आपने गल्फ वॉर वन में सुना होगा, वी हैड नेटवर्क सेंट्रिसिटी। गल्फ वॉर टू में वी मूव टू इंटीग्रेशन, वेयर अ टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16। आप देखें उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब। सो दोज आर द स्टेप्स। टुडे वी आर इन व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेटेड जॉइंटनेस, देन यू हैव टू गो टू इंटीग्रेशन, देन क्रॉस पॉलिनेशन, देन सिविल मिलिट्री फ्यूजन विच इज होल ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ। एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, इट हैज पिक्ड अप एन अमेरिकन कॉल्ड ओमार यागी, नोबेल लॉरेट इन केमिस्ट्री। किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI डिपार्टमेंट है फॉर एडवांस मटेरियल्स, जिसमें PLA का 30% रिप्रेजेंटेशन। तो एकेडमिया, PLA एंड नोबेल लॉरेट काइंड ऑफ टैलेंट, दैट इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन। तो ये अभी एक लंबा सफर है। CDS पहला पड़ाव था, इंटीग्रेशन थिएटराइजेशन दूसरा पड़ाव होगा, एंड दैट इज द वे वी विल ग्रो इफ वी हैव टू बिकम अ पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। बट जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट जर्नी। और देखिए इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ढांचा था
1: जी,
0: उसमें एक ये महत्वपूर्ण फेरबदल। देखिए पहले क्या होता था कि अ सर्विस चीफ वुड गो टू द रक्षा मंत्री थ्रू द डिफेंस सेक्रेटरी, सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट द सर्व सोल्जर कुड गेट टू हिम ओनली थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक एयर। नाउ इट इज इक्वल्स, डिफेंस सेक्रेटरी, CDS, बोथ, सो दैट द रक्षा मंत्री गेट्स द बेस्ट एडवाइस। इसका दैट इज द लॉजिक। और जैसे मैंने कहा, इसके जो अब हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन की ओर अग्रसर है
1: जी,
0: और इसके मील पत्थर क्या होंगे, प्रतिभा, टैलेंट, मैंने उसका एक उदाहरण दिया आपका, इनोवेशन, नवाचार। टुडे यू कांट हैव आउटडेटेड प्रोसेसेस। देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, ड्रोन्स, AI, ये सब हकीकतें हैं। एंड अलॉन्ग विद इनोवेशन, डीरेगुलेशन। जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, ही सेड प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप के सिलसिले में, ही वाज टेलिंग अस दैट रिलीज द फोर्सेस ऑफ इनोवेशन, एनर्जी एंड एंटरप्राइज फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर, नियमों का जाल। सो CDS DMA इज अ सिंबल, पर इसके पीछे गहरा सोच है।
1: सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपको लगता है कि शायद उनकी दूरदर्शी सोच थी, आप कह रहे हैं कि 2014 में ही इस तरह का जो सोच है वो सामने आ गई थी, तो इन टाइम इट वाज टेकन जो डिसीजन।
0: इट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, इट इज बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री, सो देयर आर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हियर। दूसरा

0: जो केंद्र बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस। देखिए, हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs. अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, the character of war, उसमें आमूल परिवर्तन हुआ है। So today if you see Ukraine वगैरह में polymaths जो है उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ, इट इज सच अ पावरफुल मिलिट्री, देर इज नो मिलिट्री विच कैन प्रोजेक्ट पावर टू ओशंस अवे। बट अभी एक रिपोर्ट निकली है वॉशिंगटन से कि वाई द US हैज नॉट डिलीवर्ड इन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी ने उसका काम इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज इट वॉज स्लो टू लर्न द लेसन्स ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन से जो सीख थी ड्रोन्स, AI, वो नहीं कर पाए। तो देर US नेवी, उसने ईरानियन नेवी के 160 ships को ध्वस्त कर दिया, बट इट वॉज नॉट स्मॉल इनफ, एजाइल इनफ, ऑटोनमस इनफ टू ऑपरेट इन द स्ट्रेट।
1: तो आप जो चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
0: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है, यू नीड द इनोवेशन एजिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स। अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन प्रोसेस प्रोसीजर, HAL इज प्रॉमिसिंग यू AMCA ओनली बाय 2030। अंग्रेजी में एक कहावत है दैट टुडे क्या हो रहा है, दैट मल्टी बिलियन डॉलर कैपेसिटीज विच आर डिलीवर्ड इन 10 years, they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks. Ukraine mein ye ho raha. So this is the reason why we have to move towards private sector and startups. Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke saath, to meri wo jo kya kehte hain professional career, vyavsayik jo zindagi hai, uska ant ho jata. We are not supposed to interact. Aaj aap dekhiye, jo hamare navsena adhyaksh hain Admiral Swaminathan, वो सार्वजनिक मंच से ही वॉज टेलिंग द CEO स्टार्टअप्स यंगस्टर कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम प्रोग्रेस। इतने मैं आपको गिना दूं, देखिए सर्वम, AI, गैलेक्साई, मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी, पनियन टर्बोफैन इंजन, थर्ड आई टेक, न्यू स्पेस, दीज आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स।
1: रिलायंस को जो बढ़ावा मिला है,
0: हवा मिला है
1: जी
0: स्टार्टअप से, देखिए जी एक बहुत ही जिसे कहते हैं इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेप। रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द फिफ्थ जनरेशन फाइटर बट द सिक्स्थ जनरेशन फाइटर, तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते हैं,
0: रियली जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड्स, उसमें 42 ships का निर्माण हो रहा है, वॉरशिप्स, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज चाइना हैज गॉट 500 ships। बट ये दो तीन चीजें जो हैं, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस जिसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है, स्टार्टअप्स का प्रवेश हुआ। और एक आखिरी चीज मैं बोल दूं,
1: जी बिल्कुल,
0: हमारी जो सामरिक सोच है, जो नीति है, उसमें भी देखिए नए स्तंभ। आप देखें ये जो आतंक पर प्रहार हुआ है, और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है, देखिए आपकी जो सामरिक नीति है अगर उसमें आप आतंक उसका केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे, एंड इट इज जस्ट नॉट अ फ्रेज, वी हैव डन इट। हमने कैसे किया, चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा। आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की, देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया, जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी कि साहब मत करिए। फिर आपने किया पुलवामा, इस बार हमने कहा POK नहीं, POK बाहर बालाकोट में आपको जाके मारा, और फिर भी जब आप नहीं माने और आपने पहलगाम किया तो हमने सिंदूर किया। आप 10 मई 2025 का स्मरण करें, पाकिस्तान डिफेंसेस ले बैटर्ड, इट्स सॉवरेनिटी ले शैटर्ड। हमने तो ये जो टारगेट्स है ना 40-50 टारगेट, हमने तो सिर्फ मैप्स पे मारे थे, पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी, रायविंड, नूर खान 1.5 किलोमीटर था GHQ से। पाकिस्तान नोज इट दैट दे वर बैटर्ड एंड शैटर्ड। Look at the message that we have given.
1: So, Mr. Nathaniel, coming to you, आप क्या कहेंगे, ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धियां रही हैं, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी बताया डिफेंस सेक्टर में, अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इसी वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए, और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया?
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद CRPF ने काफ़ी जोरों से वहाँ काम किया बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह के आसपास था ज़्यादातर, वहाँ पे जब तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ।

0: दूसरे इलाकों में। तो वहां जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया वहां पे, खासकर अबुजमांड एरिया में। वहां पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था, और वापसी में जब आते थे तो काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते थे, और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते बड़े तादाद में, 200-300 के तादाद में 70-80 आदमी पे अटैक करे। उससे क्या था कि काफी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह खत्म करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें ये खत्म करना ही है। और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और सीएपीएफ के, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएएसएफ, आईटीबीपी, ये सब उसमें आते हैं, एसएसबी भी है, तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने खत्म करना। उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं। जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे, और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि इट इज मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रेच बना दिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आने शुरू हो गए और उनको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड्स बिछाने लग गए, एंड रोड्स के बिछाने की वजह से ट्रूप्स भी अंदर जाने लगे, सीआरपीएफ के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाने शुरू हुए, जिसको हम एफओबी बोलते हैं। उन एफओबी में जब कंपनियां आके बैठ गई, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं, और उनके पास कोई 15-20 गांव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहां जम गए सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस भी, तो इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं थी, हम ज्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस था नक्सलाइट्स को ही पता है,
1: जब सड़कें बनी तो आपका वहां पर पहुंच बनी
0: बिल्कुल जी, जी। तो फोर्सेस जब वहां जम गए तो लोगों के अंदर जो पहले भय था नक्सलाइट से, तो उस भय को दूर कर दिया गया, और वो खुद आके बताने लग गए कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है
1: जी।
0: और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लग गए, ऑपरेशन काफी जोरों से किया गया, और उस वजह से उन लोगों के काफी कैजुअल्टीज होने लग गए, और इससे ये भी हुआ कि कैजुअल्टीज जो फोर्सेस के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारेगुटा हिल्स, जो कि काफी 15-20 किलोमीटर तक चल रहा था, और उसमें सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय खुद भी थे, और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए जंगलों के अंदर, काफी कठिन इलाका था, और कोबरा बटालियंस भी वहां पे पहुंचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार रखे गए ताकि अगर कुछ कैजुअल्टी होता तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह ही पहुंचाया जा रहा था। उस कारेगुटा ऑपरेशन ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारेगुटा हिल्स को खाली कर दिया, और कई तो आंध्रा की तरफ भाग गए। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है, तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहां पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन जोरों से शुरू किया, और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है
1: जी,
0: उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ, और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसवराजू के साथ, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया, तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया था। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें, सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा,
1: रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
0: तो

0: टीवी है, जो अच्छे ट्रेंड थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी, उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थन और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG है। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे?
0: अब बसत भी जाने लगे, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुंच रहे हैं वहाँ पे, और CRPF एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, इधर कोई तकलीफ है CRPF पहुंच जाएंगे, वहां से खबर पहुंच जाएगी DM तक, कहीं पे भी पहुंचाना खबर। तो अब वो इंटरेक्शन, क्योंकि CRPF पहुंच गए हैं, पब्लिक का इंटरेक्शन CRPF से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है।
1: जी,
0: पहले जब किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं IG झारखंड था तो मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली, और कई ऑपरेशन, एक सरंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहां पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुंचा रहे थे, ताकि, और उस सरंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया, नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहां जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती। लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, एक दो कैजुअल्टीज हुए लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए, ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ जाए नाइट विजन डिवाइसेस। तो इन चीजों से हम काफी फायदा, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन यह काफी तादाद में जब वहां यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: सो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहाँ तैनात होते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या MSMEs या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए, जैसे मैंने आपको बताया HAL की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट HAL स्मार्टन्स अप, सो दैट RPSUs आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन कंपेटिटर, ही इज मोर बॉदर अबाउट द चाइनीज कंपेटिटर। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कंपीट करने की काबिलियत रखती हैं। सो वी नीड डोमेस्टिक कंपटीशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देखें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज AI इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वार्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन, ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वार्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाई अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं, पामन लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR, बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड, तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग

0: फ्यूचर वी नीड मोर रिफॉर्म। तो देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स विच इज लिंक्ड टू प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एंड ऑल। मैं आपको बताऊं कैसे, हम जब बाहर जाते थे 2005-6 में तो लोग कहते थे टू से वी आर द थर्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं। हम कहते साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट। टुडे इफ द लास्ट फिगर्स वर आर राइट, इन फैक्ट आई वाज हियरिंग द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 38,000 crores। अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, दिस इज अ 5,500% की उछाल है।
1: और 80 देशों में जा रहा है,
0: 80 देशों में, जैसे आपने कहा आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। 145 फर्म्स हैं एमएसएमईज वगैरह सब मिला के विच आर डीलिंग विद दिस। आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग। और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो अ जियोपॉलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है, इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एनसर्टेनमेंट। हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे के चीन को घेरा है। सो एक्सपोर्ट्स आर अ जियोपॉलिटिकल लीवर, दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे मेक सो मच सेंस, एंड आई थिंक दिस इज वन एरिया वेयर वी हैव, इन फैक्ट we are moving from being importers from the world to exporters to the world.
1: In fact, जो positive indigenization lists आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक आइटम्स हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक ईयर मार्क करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो अब दिखाई भी दे रहा है एक्सपोर्ट।
0: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था। देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊं हकीकतन हो क्या रहा। मान लीजिए टैंक है भाई, हम तो अगर नवाचार नहीं जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे, हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग, बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे, एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था। तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य यह था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे, और एमएसएमईज बना सकते हैं। आजकल तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं। तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे, पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा, बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो हमने बना लिए। सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने डीपीआई नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी, तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नो नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट। तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इम्पोर्ट के खर्च था वो कम हुआ, एंड नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर, वी विल परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट।
2: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़
0: जाते हैं। देखिए बुनियादी सवाल क्या था आईजी साहब, ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेज डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेज डेवलपमेंट, रॉन्ग, इट इज सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, साथ चलना है। So, deep, जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी। वी हैव टर्न्ड इट अराउंड, वी ग्रो अप इन साइलोज, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, पीएसयूज प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया अपनी दुनिया में, अरे भाई एकेडमिया में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आरएनडी नहीं होगी, प्योर साइंसेज नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती, एवरीबडी हैज टू इंटीग्रेट। सो देयर इज अ लार्जर कंसेप्चुअल चेंज ऑल्सो विच इज ड्राइविंग ऑल दीज, I would say mega reforms.
1: So, ये जो conceptual change की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और reflection FTI, जो defence में FTI को liberalize किया गया है 74% तक via automatic route and 100% via government. तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में कि इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक important reform है।
0: बिल्कुल, तो आप एक छोटी सी कहानी सुने। I was growing up 1980s, आपको भी याद होगा, inset space is an exquisite thing, few countries to it. Countries, I'm emphasizing. So, USSR, USA, India was also. But हम whispers में बात करें। हमारे सिलसिले में क्या होता है? That national security, only government can do it. Only DRDO because it is exalted, lofty. और उस दायरे के अंदर क्या हुआ कि in this PSU complex, a lot of, shall I say, slots slipped in, inefficiencies. और उसको protect करने के लिए हमने कहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में ही नहीं,

0: वैश्विक स्तर पे प्राइवेट सेक्टर प्रूव दैट इट हैड एफिशिएंसीज ऑफ इट्स ओन. तो एफडीआई में भी यही था पहले, और इसको हमने पहले कैसे कहा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता. हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए. सो उस तरह से ये जो एफडीआई धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, पीएसयू स्ट्रक्चर में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. देखिए हमको पीएसयूज या से कोई गिला नहीं है, ऑल दैट वी आर सेइंग आप पीएसयू हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप्स हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड. एंड इफ यू लुक एट द फ्यूचर, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी. यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन. सो आई एम सेइंग कि इंडिया में भी HAL, BEL, दे आर वेरी गुड कंपनीज, बट इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा. दे हैव टू बिकम AI कंपनीज
1: बिकॉज़ द डिलीवरी इज डिजिटल. स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो आया है भारत में, और वी आर द थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए उस दिशा में.
0: बिल्कुल, मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स बिकॉज़ दे आर एजाइल, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक. यू नो, ये जो चीजें आजकल, जैसे मैंने बताया, मेरे को तो ये लगता है, ये सब पता नहीं क्या कहेंगे, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ है. एंड मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज लाइक द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है, सिविल स्पेस में भी है. आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया. मैंने आपको नाम गिनाए थे, दीज आर जस्ट IT इंजीनियर्स, किसी ने गैराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, बट दे हैव डिलीवर्ड. एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द डिफेंस स्पेस, इन द सिविल स्पेस तो और भी हुआ है. सो I'll go back toward the Prime Minister. I think it was very important. Release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शियम बना के रखे थे, that was throttling national security. उसको आजादी मिली है अभी.
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में अगर हम देखें पिछले 12 सालों में. मिस्टर थेटेल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए.
2: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री, राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट. और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन खत्म ही हो चुका है, सिवाय मणिपुर के, जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहां पहुंच गए हैं. उसी तरह कोबरा बटालियन अब J&K में ही पहुंच गए हैं, सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी एंड कोबरा बटालियन अलॉन्ग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दोथ एरिया. अब वहां पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया है, हालांकि कुछ है. एक तो उल्फा है आसाम में, जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है, लेकिन हमारे काबू में है वो, ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता. लेकिन J&K में जो है वहां पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी, और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहां पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था, और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे.
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए. और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर आपने प्रकाश डाला. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता. इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथानियल. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 65 करोड़ रुपए की दृष्टि परियोजना को स्वीकृति दी। नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस और राधा स्वामी सत्संग व्यास आयोजन कार्यक्रम के मद्देनजर विशेष यातायात प्रबंध लागू। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सजग के अंतर्गत 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया और विश्व कपास दिवस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कपास किसानों, बुनकरों और कपड़ा उद्योग के लोगों को शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 65 करोड़ रुपए की दृष्टि परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली का नक्शा बदलने के लिए अत्याधुनिक जियो स्पेशल और GIS सर्वे तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी 13 जिलों में PM उदय सेल और मुख्यालय में एक शाखा स्थापित की जाएगी।
2: परियोजना की 52 करोड़ रुपए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास निधि से अनुदान के रूप में मिलेगी। वहीं शेष 13 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की होगी। योजना के तहत दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का सत्यापन, डिजिटल मैपिंग और भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने का काम किया जाएगा। इस परियोजना की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग और दिल्ली नगर निगम को सौंपी गई है। इससे योजना के तहत संपत्तियों से संबंधित सर्वे, मैपिंग और दस्तावेजी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही संपत्ति के स्वामित्व, हस्तांतरण और उससे जुड़े अन्य अधिकारों का लाभ तेजी से मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि PM उदय योजना अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों को उनके घर और संपत्ति से जुड़े अधिकारों की कानूनी सुरक्षा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े और योजना का लाभ तेजी से जमीन पर पहुंचे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज से शुरू हो गई। 4 दिन के इस कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औपचारिक उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। ये वैश्विक सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भी मंच उपलब्ध कराएगा। इस दौरान अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुँच बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग और भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सहित प्रमुख 9 क्षेत्र शामिल है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक हिस्सा लेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। ये मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने वाला एक वैश्विक संगठन है। ये संगठन मोबाइल ऑपरेटरों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना छूटे, इसके लिए प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण आवश्यक है। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को

0: सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने उभरती प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक मानकों और सामान्य नियमों की आवश्यकता पर भी बल दिया। डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित सामग्री के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री ने उपयोगकर्ताओं के इसके स्रोत की तुरंत पहचान करने की सुविधा देने वाले तंत्रों पर विचार करने का सुझाव दिया। दिल्ली यातायात पुलिस ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मद्देनजर कल के लिए विशेष यातायात परामर्श जारी किए हैं। पुलिस के अनुसार कल सवेरे 9:35 से 10:10 तक कापसहेड़ा सुरंग से द्वारका और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की ओर भारी तथा वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। दिन के 11:00 से 11:40 तक धूल सिरस से कापसहेड़ा सुरंग की ओर जाने वाले भारी और वाणिज्यिक वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। वाहन चालकों को इन मार्गों से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से यात्रा के पहले योजना बनाने, अतिरिक्त समय लेकर चलने और मार्ग पर यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली यातायात पुलिस तथा राधा स्वामी सत्संग ब्यास आयोजन कार्यक्रम के मद्देनजर भाटी माइंस में राधा स्वामी सत्संग परिसर के आसपास विशेष यातायात प्रबंध लागू करेगी। शुक्रवार से रविवार तक होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही सवेरे 4:00 से रात 8:00 तक प्रतिबंधित रहेगी। यातायात पुलिस ने लोगों से छतरपुर रोड से बचने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही मांडी रोड से आने वाले भारी वाहनों को जौनापुर कट से मेहरौली गुरुग्राम रोड की ओर मुड़ने की सलाह दी गई है। श्रद्धालुओं को सवेरे 5:00 से पहले सत्संग परिसर पहुंचने और निर्धारित पार्किंग व्यवस्था का उपयोग करने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले श्रद्धालुओं को डेरा बॉर्डर के रास्ते भाटी माइंस पहुंचने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने नागरिक सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए आज 3 नई पहल शुरू की। इनमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण की पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस सेवा, सरकारी पशु चिकित्सालय में व्यापक ऑनलाइन पालतू पशु सेवा मंच और 346 सार्वजनिक शौचालयों को वरिष्ठ अधिकारियों तथा परिषद सदस्यों द्वारा गोद लेने की व्यवस्था शामिल है। NDMC की मौजूदा ऑनलाइन व्यवस्था में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का नाम जोड़ने, घर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र में सुधार जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि नई व्यवस्था के अंतर्गत अस्पताल जन्म और मृत्यु से जुड़ी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेंगे, जिससे कागजी प्रक्रिया और भौतिक दौरे कम होंगे। वहीं ऑनलाइन पालतू पशु सेवा मंच से पंजीकरण, OPD और टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट, टीकाकरण प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बारापुला फेज 3 यातायात जाम की समस्या को पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान हुई प्लानिंग और डिजाइन की कमी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब 1635 करोड़ रुपए की परियोजना तय समय से काफी देर से शुरू हुई और अब मर्जिंग प्वाइंट पर जाम की समस्या सामने आ रही है। श्री सिंह ने कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय अगले 10, 20 और 50 साल के यातायात को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि तत्काल राहत के लिए लेन चैनलाइजेशन, अतिरिक्त लेन और सिद्धार्थ एक्सटेंशन के लिए अलग यूटर्न की संभावना पर काम हो रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पूरे कॉरिडोर के यातायात और संरचनात्मक डिजाइन का विशेषज्ञों से आकलन कराया जाएगा ताकि तत्काल राहत के साथ स्थायी समाधान तैयार किया जा सके। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज दिल्ली के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर नई दिल्ली, जनकपुरी, तिलकनगर, हरिनगर और मंगोलपुरी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिमी पंजाबी बाग स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय, शिवाजी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज और बाबा साहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान

0: सहित अन्य कॉलेजों तथा महाविद्यालयों में आयोजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि शिविर कल भी लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सजग के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अंतर्गत अवैध प्रवासी, लुटेरे, बाल अपराधी, घोषित अपराधी और तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 85,000 रुपए नकद, 40 मोबाइल फोन, 3 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ और 8 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान 3 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,800 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले एक चार पहिया वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में घाना के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। इस दौरान श्री नवीन ने चांदनी चौक लोकसभा की सेवा ज्योति यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेवा ज्योति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की सेवा भाव, राष्ट्र प्रथम के संकल्प और जन कल्याण की अविरल साधना का प्रतीक है।
2: मैं ये मानती हूँ कि भारत माँ का एक ऐसा सच्चा सपूत जिसने 25 साल अनवरत बिना एक दिन भी रुके, बिना थके देश के प्रति, जनता के प्रति अपना सेवा भाव के साथ में जिस तरीके से कर्तव्य निभाया, विकसित भारत के स्वप्न को उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का समर्पण के साथ जोड़ करके एक बड़ा सपना हम सबको दिखाया है।
0: दिल्ली के सीमापुरी में आज एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। घटना स्थल पर अब तक बचाव कार्य के लिए दमकल विभाग की 9 गाड़ियां भेजी गई हैं। खबर लिखे जाने तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिन्हें उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि हादसे के मद्देनजर सीमापुरी गोल चक्कर, डीएलएफ भोपुरा और आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित है। यातायात पुलिस ने बताया कि बचाव दल मौके पर काम कर रहे हैं। लोगों से इस इलाके के आसपास यात्रा करने से बचने, घटना स्थल के पास न रुकने और गाड़ी पार्क न करने के साथ साथ भीड़ जमा न करने की अपील की गई है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास की वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण।
3: विश्व कपास दिवस हम मनाते हैं। इस दिन हम किसानों को याद करते हैं। कपास में अगर भारत के अंदर 60 लाख किसान जुड़े हुए हैं, तो हमारे करोड़ों मजदूर जुड़े हुए हैं, करोड़ों छोटे छोटे उद्यम जुड़े हुए हैं हैंडलूम से, तो मैं सबों को आज के दिन बधाई देता हूँ।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो संदेश में कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी विश्व कपास दिवस के अवसर पर कपास किसानों, बुनकरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 65 करोड़ रुपए की दृष्टि परियोजना को स्वीकृति दी। नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस और राधास्वामी सत्संग ब्यास आयोजन कार्यक्रम के मद्देनजर विशेष यातायात प्रबंध लागू। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सजग के अंतर्गत 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया और विश्व कपास दिवस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कपास किसानों, बुनकरों

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर में देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले बातचीत की। संगठन संचालकों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है।
2: इतना बड़ा आर्थिक संकट पैदा होने के बावजूद भी हमने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रुकने नहीं दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था जहां 2%, 1.5% और 3% की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं पर विश्व में इतना बड़ा संकट पैदा होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज भी 7.4% की दर से बढ़ रही है।
0: रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज भी मासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसरों को सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की गई है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने ये सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटोकैटेलिसिस की खोज के लिए देने की घोषणा की है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की पुरुष डबल्स जोड़ी ने चीन के हेजी टिंग और रेन चियांग यू को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में थरून मन्नीपल्ली

ने डेनमार्क के जोहानेसन मैग्सन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Indian tour produced a stunning upset, defeating fifth seeds He Jiting and Ren Xiangyu of China in a closely fought opening round match. And that is the end of this news bulletin.
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashwani. On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal.
2: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
3: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमयी यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस, डेमोंस्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन AI ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड। आवर रोल्स एंड टास्क naturally take us beyond the confines of Earth's atmosphere, as space is a natural extension of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. इस अवसर पर मैं अपने आदरणीय एयर वेटरन्स को नमन करता हूँ। आपकी दूरदृष्टि

0: अर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज द अनवेवरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ आर फेलो सिटीजन्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन एयरफोर्स। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप सभी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में हम समस्त वायु योद्धा भारतीय वायु सेना अचूक अभेद एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे। जय हिंद।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम मधुरिमा, और मधुरिमा में आज बात राग केदार की। केदार भगवान कृष्ण का प्रिय राग है। ये राग कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों मध्यम
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे राम वचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने?
2: अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं।
3: सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एवास और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर कार्यक्रम मधुरिमा में आज हम बात कर रहे हैं राग केदार की। केदार राग में आरोह सा म प ध प नी ध और सा, यहाँ रे और ग जो है वो वर्जित है। इसके अवरोह में सा नी धा पा म प ध प म रे सा, अवरोह में गंधार का अल्प प्रयोग या वर्जित माना जाता है। यहाँ पर दोनों मध्यम लगते हैं। जिसमें पकड़ की बात की जाए तो ग म रे सा अथवा म प ध प म इस राग की मुख्य पहचान है। इस राग की प्रकृति की बात की जाए तो एक गंभीर और करुण रस से परिपूर्ण राग है, जिसमें भगवान कृष्ण और शिव की भक्ति के भाव झलकते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आज इस अल्प समय में हमने बात की राग केदार की।

खा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के साथ आगामी क्रिकेट दौरे के लिए भारत और भारत ए टीम का ऐलान। भुवनेश्वर कुमार की टी20 टीम में वापसी। प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और आर्किटेक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा थरूर मन्नेपल्ली दूसरे दौर में पहुंचे।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू किया जाए क्रिकेट के मैदान की खबरों के साथ। भारत ने कल वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कला स्टेडियम में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज के 172 रन के लक्ष्य को भारत ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और एक गेंद में 171 रन बनाए थे। मेहमान टीम के लिए शेरफन रदरफोर्ड ने सर्वाधिक 56 और कप्तान शाई होप ने 52 रन की पारी खेली थी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत इस मैच में जीत हासिल कर ली, जिसमें सबसे अहम योगदान भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का रहा। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। शुरुआत में लगा था कि लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा है या फिर फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है इसको, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कप्तान साहब ने दिखाई बहुत छोटा नजर आया ये लक्ष्य।
1: बिल्कुल शक्ति, भारतीय टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के विकेट भारतीय टीम ने जल्दी गंवा दिए, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने 27 गेंदों पर 37 रन बनाकर पारी को संभाला, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 43 गेंदों पर डोमिनेटिंग 102 रन बनाए जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। 237 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और किसी भी मौके पर उन्होंने ये नहीं लगने दिया कि भारतीय टीम इस मुकाबले में पिछड़ रही है, हमेशा इंडिया को फ्रंट फुट पर रखते हुए मुकाबले में भारत को जीत दिलाई।
0: जी बिल्कुल, और श्रृंखला का अगला मुकाबला अब शुक्रवार को खेला जाना है जहां भारतीय टीम की नजर होगी कि इस मैच को भी जीता जाए रांची में और अपनी बढ़त को दोगुना करते हुए श्रृंखला में अपनी पकड़ और मजबूत की जाए। और अब बात एक और T20 श्रृंखला की तैयारियों की, जहां न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भारत और भारत ए क्रिकेट टीम की घोषणा कल कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम मेजबान न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैच खेलेगी, जबकि भारत ए टीम न्यूजीलैंड ए के साथ 3 मल्टी डे मैच खेलेगी। ये मल्टी डे मैच 4 दिन के होते हैं, एक दिवसीय और टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम का चयन बाद में किया जाएगा। तो आइए पहले जानते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को इस दौरे में टीम में स्थान मिला है।
2: भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा टीम के उपकप्तान होंगे। टीम के चयन का सबसे खास पहलू 36 वर्षीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी है। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए पिछले 2 शानदार IPL सीजन खेले हैं। वरुण चक्रवर्ती की भी चोट के बाद टीम में वापसी हुई है। टीम में श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और तिलक वर्मा को मौका मिला है, जबकि अक्षर पटेल, शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका में हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव के कंधों पर होगी। दोनों टीमों के बीच श्रृंखला का पहला मैच 22 अक्टूबर को और दूसरा मैच 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में, चौथा 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में और अंतिम मैच 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड ए के साथ 3 मल्टी डे मैच के लिए 15 सदस्यीय भारतीय ए टीम की कमान ध्रुव जुरेल को सौंपी है, जबकि ऋषभ पंत की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। उनके अलावा टीम में यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, देवदत्त पंडिकल, रविचंद्रन, वॉशिंगटन सुंदर, औकीब नवी, आकाशदीप, अंशुल कम्बोज, मानव सुधार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौर और मुकेश कुमार टीम में शामिल हैं। दोनों टीमों के बीच पहला 4 दिन का मल्टी डे मैच 24 से 27 अक्टूबर तक लिंकन में खेला जाएगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो पिच सेट हो चुकी है एक और दौरे के लिए, जहां भारतीय टीम न्यूजीलैंड की धरती पर उनके साथ एक लंबी श्रृंखला खेलेगी, जिसमें T20, टेस्ट और एक दिवसीय मैच शामिल होंगे। लेकिन इस पूरे श्रृंखला का जो आउटकम

0: रहा इस पूरी टीम सिलेक्शन का जो आउटकम रहा वो है भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी। विशेष लगातार ऐसी मांग थी कि गेंदबाजी के मोर्चे पर कुछ ओवर हॉलिंग की जाए टीम के साथ। क्या भुवी की स्विंग गेंदबाज की टीम में वापसी उसी का संकेत है?
1: बिल्कुल शक्ति, उसी का संकेत है, क्योंकि वनडे टीम हो या टी20 टीम हो, गेंदबाजी में भारतीय टीम लगातार संघर्ष करती नजर आ रही थी। हालांकि तब जब जसप्रीत बुमराह टीम में है तब थोड़ी सी दृढ़ता देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद कोई भी गेंदबाज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहा था। भुवनेश्वर कुमार लगातार दो सीजन से आरसीबी के लिए शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 16 मुकाबलों में 28 विकेट 2025 में लिए उन्होंने और 14 मुकाबलों में 17 विकेट 2026 में उन्होंने आईपीएल में लिए, तो शानदार उन्होंने गेंदबाजी करी है। और शुभमन गिल कप्तान जो है भारतीय टीम के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि गेंदबाजी के मोर्चे पर हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो भुवनेश्वर कुमार को टी20 टीम में चुना गया है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि वनडे टीम के प्लान्स में वो कितने देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप नजदीक है और भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करते हुए देखना चाहेगी।
0: जी बिल्कुल चाहेगी, और 36 वर्षीय खिलाड़ी हैं, शानदार उनके पास कला है गेंद को स्विंग कराने की, और भुवनेश्वर कुमार से उम्मीदें होंगी कि वो टीम को एक अनुभव के साथ एक शानदार संतुलन दें जिसकी इस टीम को ज़रूरत है। और खासकर भारत जो नए खिलाड़ियों को गेंदबाजी क्रम में मौका देने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर 2022 नवंबर में आखिरी बार देखे गए थे न्यूजीलैंड में टी20 खेलते हुए, वापस वहीं से मौका होगा 2026 में अपने अभियान को शुरुआत, एक नई शुरुआत देने का। और अब कार्यक्रम में बात की जाए एशियाई पैरा खेलों की, जिनकी तैयारियां अब तेज हो गई हैं। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान की आईची नगोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते हैं। वहीं पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना ने 2018 और 2023 एशियाई पैरा खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारतीय पैरालंपिक समिति कल खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से की उपस्थिति में एक विशेष समारोह में भारतीय दल को औपचारिक रूप से विदाई देगी।
1: एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय खिलाड़ी एशियाई खेलों के मंच पर अपना करिश्मा दिखाने के लिए तैयार हैं। इन्हीं में से एक बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम आज स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कैन में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने 100 पदकों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है।
2: बहुत मोटिवेटिंग था एक्चुअली, कभी सोचा नहीं था मैंने कि 100 मेडल्स जीतूंगा या ऐसा कुछ प्लान नहीं था। इनिशियली तो बस खेलता जा रहा था, और हालांकि काफी टाइम से मैं काउंट भी नहीं करता था कि कितना है क्या है, बट जबकि मैं अभी एशियन गेम्स के लिए जा रहा हूँ, ये तीसरा एशियन गेम्स है मेरा, तो जब मैं ऐसी ही स्टैट्स देख रहा था तो तब पता चला कि मैं मतलब 90s में हूँ और कुछ ही मेडल्स के बाद मेरा 100 मेडल हो जाएगा। तो काफी मोटिवेटिंग था, 100 मेडल्स का माइलस्टोन कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा सपना था, ऑलमोस्ट 10 साल लगे इसके लिए, बट वही मैं खुश हूँ उसके बाद।
0: जी सुकांत, बेहद खुशी का पल है। हालांकि हम पहला सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप SL4 और SU5 पैरा बैडमिंटन कैटेगरी में खेलते हैं, हम चाहेंगे कि आप श्रोताओं को जरूर बताएं कि बैडमिंटन में इन पूरी कैटेगरीज को किस तरह से तय किया जाता है।
2: कैटेगरी के बारे में बात किया जाए, SL4 स्टैंड एज अ स्टैंडिंग लोअर, और जिनमें पार्शियली डिसेबिलिटी होता है दैट एथलीट कम इन स्टैंडिंग लोअर 4। सो पैरा बैडमिंटन में कुल मिला के 6 कैटेगरीज है, उसमें 2 व्हीलचेयर की है, 2 लोअर लिम्स की है, 1 अपर लिम का है जिनका, और 1 शॉर्ट स्ट्रेचर वालों का है। सो ऐसे 6 कैटेगरीज होते हैं। SL3 SU5 में जो आपका मैक्सिमम नंबर अलाउड होता है वो 8 होता है, मतलब आप 2 SL4 के एथलीट खेल सकते हो या फिर 1 3 का और 1 5 का एथलीट मिला के खेल सकते हो।
0: जी बिल्कुल, तो एक अपने में ही काफी अलग कैटेगरी जिसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं।
1: इसी के साथ ही सुकांत, हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत ने पैरा खेलों में अपने प्रदर्शन में बीते कुछ समय में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसके लिए आप देश में बन रहे नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना खास मानते हैं?
2: तारा एथलीट्स के लिए काफी इम्प्रूवमेंट है पिछले कुछ सालों में, बट मुझे लगता है कि काफी डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में और जितने भी स्टेडियम बन रहे हैं वो डिसेबल फ्रेंडली बन रहे हैं, और वो एक नजरिया रखा जाता है उनका कि एक तारा एथलीट भी कैसे यहाँ तक आके ट्रेनिंग कर सकते।

0: सकता है। तो वो एक अच्छा चीज है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है सारे स्टेट्स में, वैसे वैसे वो अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि यहाँ पे सारा एथलीट भी ट्रेन कर सकते हैं, तो उनके हिसाब से भी थोड़ी अरेंजमेंट की जाए तो काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बेटर हो जाए।
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सुकांत। और जैसा कि हमने 2024 में देखा, जहां पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो पैरा ओलंपिक्स हुए, वहां पे खिलाड़ियों का प्रदर्शन और मेडल टैली और अधिक गौरवान्वित कर रही थी भारत को, तो उम्मीद यही है कि इस बार एशियाई खेलों के बाद जब हमारे पैरा खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो उनसे और बेहतर और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होने वाली है।
2: बिल्कुल सुकांत, और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 पैरा ओलंपिक्स के अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, जिन्होंने आपको आगे टूर्नामेंट्स में आगे बढ़ने की काफी मदद की।
0: हालांकि मैं जब हमारा पैरा बैडमिंटन का डेब्यू हुआ था 2020 में टोक्यो में, तब मैं बहुत छोटे से मार्जिन से क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो मेरे पास वो बहुत सारा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत मेहनत करके 2024 पेरिस के लिए क्वालिफाई किया था और मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं हाईएस्ट लेवल के कंपटीशन में वहां पे जाके कम्पीट करूँ। पैरालंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पर दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी आते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आते हैं, तो वहाँ पे कम्पीट करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं कहूंगा वहाँ पे जो सीख मिला मुझे या वहाँ से जो चीजों का जो बोलते है कि पैरालंपिक्स जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजों में रियलाइज होता है कि आप और कहाँ कहाँ पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, तो वो सबके लिए मैं बहुत खुश था और इंडिया को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करना एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट था।
2: बिल्कुल सुकांत, और हम ये भी चाहेंगे कि आप भारत को और भी गौरव के मौके देते रहें। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल यह है कि 2026 एशियाई खेलों का मंच जो है वो तैयार हो चुका है, आप किस टारगेट को अपने सामने रखकर मैदान पर उतरने वाले हैं?
0: नेक्स्ट अचीवमेंट तो एशियन गेम्स है। एशियन गेम्स में मेरा अभी तक एक भी गोल्ड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके मैं अपना पहला एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतूं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुकांत, और आपको शुभकामनाएं एशियन पैरा गेम्स के लिए।
1: जी बिल्कुल, और इसके साथ ही इस बीच एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान अमन शहरावत ने भी आकाशवाणी से विशेष बातचीत की। इस दौरान कुश्ती के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पहलवान ने अपनी जीत पर बेहद खुशी व्यक्त की और अपने कोच तथा सहायक स्टाफ का धन्यवाद किया।
3: बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ गोल्ड लेके आए हैं तो, क्योंकि पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल रहा था तो अब की बार हमने पूरी मेहनत की और गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया, हमें विदेश से कोच अप्रूव करवाया और हमें विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा और इसके लिए अच्छा ही रिजल्ट आया हमारा एशियन गेम्स में। फीलिंग ये रही कि जो इतने सालों की मेहनत है वो सफल हुई और जो मेरी कोचेज जो मेरे स्टाफ उनकी भी मेहनत सफल हुई।
1: तो ये थे अमन शहरावत, जिन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में भारत के लिए कुश्ती में एक शानदार स्वर्ण पदक जीता है और ओलंपिक में भी कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी हैं और कुश्ती के जगत में एक उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और बात बैडमिंटन की, जहां आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन के 5वीं वरीयता प्राप्त हे जी टिंग और रेन जियांग यू को 10-21, 21-18 और 22-20 से हराया। पुरुष सिंगल्स में थरुण मन्नेपल्ली ने डेनमार्क के जोहनसन मैक्सन को 21-16, 21-14 से हराया। हालांकि एचएस प्रणॉय को डेनमार्क के एंडर्स एंटोसेन से 10-21 और 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले कल महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कनाडा की वेन यू झांग को हराया था। तन्वी शर्मा ने भी ताइवान की चियू पिनचियान को हराया था। और अब से कुछ देर बाद जो है भारतीय मेंस सिंगल्स खिलाड़ी कई और मुकाबले खेलेंगे और रौनक चौहान को भी आज मेंस सिंगल्स में हालांकि हार का सामना करना पड़ा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का

0: अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के

0: बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: दिस अलायंस is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
3: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था

0: अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
4: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
3: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
2: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
5: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की, कहा भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
6: good evening, this is Akashwani. I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation.

चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा।

0: करेंगे। हमारे साथ में है आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद निखिल जी।
0: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VVGRAMJI भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
1: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत GRAMJI, यह एक ऐतिहासिक एक्ट जो बना हुआ है, वह पूरे देश में लागू हो चुका है। एक ही दिन में भारत देश के सारे ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत GRAMJI के सारे प्रावधान जो है वो लागू हो चुके हैं। उसके तहत अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 36 करोड़ से भी ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसे कि हम परसेंटेज कहते हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा वर्क साइट्स पर जो है विकसित भारत GRAMJI के काम चल रहे हैं और 2,34,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये जो काम है वो किए जा रहे हैं। 2.99 ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रोजगार मांगा, उनको 15 दिन के अंदर अंदर यह रोजगार उपलब्ध किया गया है और लोगों की रोजगार की और आजीविका की कई सारी ये जो डिमांड्स हैं उनको तभी के तभी फुलफिल किया गया है। तो एक तरीके से 1 जुलाई से विकसित भारत GRAMJI का राष्ट्रव्यापी जो शुभारंभ हुआ है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई और बहुत ही स्मूथली विकसित भारत GRAMJI लागू हो चुका है और सारे ग्रामीण उसका बहुत सही तरीके से 125 दिन की जो बढ़ी हुई रोजगार की गारंटी है उसका यूज कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, अब उसमें आगे जाते जाते कई सारे पहलू जो है हम लगा रहे हैं, जैसे कि नए कामों की जो सूची अभी अभी भारत सरकार ने नोटिफाई की।
0: रोहिणी जी, इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि केवल रोजगार ही उपलब्ध न कराया जाए बल्कि कई अन्य काम भी हो, जैसे कि गांवों में जल संरक्षण हो, जल सुरक्षा हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, आजीविका से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जलवायु या फिर अत्यधिक मौसम से बचाव जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाए। इस दिशा में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक जो सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में बताएं।
1: विकसित भारत GRAMJI का अगर आप नाम ही देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मतलब यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम जो है वो केवल रोजगार की बात नहीं करता है, वो रोजगार के ऊपर जाकर आजीविका की बात करता है, जिससे कि लोगों को केवल मजदूरी, केवल रोजगार ना मिले परंतु स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध हो। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो अनुमेय कामों की सूची है। अनुमेय कामों की सूची में जैसे आपने कहा, टोटल 375 काम जो है वो अनुमेय माने गए हैं विकसित भारत GRAMJI में, जिसकी सूची जारी हुई। इन 375 कामों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी गई है तो वह है जल संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल है तो कल है, कैच द रेन, ऐसे कई सारे कैंपेन्स जो है भारत सरकार चलाता है, जिससे कि हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए, हमारे शहरी विभागों के लिए पानी की कमी ना रहे, वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। इंडियाज वाटर विजन 2047 भी यही कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले वाटर सिक्योर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जल संधारण के जो कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आप देख सकते हैं कि 128 ऐसे काम है 375 में जो कि जल संधारण के कार्य है, वाटर सिक्योरिटी के कार्य है, और उसके बाद जो है ग्रामीण अवसंरचना के कार्य है, और जो 111 ऐसे काम है जो ग्रामीण अवसंरचना के है, जिसमें कि सारी बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं ग्रामीण विभागों की, रोड हो गए, पुल पुलिया हो गया, खेत सड़क हो गए, किसी स्कूल की लैबोरेटरी की बिल्डिंग हो या क्लासरूम बिल्डिंग हो या टॉयलेट्स हो या फिर आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हो, जो भी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ग्रामीण विभागों में है, वह सारा 111 कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में आता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी ऐड की गई है, जिसे कि हम आजीविका मूलक गतिविधियां कहेंगे, जिसमें कि 98 काम उसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना जब करना पड़ता है तो उससे निपटने के लिए भी 38 ऐसे काम है जो कि इसमें ऐड किए गए हैं।
0: रोहिणी जी, अभी आपने 128 कार्यों का जिक्र किया जल सुरक्षा के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की जो स्थिति है थोड़ी सी ऐसी नजर आती है कि वहां पर काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, साथ ही कृषि की जरूरतें भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहती है कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि को ज्यादा ज्यादा लाभ मिल जाए। तो इनका जो निर्धारण किया गया है 128 कार्यों का, इनके पीछे क्या यही सोच रही है सरकार, कुछ और भी प्लान कर रही है जिससे लोगों को और भी लाभ मिलेगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम पानी की बात करते हैं तो उसके सेंट्रल स्थान पे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और इसलिए किसान ही और जलवायु और जल सुरक्षा, ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर ये बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। और किसानी के साथ साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन

0: रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे लचीलापन कहते हैं वो करने के लिए या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात, इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली अफेक्ट होने की संभावना है, कुछ एडवर्सली अफेक्ट हो भी गए हैं, तो ड्रॉट प्रूफिंग की जो बात है, क्लाइमेट रेजिलियंस की जो बात है, यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है, सोच में रहा है, और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई है।
1: आपने ये जिक्र किया था कि मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें 100 स्ट्रीट लाइट की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, पुस्तकालय, स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाओं या फिर अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे?
0: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गांव के लोगों में है, और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए, ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, यह एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारे बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जब प्रसंस्करण होता है, उसका जब प्रोसेसिंग होता है, तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो इसमें ऐड किए हैं, और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के?
0: विकसित भारत, जी राम जी, जब हम कहते हैं तो उसकी शुरुआत में ही विकसित भारत आता है
1: जी।
0: ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी, निखिल जी, आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गाँव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती, इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है। और इसीलिए जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में, तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से नियोजन किया जाए इन कामों का। और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गाँव की कल्पना की गई है और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है, जिन प्लान्स में ये 375 टाइप काम भी आएंगे।
1: रोहिणी जी, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग वो 1.1% था, अभी बढ़कर वो 26% हो गया। तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है?
0: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह केवल रोजगार देने वाला प्रोग्राम नहीं है, यह रोजगार के आगे जाके आजीविका की बात करता है। और इसीलिए पहले के प्रोग्राम में एमजी नरेगा में लाइवलीहुड के बारे में बात ही नहीं की गई थी, अगर थी तो भी केवल 1 या 2 बहुत ही कम 1% काम जो थे वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज में आते थे। विकसित भारत जी राम जी वही परसेंटेज जो है अब वो 26% हो गया है। इससे पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित भारत जी राम जी में इन अनुमेय कामों को शामिल किया गया है। मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि ये काम केवल नंबर्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारे किसान जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण विभागों में रहते हैं, और किसान कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, धान्य होता है या फिर फल होते हैं, सब्जियां होती है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना एक बात है, अच्छा भाव दिलाना एक बात है, परंतु कई बार इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सही तरीके से उसका भंडारण किया जाए, स्टोरेज किया जाए, सही तरीके से उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए या उसमें मूल्य संवर्धन किया जाए, उसमें वैल्यू एडिशन की जाए, तो हमारे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। और इसीलिए हमने लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में खाद्य प्रसंस्करण हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज हो या फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो, ऐसी कई सारी चीजें हमने इसमें ऐड की है। अन्नदाताओं से अगर हम महिलाओं तक जाए, हमारी सेल्फ

0: ग्रुप की दीदियां हैं। गांव में ये दीदियां रहती है, लखपति दीदियां बन चुकी है, करोड़पति बनने की ओर अग्रेसर है। तो ये हमारी जो दीदियां हैं वह भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, परंतु उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसे काम भी अब हमने जो है विकसित भारत जी राम जी में अलाउ किए हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कोई एक एंटरप्राइज करना चाहता है जिसके लिए कि उन्हें वर्कशेड की जरूरत है, तो अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से वह वर्कशेड बना सकती है। कोई एसएचजी चाहता है कि हम एक नर्सरी रन करें जिससे कि प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिले, वह भी कर सकता है। तो हमारी दीदियां, हमारे युवा और हमारे अन्नदाता, इन सभी के आजीविका के जरूरतों को केटर करने का जो सामर्थ्य इन 98 कामों में है जो कि हमारे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
1: श्रोता, हम आपको बता दें कि नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्यों को इनमें शामिल किया गया है। तो रोहिणी जी, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इनका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना है या फिर इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और दीर्घकालीन आजीविका से भी जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाई गई है?
0: बिल्कुल सही कहा, 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो मिनिमम गारंटी दी गई है कि 125 दिन रोजगार मिलेगा। परंतु विकसित भारत जीराम जी यह कहता है कि हमारे दीदियों को या फिर हमारी महिलाओं को या फिर अन्नदाताओं को केवल 125 दिन का अकुशल रोजगार लेना ही उनका एस्पिरेशन नहीं है। वह चाहते हैं कि उनको दीर्घकालिक एक आजीविका के अवसर मिले, और वो करने की क्षमता जो है विकसित भारत जीराम जी के कार्यों में है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे ग्रामीण विभागों की बदलती हुई जरूरतें अगर आप देखें, तो अगर एक पैकेजिंग और ग्रेडिंग यूनिट भी अगर हम गांव में बनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के लिए काम आ सकता है, मिनी फ्लोर मिल्स बनाए जाए, मार्केट यार्ड्स बनाए जाए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कई विभागों में भारत दुनिया का बहुत बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और अगर हमारे पास मिल्क चिलिंग प्लांट्स अगर बन जाए, क्लस्टर लेवल पे भी बन जाए, तो भी हमारे युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़ करके दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, खासतौर पे ऐसे समय में जब हम एक टारगेट सेट करके बैठे हैं कि हमें बहुत ही जल्दी अपने यहाँ से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए या फिर और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो है वो विकसित भारत जी राम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जी राम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो अंत्योदय वाले सेक्शंस है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है। और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: रोहिणी जी, जैसा कि आपने भी बताया, तो मैं आपसे यहाँ पर यह जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं, वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनको विकसित भारत जी राम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का, जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान का एक फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया, और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा, तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम से, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से, वह यह तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की, तब जो है ग्राम सभा ही यह सूची बनाएगा कि ऐसे कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको कि यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस

0: में उसे डिस्प्ले किया जाएगा और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है। और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेकर वह भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें तो स्थानीय जरूरतों और तकनीकी रूप से व्यवहार परियोजनाओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर तकनीकी क्षमताओं का ये कहें कि अभाव है या फिर वहां पर सीमित है वो व्यवस्थाएं।
0: मंत्रालय या भारत सरकार जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो द्योतक बननी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज टू मेक द पीपल्स लाइव्स इजियर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की, उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह 2 प्रकार से किया जा रहा है। मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहां पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहां पर कंस्ट्रक्ट करने से वहां सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा। तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा। वह एसेट्स के दोहराव को भी रोकेगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इसकी वजह से छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई टेक्निक फेल हो जाती है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से डिजिटल निगरानी और विभिन्न योजनाओं के निवेश के अभिसरण की बात कही गई है और ये प्रणाली जमीन पर कामों के दोहराव को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साबित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस तरह से आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी 38 कार्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है जिसमें कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे?
0: 38 काम ऐसे है जो पहली बार यह कैटेगरी ऐड की गई है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। यह एक सेपरेट कैटेगरी कभी नहीं थी जिसमें कि आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए ये पहली बार यह एक सेपरेट कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें कि 38 काम है। हमारा देश जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है। कोस्टल एरियाज है जहां पे साइक्लोन प्रोन कुछ एरियाज है, भूस्खलन के लिए वल्नरेबल कुछ एरियाज है, जहां पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए हमने यह 38 काम जो है इसमें ऐड किया गया है। कुछ काम इसमें ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके चलते फॉरेस्ट फायर्स की भी घटनाएं कई बार सामने आती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के मेजर्स जैसे कि फायर लाइंस हो गए, फ्यूल बफर जोन्स हो गए, वो भी अब ऐड किए गए हैं। जैसे कि फ्लड रिलीफ के शेल्टर्स, कई बार फ्लड आता है तो स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता है, वो ना हो इसीलिए फ्लड रिलीफ शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स का स्ट्रेंथनिंग, ऐसे भी कई सारे काम जो।
1: रोहिणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है या करेगी?
0: सरकार ने विकसित भारत जीराम जी के एक्ट कई सारे गुणवत्ता मूलक

0: गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है। पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी, विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है, जो कि एक्ट का ही एक पार्ट है। और सोशल ऑडिट की जो व्यवस्था है, जिसमें कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जी राम जी में, उनकी निगरानी करेंगे, तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा। ऑल्सो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स। जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसका त्रिस्तरीय जियो टैगिंग करना पड़ता है, जैसे कि काम होने से पहले एक बार, जब काम हो रहा है तब एक बार, और काम होने के बाद भी एक बार जियो टैग करके फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की आपने बात की
1: जी, जी।
0: तो एक डिजिटल निगरानी के लिए वह एक बहुत अच्छा साधन बनेगा, जिससे कि यह पता चलेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से पंचायतों में कौन से कैटेगरी के कितने कार्य जो है वो चल रहे हैं, कितने अभी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर ये निगरानी की व्यवस्था और भी बेहतर होगी, और राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है कर रही है। अभी हमारा नेशनल लेवल पे 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई, और फिर राज्यों में भी हुआ, राज्य लेवल पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारा NIRDPR का संस्थान है, उसके माध्यम से भी बिल्कुल गांव लेवल तक की कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो सरपंचस हैं, हमारे पूरे देश में जितने प्रधान और सरपंचस हैं, उनके लिए भी हमने पंच सम्मेलन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे कि आज तक लाखों जो है एरियाज में पंच सम्मेलन जो है किया गया है, जिससे कि हमारे सरपंच और प्रधान भी जाने कि उनका विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन को स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती है जब भी कोई आपदा आती है, और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा? ये
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशन आपको एक्ट देता है, उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है, ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है, ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125, वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से। अगर आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में आपदा के लिए हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो कहां पर आई है, कहां पर लोगों ने काम किया है, कहां पर कौन कौन से रिलैक्सेशन अवेल किया है, तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है, और हम भी वीवी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं। तो अगले वर्षों में या अगले दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या ये सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा, या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा, और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उस पे भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे?
0: विकसित भारत जी राम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है है कि विकसित भारत बनाना है और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। तो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव तो विकसित भारत बनाने का ही है और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 साल का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे आपने

0: अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीबी जी राम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी। हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत। जी राम जी,
1: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करनी चाहिए?
0: 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है, ऐसा मैं कहूंगी। विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों को केवल ना देखें, विकसित भारत जीराम जी में जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखें। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उन्होंने भी विकसित भारत जीराम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जीराम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भारत की ओर जाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा।
1: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती है जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं?
0: निखिल जी, विकसित भारत जीराम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है, इसीलिए आपने जो पूछा वह बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीबी जीराम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार भी उसके साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, हमारी दीदियां, जैसे मैंने कहा, लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है, जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही है तो वीबी जीराम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास पा सकते हैं, कौशल पा सकते हैं और उसको कई सारे उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं। मुद्रा लोन अवेल करके वह कई सारे अपने खुद के एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने उठाना चाहिए।
1: श्रोताओं, भी हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे से, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में तमाम विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद निखिल जी,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीति और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।

0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। यह आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय है सीमाओं के बिना विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई। मुंबई में आज द्विमासीय मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन सुधारों का उद्देश्य GST व्यवस्था में मौजूदा कई प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित प्रक्रिया के जरिए दूर करना और अनुपालन का बोझ कम करना है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए भारत इटली स्थायी कार्यबल की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इससे पहले कल भारत इटली आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समूह की 6वीं बैठक हुई थी। दोनों देशों की आतंकवाद रोधी एजेंसियों ने इन बैठकों में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। 2 दिन के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से जारी युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा की गई। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और उनकी खोज के लिए देने का निर्णय लिया। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नगोया में आयोजित होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said, India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Mr. Modi said the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. Samasya sabki hai. तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े,

0: समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
1: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
0: एक अन्य पोत अल्फा वतन पर भी कल हमला हुआ। कैप्टन स्मित मच्छर के स्वास्थ्य पर श्री जायसवाल ने बताया कि कैप्टन की हालत में सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। रूस की सेना में भारतीय नागरिकों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत रूस के साथ शेष भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार 259 भारतीय रूस के सशस्त्र बलों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 139 को मुक्त कराया जा चुका है। भारत सरकार ने एक बार फिर भारतीय नागरिकों से रूस की सेना में शामिल होने के प्रस्तावों से दूर रहने का आग्रह किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन ने सराहना की है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला वर्तमान में भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे इस सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन और नॉर्वे वाले EFTA अपने व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन की वर्षगांठ मना रहे हैं। शिखर सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दोनों पक्षों के मंत्रियों और व्यवसायों के बीच सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इससे कुल मिलाकर लगभग 10 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।
2: EFTA के एग्रीमेंट से जिस तरह से करीब करीब अब तक 1,60,000 लोगों को रोजगार इसमें मिल चुका है। नई कंपनीज जो भारत आई है अपना प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग बेस, डिजाइन बेस, रिसर्च बेस भारत को बना रही है और आने वाले समय में इससे करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास टोटल नया रोजगार पैदा होगा। युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी और भारत के MSMEs के साथ जिस तरह से स्विट्जरलैंड के, नॉर्वे के, लिक्टेनस्टीन के MSMEs जुड़ रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की नई जर्नी बनेगा।
0: नई दिल्ली के यशोभूमि में 4 दिवसीय 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। ये वैश्विक सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भी मंच उपलब्ध कराएगा। इस दौरान अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, तकनीक आधारित आर्थिक विकास और डिजिटल पहुँच बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग और भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सहित प्रमुख 9 क्षेत्र शामिल हैं। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक हिस्सा लेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए भारत इटली स्थायी कार्यबल की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इससे पहले कल भारत इटली आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक हुई थी। दोनों देशों की आतंकवाद रोधी एजेंसियों ने इन बैठकों में हिस्सा लिया। बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल सहित आतंकवाद रोधी क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। संयुक्त कार्य समूह और स्थायी कार्यबल की अगली बैठक इटली में होगी। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वहां एक इमारत नष्ट हो गई। कीव और अन्य शहरों में भी लोगों के मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने बड़े पैमाने पर जानबूझकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को तत्काल और अधिक वायु रक्षा प्रणालियों, विशेष रूप से पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
1: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना ने 2018 और 2023 एशियाई पैरा खेलों में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और इटली वैश्विक मंचों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देंगे और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। ये रात फुसफुसाती है, कोई अफसाना सा कहती है, अफसाना धड़कते दिलों का, उन्हीं आंखों का, कसकते सपनों का।

मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, दूर रहकर भी तू मेरे करीब है, इतने करीब जैसे सांसों के करीब जान है, जैसे दिल के करीब धड़कने। सुनो, अगर कभी मेरी याद आए ना, तो चांद तारातों को नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगी, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, फिर चमेली के मंडवे तले मुझे प्यार के

दो बदन को जब मोहब्बत की नजर लग जाती है ना, तो उनमें मोहब्बत खुद ही सांसें लेती है। कहते हैं कि मोहब्बत में फना होना मरना नहीं है, मोहब्बत फरिश्तों का पुनर्जन्म है, मोहब्बत किसी राहिबा की कलाई से उतारी हुई चूड़ियों की खनक है, मोहब्बत किसी बेनूर सितारे को खैरात में मिलने वाली चमक है, मोहब्बत वो अलामत है जो जिंदगी के खजाओं में बसंत महका देती है। कुछ इस गीत की तरह

चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। उनकी राहों में बिछी बेचैन आंखें बड़ी शिद्दत से उनकी राह देखती हैं, और जब उनसे मुलाकात होती है तो यही आंखें पलकों में छिपने की जगह ढूंढने लगती हैं, और कभी कभी तो वो बातें भी कह जाती हैं जो सुबह नहीं कह पाती। तभी तो किसी ने कहा है कि आंखें होती हैं दिल की जुबान, कर देती हैं सारी बातें बयान।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन

0: 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The Prime Minister said, India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन जी। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। अर्जुन जी,
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,603। आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 5.5%, चेंजेस पॉलिसी स्टांस टू कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF कॉल्स ऑन कंट्रीज टू टेक फास्टर एक्शन टू रिड्यूस डेट एंड टैकल ग्रोइंग इनइक्वालिटी।
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज गिरावट, सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,603 पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़त के साथ 5.5% किया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण में कमी लाने तथा असमानता से निपटने के लिए देशों से त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया।

0: their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में दो दिन से जारी तेजी आज थम गई। सेंसेक्स 429 अंक यानी 0.6% गिरकर 72,639 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 173 अंक यानी करीब 0.8% नीचे आकर 22,603 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.6% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक आज 0.3% चढ़ गया।
0: Benchmark domestic equity indices snapped their two-day rising streak today. The Sensex fell 429 points, 0.6% to close at 72,639. Nifty dropped 173 points, or nearly 0.8%, to settle at 22,603. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index lost over 0.6%, while the small-cap 100 index advanced 0.3%.
1: सेंसेक्स में 30 कंपनियों में से 26 के शेयरों में गिरावट रही। टाइटन करीब 3.5%, BEL 2.2% और एशियन पेंट्स 2.1% नीचे रहे। वहीं दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक 2.2%, भारती एयरटेल 1.3% से अधिक और ICICI बैंक 1.1% से ज्यादा चढ़े।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 24 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स एज डाउनवर्ड अमंग द टॉप लैगर्ड्स। मेटल शेयर नियरली 2.5%, कंज्यूमर ड्यूरेबल fell over 1.8% and realty dropped more than 1.7%. In contrast, PSU banks gained 1.2%, housing finance as well as telecommunications jumped over 0.9%, and hospitals added more than 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,360 companies declined, 2,013 companies advanced and 241 companies remained unchanged.
1: विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36 पैसे गिरकर 96.78 पर बंद हुआ। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: अब पुनीत, मुख्य सवाल पर आते हैं। अगर हम सितंबर की बात करें तो लगभग 6% की गिरावट हमने देखी और अक्टूबर में भी वो सिलसिला हमें थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और सबसे ज्यादा हमने देखी गिरावट आईटी के सेक्टर्स में। ओवरऑल आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या उम्मीद लगती है कि हम इससे उबर पाएंगे या अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा?
2: तो निखिल, जैसे आपने कहा कि सितंबर का जो महीना था वो काफी निराशाजनक था स्टॉक मार्केट के लिए। हमने देखा 6% हेडलाइन इंडिसेस में गिरावट आई थी। कुछ हमने वहां पर रिबाउंड देखा था, जो मुझे लगता है वो एक डेड कैट रिबाउंड था, और आज दोबारा से बाजारों में गिरावट रही। मुख्य कारण तो जो इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंताएं हैं, जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है दुनिया में और हम देख रहे हैं कि उससे कमजोरी आ रही है अर्थव्यवस्था में, तो उसको लेकर आप देखें कि आज शेयर्स नीचे थे। आज भारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी थी, तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे रियल्टी और बैंकिंग, इस तरह क्षेत्र में आप देखेंगे, मेटल क्षेत्र में वहां पर गिरावट ज्यादा थी आज। और कुछ क्षेत्र सिलेक्टिवली हमने देखा वहां पर बाइंग थी, जैसा दिखा है आपने कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में उतनी गिरावट नहीं है, वहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग है, वहां पर फिर भी थोड़ा मजबूत ट्रेंड है, लेकिन लार्ज कैप्स जो है वहां पर गिरावट ज्यादा दिख रही है।
0: Puneet, PSU banks gained by 1.2%. We are also in the midst of the second quarterly earnings of companies. How do you see that reporting fundamentals of companies in terms of their profitability and revenue matching up to the sector valuation of companies?
2: So, Arjun, interestingly, if we look at the numbers behind the economy in terms of GDP growth, in terms of credit disbursals, we find that the economy is still doing very well. So my expectation is that when we see these second quarter numbers from companies, they would still be very good. And I'm not expecting any major decline in corporate earnings in the coming quarter. However, of course, these are concerns अबाउट इन्फ्लेशन, अबाउट परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, अबाउट नो सर्टन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी वेयर डिमांड मे बी अफेक्टेड. सो दोज कंसर्न्स आर पुलिंग डाउन द मार्केट्स. बट एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न्ड, माय असेसमेंट इज दैट द नंबर्स दैट द कंपनीज विल अनाउंस विल स्टिल बी वेरी गुड एंड लार्जली बेस्ड ऑन द प्रिमाइस दैट वी फाइंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स टू बी क्वाइट रोबस्ट, कार सेल्स नंबर्स आर गुड एंड सो ब्रॉड इकोनॉमिक नंबर्स सरप्राइजिंगली आर वेरी

0: एग्रीगेटर्स के बीच ये जो आपसी सहभागिता शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ये है क्या और इससे लोगों को क्या क्या फायदा होगा?
1: देखिए निखिल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अभी हम ये देखते हैं कि जब लोग एनबीएफसी से, क्योंकि नॉर्मली एनबीएफसी से जो उपभोक्ता कंज्यूमर जो लोन लेते हैं वो छोटे लोन होते हैं, करीब 5,000 से लेकर 50,000 तक के लोन होते हैं सामान खरीदने के लिए, और एक ही उपभोक्ता, एक ही कंज्यूमर कई सारी एनबीएफसी से, 3, 4, 5 एनबीएफसी से वो लोन लेते हैं
0: जी।
1: और एक तो लोन मैनेजमेंट कि कितना लोन है, कितना उसका रीपेमेंट है, वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से बैंक्स भी लोन देने में या एनबीएफसी लोन देने में थोड़े हिचकिचाते हैं, और साथ ही उनका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। तो आरबीआई ने ये सुविधा दी है कि अब वो जो एनबीएफसी हैं जो एक उपभोक्ता को लोन दे रही है वो आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है। उससे जो अच्छे उपभोक्ता है जो अपना रीपेमेंट टाइम पर करते हैं, कि क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उनको बेटर रेट मिल सकेंगे, आराम से लोन भी मिल सकेंगे उनको, और उनका हम ट्रैक भी बेटर कर सकेंगे। दूसरा, आपने बताया कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास अभी हम देखते हैं तो हम जितने हमारे शेयर अकाउंट होते हैं उनका इकट्ठा हमें एक अकाउंट मिलता है जिसको हम सीएएस कहते हैं, कंपोजिट अकाउंट स्टेटमेंट कहलाती है। उसमें अब जो बैंक्स के जो एफडीज हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी वो इंक्लूड करेंगे, तो एक ही जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सभी इन्वेस्टर्स को मिल पाएगी, अपने बैंक डिपॉजिट के लिए भी और अपने जो डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं जिनमें शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, उसकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल पाएगी। मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और बेहतर होगा सभी कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स के लिए।
2: In more news, IMF Managing Director Kristalina Georgieva has called on countries both rich and poor to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. Speaking in Singapore ahead of the IMF World Bank meetings in Bangkok next week, she said governments have the tools to address economic challenges but need to take necessary policy decisions without further delay.
3: Global public debt is near its highest levels since after the Second World War and is on track to soon exceed 100% of GDP. In other words, to cover our debt, we have to put everything we have produced in 1 year in that pile.
2: Georgieva said also highlighted risks from the rapid expansion of artificial intelligence, including heavy investment in data centers, rising energy demand, and potential financial shocks if AI-related earnings fall short of expectations. She said AI is becoming a major driver of countries' economic fortunes, but its benefits are not reaching all countries equally. Puneet, very briefly, even though the earlier story is about managing debt for the customer regarding NBFC aggregators, now you have the IMF director saying that nations rich and poor need to tackle growing inequality and reduce debt, take necessary policy decisions, use the tools that they have in hand, and more importantly, the impact of AI.
1: Absolutely. In fact, what we were saying about small consumers earlier applies equally to large nations also. And unfortunately, find that large nations have been raising a lot of debt lately. Look at USA, the aggregate debt is more than $40 trillion now, the largest in the world. So clearly, and it is going to become a problem because interest rates will go up, inflation, it contributes to inflation, it contributes to a fall in consumption. So IMF MD is basically warning countries against raising more debt, because higher debt typically affects the poorer sections of the society, because for them it becomes more difficult to sustain their living, and countries have less capital, less money to spend for welfare schemes. So IMF, I think, is giving the right warning to countries not to raise debt beyond a point, trying to manage their debt obligations, debt servicing, so that they can divert that money to welfare schemes. And I think it's appropriate for countries to do that.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात आयात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत अपनी जरूरत के मोबाइल फोन आयात करता था, जबकि आज भारत में बने मोबाइल फोन वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि को भी भारत में आए

0: Switzerland, Iceland, Liechtenstein and Norway mark 1 year since implementation of the Trade and Economic Partnership Agreement. Talking to reporters after attending the summit, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the European countries today consider India as a major hub for innovation and manufacturing.
1: एफ्टा के अग्रीमेंट से जिस तरह से करीब करीब अब तक 160,000 लोगों को रोजगार इसमें मिल चुका है, नई कंपनीज जो भारत आई है अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बेस डिजाइन बेस रिसर्च बेस भारत को बना रही है और आने वाले समय में इससे करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास टोटल नया रोजगार पैदा होगा, युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी और भारत के एमएसएमईज के साथ जिस तरह से स्विट्जरलैंड के नॉर्वे के लिक्टेनस्टीन के एमएसएमईज जुड़ रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की नई जर्नी बनेगा।
2: नया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड एमडीआर फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने कहा कि ये एक टिकाऊ वाणिज्यिक ढांचा स्थापित करने से नए फिनटेक स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल भुगतान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। एनपीसीआई ने कहा है कि जब भुगतान प्रसंस्करण शून्य एमडीआर व्यवस्था के तहत संचालित होता है तो केवल पर्याप्त पूंजी वाले बड़े तकनीकी समूह ही लंबे समय तक होने वाले परिचालन घाटे को वहन कर सकते हैं। एनपीसीआई के अनुसार एक पूर्वानुमानित वाणिज्यिक राजस्व मॉडल प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इससे छोटे और नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धा करने विशेष भुगतान सॉफ्टवेयर विकसित करने और वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलेगी। एनपीसीआई ने यह भी कहा कि बढ़ती बाजार प्रतिस्पर्धा से अंततः उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं अधिक विश्वसनीय भुगतान ऐप्स और अधिक विकल्प मिलेंगे।
0: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. The meeting, to be chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the goods and services tax system.
2: एशियाई और यूरोपीय बाजारों में आज गिरावट का रुख देखने को मिला। एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक करीब 2% गिर गया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ।
0: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices rose today amid continued supply risks. Brent crude was trading 1.2% up at $101.78 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.7% higher at $90.11 per barrel at the time of writing this report.
2: पुनीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और वैश्विक तेल सप्लाई पर भी उसका असर पड़ रहा है, क्या लगता है कि इसकी कीमतों में और किस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं आगे चल करके?
3: लेकिन देखिए, हमें लग रहा है कि क्रूड के जो प्राइसेस है वो अब जो स्टेबल हो गए हैं, $100 जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है $100 पर बैरल, ये उसके आसपास अब काफी स्टेबल चल रहा है और मुझे लगता है यही एक ट्रेंड रहेगा क्योंकि सप्लाईज फ्रॉम हॉर्मुज स्ट्रेट वो भी थोड़ी रिस्टोर हुई है, थोड़ी बढ़ी है, तो मुझे लगता है ये प्राइसेस अब यहीं पे स्टेबल होने चाहिए लॉन्ग टर्म में।
2: जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 0.5% गिरकर लगभग 1,47,767 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। वहीं चांदी की कीमत में 0.9% की गिरावट रही और ये 2,20,866 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। पुनीत जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपके कमेंट्स?
3: देखिए, जैसे जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और उसका नेगेटिव असर सीधा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में पड़ता है। तो डॉलर इंडेक्स करीब 102 हो गया है तो वहां पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस नीचे हैं और मुझे लगता है अभी गोल्ड में थोड़ी कमजोरी रहेगी क्योंकि ये बस नहीं होने वाला ट्रेंड इंटरेस्ट रेट्स का या डॉलर इंडेक्स का, तो ये यही कमजोरी रहेगी।
2: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
3: धन्यवाद। देखिए,
0: and before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 400 points. Nifty settles at 22,603. RBI hikes repo rate by 25 basis points to 5.5%. Changes policy stance to calibrated tightening. And International Monetary Fund calls on countries to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म कामचोर से, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम का ये गीत आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। अगला गीत फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 का, आवाज़ें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की।

0: फिल्म नीला आकाश का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इससे पहले आपने लव मैरिज फिल्म का गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक, कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में इस पर समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिली, शुभकामनाओं और स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अब तक जो प्रगति की है उसमें करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शुभकामनाओं के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC

0: 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआव को देने की घोषणा की गई है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए देने का निर्णय किया है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas. यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The Prime Minister said India, once associated with discussions and policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports while India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in 2 days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranjit Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endangers the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royed Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were 3 Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo flagship, Alpha Vatan also

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तेरा नाम दिल पर लिख दिया है मैंने, तेरा नाम दिल पर लिख दिया है मैंने, अब तो हर घर धड़कन सिर्फ तेरे ही गीत गाती है। पत्थरों पर लिखा नाम तो आंधी और बारिश मिटा देते हैं, लेकिन मैंने तो यादों की स्याही से तेरा नाम अपने दिल के पन्नों पर भी लिख लिया है।

पता है, करीब होने के लिए पास होना जरूरी नहीं होता। लोग तो साथ रहकर भी अजनबी होते हैं, और तुम दूर होकर भी मेरी रग रग में बहते हो। क्योंकि जहां जिस जगह पर सुकून लिखा होता है ना, वहां सिर्फ सिर्फ तुम्हारा ही नाम होता है। तुम ही हो इस दिल के करीब इस कदर, तुम ही हो दिल के इस करीब इस कदर कि अब खुद में भी हम तुम्हें ही ढूंढते हैं।

न जाने क्यों लगता है कि क्यों मोहब्बत की मैंने तुमसे। इसमें दिन का चैन गायब, रात की नींद गायब, बस हर वक्त तेरा ही ख्याल। पर जब वो तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट याद आती है ना, तो ये दिल चुपके से कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो ये हसीन पागलपन मेरी जिंदगी में कैसे आता। कभी कभी लगता है कि क्यों की है मैंने मोहब्बत तुमसे, कभी कभी लगता है कि क्यों की है मैंने मोहब्बत तुमसे, जब तुम्हारी यादें मुझे रात भर जगाए रखती हैं। पर इस बेबसी में भी बहुत अजीब सा सुकून है कि जब धड़कने सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर लहरें लेती रहती हैं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम निशिगंधा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपके साथ मैं हूं अंजू।

0: क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? ये सवाल अक्सर दिल में आता है, पर जब तुम सामने आते हो तो हर शक हवा हो जाता है। छुपाना भी चाहो तो छुपा नहीं पाओगे इस चाहत को, क्योंकि तुम्हारी धड़कनों का शोर मेरे दिल तक बहुत साफ आता है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

हम सिर्फ तेरे ही हैं, ये बात हमने जमाने को बता दी है। हम सिर्फ तेरे ही हैं, ये बात हमने जमाने को बता दी है। और तेरे नाम की लकीर हमने अपने हाथ पे सजा ली है। धड़कनें गवाही देती हैं हमारी इस बे इंतहा मोहब्बत की। जब से तुमने इस दिल की धड़कनें दिल को धड़कने की वजह दी है।

रिया सताती है मुझे इस कदर रातों में कि नींद आंखों से और तुम इस दिल से कहीं दूर नहीं होते। हर लम्हा गुजरता है बस तेरी ही आस में कि काश तुम आ जाओ और कह दो कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं।

सजना सजना।

इस कार्यक्रम का सफर यहीं तक, और अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अगले घंटे यानी 1:10 पर गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहूंगे आपके साथ। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हो गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें बधाई दी। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के

भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। भारत ने रूस में सेना के साथ काम कर रहे 69 भारतीय नागरिकों के बारे में रूसी अधिकारियों से जानकारी मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नियमित प्रेस वार्ता में बताया कि भारत लगातार रूस से रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों को जल्द रिहा करने का अनुरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों से अब तक 139 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से रिहा कराया जा चुका है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सर्वजोत सिंह मिश्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। समय हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुनेंगे आप बहुत ही मधुर गीत और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ।

जमाने भर की खुशियां भी फीकी लगती हैं मुझे, जमाने भर की खुशियां भी फीकी लगती हैं मुझे, जब तक मेरी आंखों के सामने तेरा दीदार ना हो। तेरे बिना ये दिल कहीं नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे मेरी हर धड़कन तेरे इंतजार

हम तेरी मोहब्बत के काबिल हैं ये तो खुदा जाने, हम तेरी मोहब्बत के काबिल हैं ये तो खुदा जाने या नहीं, पर इस दिल ने तेरे सिवा किसी और

0: ढल जाइए चांद और थम जाइए हसीन लम्हा वहीं, जब तू हौले से मुस्काए और अपना सिर मेरे कांधे पे टिकाए। तेरे संग मुझे रात में नदी के किनारे बैठना है, जहां लहरों के शोर में बस तेरी ही आवाज मुझे आए।
1: ये रातें ये

हर किसी को ये इश्क नहीं होता जमाने में, हर किसी को ये इश्क नहीं होता जमाने में। ये वो नायाब तोहफा है जिसका मिलना बस किसी किसी के नसीब में होता है।

तुम्हें हो या नहीं, हमने तो की है मोहब्बत तुमसे। तुम्हें हो या नहीं, हमने तो की है मोहब्बत तुमसे। अब इस दीवाने दिल को किसी और की चाहत कहाँ।

दोस्तों, कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और अब होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगे आपसे कार्यक्रम रात सुरमई लेकर। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। दिल्ली में दृष्टि परियोजना के अंतर्गत आधुनिक सर्वे और मैपिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों में PM उदय सेल बनाए जाएंगे। परियोजना के लिए 52 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 13 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देगी। इस परियोजना से संपत्तियों का सर्वे, नक्शा तैयार करने और दस्तावेजों का काम तेजी से होगा। इससे लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक लेने और संपत्ति के हस्तांतरण में भी आसानी होगी। ISSF निशानेबाजी विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में

समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। एक बार फिर से अंजू आपके साथ और होंगे बहुत ही मधुर गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आंखें थक जाएंगी, मगर तेरा इंतजार कम नहीं होगा। आंखें थक जाएंगी मगर तेरा इंतजार कम नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की हर शाम तेरे नाम कर दी है। दूर जाकर भूल मत जाना मेरी इन वफाओं को तुम, दूर जाकर भूल मत जाना मेरी इन वफाओं को तुम, हमने अपनी पूरी हस्ती तेरे नाम कर दी है।

इस दिल में जगह है सिर्फ तुम्हारी, ये बात तुम जान लो। इस दिल में जगह है सिर्फ तुम्हारी, ये बात तुम जान लो। मेरी हर धड़कन गवाही देगी, ये बात भी तुम मान लो।

लफ्ज की जरूरत ही कहां हमारी इस मोहब्बत में, लफ्ज की जरूरत ही कहां हमारी इस मोहब्बत में, जब बिना कुछ कहे भी तेरा मेरे करीब रहना अच्छा लगता है, और हम चुप हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों को पढ़ना अच्छा लगता है, हम चुप हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों को पढ़ना अच्छा लगता है, इस खामोशी में भी सिर्फ तुम्हारा नाम ही मुझे अच्छा लगता है।

रहेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और कुछ ही समय में रहेंगे आपके साथ पंकज कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल आइवरी कोस्ट गणराज्य की विदेश राज्य मंत्री नियाले काबा से मुलाकात की। अबिजान में हुई बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर 3 देशों की अफ्रीका यात्रा पर हैं। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनाथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपने युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिश्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2-3 दिनों तक आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. PM Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayaka Temple at Sarojini Nagar in New Delhi and offered prayers there. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
1: सबका साथ सबका विकास यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
2: Once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that early efforts were made to increase imports, while India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in 2 days. Briefing media New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranadhir Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endangers the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royad Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were 3 Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving medical treatment. The second ship, a Togo flagged ship, Alpha Vatan, also came under attack on 6th October. Expanding on India's broader diplomatic efforts to address the root cause of regional volatility, Mr. Jaiswal emphasized New Delhi's ongoing communication channels with both Moscow and Kiev. Meanwhile, Russia has expressed gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow appreciates New Delhi's willingness to offer ideas aimed at finding a peaceful solution to the crisis. PM Modi will inaugurate the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. It will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The 2026 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to French chemist Henri Becquerel and Japanese chemist Kenzo Soi for their pioneering discoveries of nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis. The Royal Swedish Academy of Sciences said Becquerel and Soi solved a century-old mystery of how molecular asymmetry or homochirality can emerge spontaneously in nature. Russian missiles and drones pounded Kiev and a dozen other Ukrainian regions overnight, killing 19 civilians, including 4 children, and wounding around 60 others. Russia's defense ministry said its forces had targeted Ukrainian defense industrial facilities as well as port and ship repair facilities in the Odessa region. Spain's Prime Minister Pedro Sanchez yesterday expressed his condolences after the reported death of Maria del Carmen Abascal, the 87-year-old woman whose eviction sparked nationwide protests. Mari Carmen, as she was known, had been hospitalized since she was carried out on a stretcher from the apartment where she had lived for 7 decades. Her case has drawn tens of thousands of people in Spain to the streets in outrage and led the PM to call for early elections after failing to pass measures to address the country's housing crisis. Olympic medalists Swapnil Kosalay and Sarabjot Singh will headline a 35-member Indian shooting contingent at the ISSF World Cup 2026 in Cairo, Egypt, starting from today. The Cairo meet is the 4th and final ISSF World Cup of the year for rifle and pistol shooters. Medal events will be held from October 10 to 15 at the Egyptian International Olympic City shooting range. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर इस समय हुआ है रात्रि के 3:10 और यानी अभी टाइम हो चुका है पूरे रात के 3:11। मैं पंकज हूं आपके साथ और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही और मैं आपसे मिलता हूं इन दो गानों के बाद। तो अभी शुरुआत करते हैं आपकी कसम मूवी से और हाँ, इस घंटे आप गाने सुनेंगे वो भी डुएट्स। तो इन गानों का मजा लीजिए, दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूँ।

मूवी का नाम सागर, किशोर दा और लता जी की आवाज, जावेद अख्तर के लिरिक्स और आरडी बर्मन का म्यूजिक। पिछले घंटे आप सुन रहे थे रात सुरमई शो, और तो रात सुरमई शो के बाद इस सफर को आगे बढ़ाते हैं मैं और आप। इस आधी रात का जमकर मजा उठाएंगे इन पुराने ड्यूट्स गानों के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, शो का नाम है हमराही। मैं हूं पंकज आपके साथ, और सुबह के 6 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो ऊंघती नींद में जागने का लुत्फ लीजिए, अपनी हर परेशानी को भूल जाइए, और इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूँ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

इस गाने के लिरिक्स को अगर बहुत ही ध्यान से सुना जाए तो सच में ऐसा लगता है कि ये प्यार की गहराइयों में डूबे हुए एक एक शब्द हैं। और सच में मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, मुझे तो बहुत इमोशनल फील आती है, पता नहीं क्यों, बट इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं और ध्वनि धुन जो है इसकी वो तो बहुत अच्छी है। ऊपर से आज़ाद आई और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अगर हो तो फिर तो कहने क्या है। ये गाना था फ्रॉम द मूवी बुलंदी। और अपने हमराही के साथ पता है जिंदगी भर मिलना और खुशी के साथ जीने वाली जो लाइफ होती है ना, उसको ही अच्छा जीवन कहना चाहिए, क्योंकि भीड़ नहीं और मतलब करोड़ों में से एक अच्छा पार्टनर ही जो है वो करोड़ों सुख झोली में डाल देता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज, आपके साथ शो का नाम है हमराही। इसलिए जीवन साथी ना बहुत अच्छे स्वभाव और विचार का होना चाहिए, तभी हर रात चांदनी सी खिल उठेगी।

फाइनली प्यार का इजहार कर दिया इस गाने के अंदर। ये फिल्म बहुत अच्छी है, शबाना आजमी और नवीन निश्चल जो है इसमें लीड कपल हैं, और बहुत मजा आएगा आपको, कभी मौका मिले तो ये जरूर देखिएगा, ऑनलाइन अवेलेबल है। एक बार कहो फिल्म से ये गाना बप्पी लहरी और सुलक्षणा पंडित की आवाज में था और बप्पी दा का म्यूजिक था और देव कोहली के इसने इस गाने को लिखा था। और पता है जब ये गाना चला था तो मैं एक बात सोच रहा था, इसमें इस गाने में ही बोल रहे होते हैं कि भाई एक बार कहो कि मुझसे प्यार है, और यही तो दिक्कत है कि लोग है ना प्यार करेंगे लेकिन इजहार नहीं करेंगे। दिल की गिरह खोलने में इतना टाइम क्यों लगाना भाई, इतना नेगेटिव क्यों सोचना कि क्या पता सामने वाला मना कर दे। अरे ठीक है, जो होगा सो होगा। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आप इजहार करें और सामने वाला मान जाए, हाँ बोल दे ये तो रिस्क लेना ही चाहिए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूँ पंकज आपके साथ, और शो का नाम है हमराही। कल को ना दिल की बात ना कहने का मलाल ना रहे, इसलिए मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। अभी के लिए ये सीड्यूसिंग सा सॉन्ग फ्रॉम

लता जी और किशोर कुमार की आवाज में राही बदल गए मूवी से ये ग्वाला गाना था। आरडी बर्मन का संगीत और गुलशन बावरा के बोल। आजकल प्यारे रिश्तों के ना मायने बदल गए हैं, लेकिन काम तो रिश्ते ही आते हैं, स्पेशली जीवन साथी। अब अगले घंटे अगले शो अरुणिमा में मैं पंकज आपसे मिलूंगा सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। हमरा ही शो का टाइम जो है ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो अभी सिर्फ शो का ये वाला गाना सुनिए और फिर सुबह 4 बजे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद 4:10 पर मैं पंकज आपसे फिर से मिलता हूँ। अभी के लिए ये वाला गाना फ्रॉम द मूवी जावाज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार

0: तथा प्रदर्शक 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनाथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। दिल्ली कस्टम्स ने कल करीब 515 करोड़ रुपए की कीमत के 165 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। दिल्ली कस्टम्स की उच्च स्तरीय मादक पदार्थ निपटान समिति ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के तहत इन मादक पदार्थों को नष्ट किया। ये कार्रवाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू होगी। 35 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह करेंगे। यह निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईजी नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayaka Temple at Sarojini Nagar in New Delhi and offered prayers there. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi stated that present government's policies focus on solutions for all citizens.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। सुबह के 4:10 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम अरुणिमा। मैं पंकज रहूंगा इस शो में आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं दो गानों से और दो गानों के बाद में आपसे मिलता हूं। अभी के लिए सुजाता मूवी का ये गाना।

किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का ये वाला गाना था। अनजान के लिरिक्स और राजेश रोशन का संगीत। मन से निकली आवाज भी ना हमें जीवन के अच्छे पथ पर चलने का इशारा करती है कि सदा दूसरों का अच्छा करो और कभी निराशा में हार मत मानो, उठो और आगे बढ़ो। अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आज गुरुवार है और मन एक गुरु की भांति रोशनी का दिया जलाकर हमें राह दिखाता है कि बस अच्छे कर्मों के पथ पर चलते हुए खुशियों से ये जीवन बिता दें और यही सफल जीवन जिंदगी बनता है।

गीता दत्त की आवाज अनुभव फिल्म का गाना 1972 में ये मूवी रिलीज हुई थी। गुलजार के बोल और कनू रॉय का संगीत। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी जो है ना जादू से भरी है और इस टाइम तो ये गाने और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे एक बात कहनी है, इसके लिए मुझे आप माफ करिएगा, लेकिन हम लोग पता है जिंदगी में मिलने वाली हर छोटी खुशी के लिए बड़े नाशुक्र हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य और हाथ पांव और पूरा शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है और उपहार भी से कह सकते हैं कि भाई हर किसी को तो मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य मतलब कंप्लीट एक हेल्दी लाइफ जो है वो जीना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ। शो का नाम है अरुणिमा और मेरी बात की अगर परख करनी हो ना तो हॉस्पिटल जाकर मरीजों को देखें, फिर आप समझेंगे कि हर हाल में शुक्रिया कहना चाहिए और जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है।

ये गाने जो हैं ये जेंजीज को भी पसंद आते हैं क्योंकि इन गानों में सच्चाई और सरलता है, क्योंकि ये संगीत है सरदर्द नहीं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ, शो का नाम है अरुणिमा। और ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर की प्लानिंग हमें करनी ही चाहिए, लेकिन भविष्य की चिंता में ही ना हम खुद को हलकान करने में जो है ज़्यादा परेशान ना हो, और क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होना और बहुत ज़्यादा कल की फिक्र करना उससे ना हाथ कुछ नहीं आता, उल्टा अपनी ही हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। अब कल क्या होगा इस पर किसी का जोर तो है नहीं, कहीं कल की फिक्र में आज का सुकून भी ना चला जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज का दिन कैसे बिता रहे, खुशी से या टेंशन से?

0: मैं जाऊं।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
2: चिराग जी, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

ये गाने इतने अच्छे हैं कि इन गानों के साथ साथ अगर आप गुनगुनाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे गाना सीख ही जाते हैं। मतलब सुर के साथ सुर ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है। कहते हैं कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, तो आज का दिन आप किस उत्साह से मनाएंगे आज के दिन के लिए ये सोचिए, और खुद को ना हमेशा बहुत शानदार ट्रीट करना चाहिए। हम अपने आप को ही बहुत हल्के में लेते हैं, अपने आप के लिए कभी गिफ्ट्स लेने चाहिए और खुद को तो बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। मतलब ओवरऑल अच्छे से ही हम अपने आप को ट्रीट करें। तो अगले घंटे यानी अगला शो होगा भोर सुहानी सुबह 5 बजे से, आप हिंदी और इंग्लिश न्यूज़ सुनेंगे पहले, और इसके बाद जो है फिर मैं सुबह 5:10 पर मैं पंकज आपसे फिर से मिलूंगा। अभी अरुणिमा शो के ये बचे बाकी के गानों में खो जाइए और इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले घंटे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह की 7 से 10 तारीख तक किया जा रहा है। यह आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार तथा प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य।

0: इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायुशक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनोथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। दिल्ली कस्टम्स ने कल करीब 515 करोड़ रुपए की कीमत के 165 किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। दिल्ली कस्टम्स की उच्च स्तरीय मादक पदार्थ निपटान समिति ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के अंतर्गत इन मादक पदार्थों को नष्ट किया। ये कार्रवाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके अलावा एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईजी नागोया में आयोजित होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 10th edition of India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. The 4 days event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. It will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next generation connectivity and technology-led growth. PM Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
0: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी।

सुबह के 5:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी पंकज के साथ। तो शुरुआत करते हैं इस गाने से, मोहम्मद अजीज और सना सरगम की आवाज, फ्रॉम द मूवी त्रिदेव।

अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उस टाइम में ये गाना सुन रहे हैं तो सच में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। गाड़ी के शीशे नीचे करके अंदर ठंडी आती हुई हवा और ऊपर से ये वाला गाना, सच में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। दीवाना फिल्म से कुमार सानू की आवाज, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत है। मैं हूं पंकज, आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। शो का नाम भोर सुहानी है और आज 8 अक्टूबर गुरुवार का दिन है। हम त्योहारों के दिनों में चल रहे हैं और ऊपर से सर्दियां आएंगी, साथ ही दिवाली आएगी, लेकिन इससे पहले और भी बहुत सारे त्योहार आएंगे, यानी पूरा फेस्टिवल मूड है हम दिल्ली वालों का। तो आज का दिन आपका सुंदर और शुभ बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और अभी के लिए दो गाने और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सुबह हो चुकी है, सुबह वाला गाना फ्रॉम द मूवी साज़।